मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज और 102.9 मेगाहर्ट्ज एवं न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि तदनुसार 6 जुलाई सन 2026 इस समय 5:58 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारम्भ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम

0: व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए विचार मंथन। विचार मंथन में आज आप सिसरो का विचार सुनेंगे। ज्ञानी विवेक से सीखते हैं, साधारण मनुष्य अनुभव से और मूर्ख आवश्यकता से। और लीजिए आप सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे चिंतन। आलेख श्री रवीश कुमार क्षत्रिय का है और वाचक है माधवी येंडे।
1: समूचे विश्व के अंदर एक ही आत्मा व्याप्त है। विश्व के अनंत गुरियों के अंदर एक ही धागा पिरोया हुआ है। सब बाहर से अलग अलग होते हुए भी अंदर से एकता का, अपनेपन का अनुभव करते हैं। इस आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम प्रेम है। इसके अतिरिक्त और सब जितना ज्ञान है वो अज्ञान है। सारा संघर्ष अज्ञान से शुरू होता है और अज्ञान में ही रहता है। ज्ञान में संघर्ष है ही नहीं, या यूं कहें कि जहां प्रेम है वहां संघर्ष हो ही नहीं सकता। वैसे विचार करके देखें तो अज्ञान अपने आप में कुछ नहीं है, ना ही उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व है। वास्तव में ज्ञान का ना होना ही अज्ञान है, प्रेम का ना होना ही घृणा है। यदि प्रेम पक्ष विजयी हो जाए तो घृणा स्वतः समाप्त हो सकती है। घृणा सदैव दूसरों से होती है, अपनों से नहीं। अपनेपन में घृणा के लिए कोई स्थान नहीं है। जरा सोचिए कि जिन्हें हम विदेशी कहते और समझते हैं, उनसे मिलने के लिए हमारे अंदर कितनी उत्सुकता रहती है। एक राष्ट्र के लोग दूसरे राष्ट्र के लोगों से मिलने की स्वाभाविक इच्छा रखते हैं। हमारा मन करता है कि हम इंग्लैंड, अमेरिका, जापान या अन्यत्र कहीं जाएं और वहां के लोगों से मिलकर उनसे बात करें, उनके निकट हों। ठीक इसी प्रकार वहां के लोग भी हमारे यहाँ आना और हमसे मिलना चाहते हैं। विदेशी हमारे कपड़े पहनकर और हम उनके कपड़े पहनकर प्रसन्न होते हैं। वो हमारे यहाँ घूमने फिरने और हमारे देश को देखने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और हम उनके यहाँ घूमने और उनके देश को देखने में। आप विचार करके देखिए कि इस विदेशीपन में कटुता कहाँ है, परायेपन का वैमनस्य कहाँ है। आज विश्व का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आदमी से आदमी

0: अलग हो गया है। मिलना तो चाहता है लेकिन मिल नहीं पा रहा है, और यही उसकी बेचैनी है। विज्ञान इस बात के लिए निरंतर प्रयत्नशील है कि हमारे बीच की दूरी समाप्त हो जाए। गति बराबर बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अब आदमी आदमी के ज्यादा और जल्दी नज़दीक आ रहा है। जातीयता, प्रांतीयता, भाषा, संस्कृति, धर्म, रंग, राष्ट्रीयता और वर्ग भेद आदि के संस्कारों से हम मुक्त हो सकें तो वो दिन दूर नहीं जब विश्व के प्राणी मात्र के मधुर मिलन से प्रेम की धारा उमड़ेगी, द्वैत का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद और गुरु नानक देव जैसे संतों के स्वप्न साकार होंगे और विश्व बंधुत्व के दर्शन की अभिलाषा भी पूरी होगी।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख श्री रमेश कुमार क्षत्रिय का था और वाचक थी माधवी एंडे। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम के प्रेम में शिथिल पड़ गए अयोध्यावासी। मात्र दो ही कोस चल पाए थे कि दिन ढल गया। अतः उपयुक्त स्थान देख सबने बिना खाए पिए वहीं रात्रि विश्राम किया। उस रात सीता जी ने स्वप्न में देखा कि प्रभु के वियोग में भरत संतप्त शरीर लिए पूरे समाज के साथ वहां पधारे हैं। सभी लोग उदास और दुखी हैं। साधुओं की सूरत बदली हुई है। सीता का स्वप्न सुनकर श्री राम व्यथित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि ये स्वप्न अच्छा नहीं है, अवश्य ही कोई अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा। चित्त की शांति के लिए उन्होंने स्नान आदि करके त्रिपुरारी का पूजन तथा साधु संतों का सम्मान किया। देवताओं मुनियों आदि का वंदन कर श्री राम उत्तर दिशा में देखने लगे, जिधर आकाश में धूल छा रही थी। पशु पक्षी आश्रम की ओर भागते आ रहे थे। मन में चिंता हो आई, क्या बात है। उसी समय कोल फीलों ने भरत शत्रुघ्न के आगमन का समाचार सुनाया। श्री राम हर्षित हो गए। फिर ये सुनकर कि भरत शत्रुघ्न के साथ चतुरंगिणी सेना भी है, शंका हुई कि इस प्रकार उनके आने का क्या कारण हो सकता है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कृषि सामायिकी काकुड़ा की खेती।
1: किसान भैयारो, ककोरा एक बहुवर्षीय और कद्दू वर्गीय किस्म को पौधा है। बहुत से क्षेत्रों में जो उगाओ जाते हैं, विशेषकर जंगली क्षेत्रों में ककोरा खुदाई उगे आउत हैं। और ककोरा के बीज को एक बार बोवे के बाद इके जो मादा पौधे हैं वे लगभग 8 से 10 वर्षों लो फल उत्पादन देते रहे थे। आपसे बताएं कि बाजार में अच्छे दाम किसान भाइयों के लाने एक अतिरिक्त आय को साधन सोई होत है। आज के समय में जब ककोरा को फल बाजार में आउत है तो उको मूल्य कहो जाए तो 90 से 100 रुपया तक प्रति किलोग्राम के हिसाब से रहत है। इससे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होत है। ई के लाने आप सोचा थुइयो कि जलवायु कौन सी उम्दा रहत है, तो ककोरा गर्म और नम जलवायु की फसल है। ककोरा की खेती उन स्थानों पे उम्दा तरीका से होत है जहां औसत वर्षा 1500 से 2500 मिलीलीटर होत है और तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहत है। ककोरा की खेती वैसे तो क्यों बननी जमीन में अपन कर सकत हैं। मनो इकी खेती रेतीली भूमि जिमें पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ होवे और जल निकास की उचित व्यवस्था होवे सो अच्छी मानी जात है। इके संगे भैया जो मिट्टी को पीएच मान है वो 6 से 7 के बीच में भाव चाहिए। ककोरा अम्लीय भूमि के प्रति संवेदनशील मानो जात है। बोनी करवे के लाने बीजों की बुवाई को जो समय है वो जुलाई को महीना है। बीज के संगे संगे ककोरा को प्रवर्धन उके वानस्पतिक अंगों से सोई करो जा सकत है और बीजों के द्वारा 1:1 के अनुपात में नर और मादा पौधे मिलत हैं। इसे ककोरा की फसल के लाने बीजों को प्रयोग नहीं करो जा सकते आए माने नहीं करो चाहिए। और ककोरा की खेती से अधिक उत्पादन प्राप्त करबे के लाने प्रवर्धन वानस्पतिक भाग माने के जड़ के कंद द्वारा करो चाहिए। बीज की मात्रा अपन कौन सी ले सकते हैं कि जो सही रहे, तो सही बीज जिमें कम से कम 70 से 80% तक अंकुरण की क्षमता हो बे ऐसे बीज की 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जरूरत पड़त है। बुवाई की विधि सोई आप जानबो चाहत हुई हो तो ककोरा की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करबे के लाने खेत में पौधों की संख्या पर्याप्त होबो बहुत ज्यादा जरूरी है। ई फसल की बुवाई अच्छी प्रकार खेत तैयार करके क्यारी बना के नहीं तो फिर गड्ढों में करी जा सकत है। गड्ढे की आपस में दूरी 2x2 मीटर रखो चाहिए और प्रत्येक गड्ढा में 2 से 3 बीज की बुवाई करो चाहिए। और ऐसो करबे से माने के ई प्रकार से अगर अपन करत हैं तो ऊ में सोई 4x4 मीटर के प्लाट में कुल 9 गड्ढा बनाओ चाहिए जिमें बीच वाले गड्ढों में नर पौधा रखे जाते हैं और बाकी के 8 गड्ढों में मादा पौधा को रखत हैं। जो ध्यान रखो चाहिए कि एक गड्ढा में एक ही पौधा लगाओ जावे। खाद और उर्वरक के बारे में सोई आप जान लो तो ककोरा की खेती से ज्यादा लाभ लेवे के लाने संतुलित पोषण दो चाहिए। सामान्यतः 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अच्छी सड़ी भई गोबर की खाद खेत की अंतिम जुताई के टाइम पे खेत में डार खो मिट्टी में मिला दो चाहिए। इके अलावा 65 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम SSP और 67 किलोग्राम MOP प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देने चाहिए। माने भैया के सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास की जे मात्राएं हमने आपको बताई हैं सो जे देवो जरूरी रहत है। सिंचाई और निंदाई गुड़ाई की सोई इमें जरूरत रहत है तो फसल की बुआई के तुरंत बाद खेत में हल्की सिंचाई करबो उम्दा मानो जात है। बरसात के मौसम में सिंचाई की जरूरत ज्यादा तो नहीं पड़ती आए।

0: मनो दो वर्षा के समय में अधिक अंतर होवे पे सिंचाई करो चाहिए। खेत में जरूरत के अनुसार अधिक पानी होवे तो बाहर निकाल देव, जल निकास की उम्दा व्यवस्था बनाए रहो। कैसे के पानी अधिक होवे से बीज या कंद सड़ सकत हैं और 2 से 3 बार निंदाई गुड़ाई करबो जरूरी मानो जात है।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामी के कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट कार्यक्रम और रात्रि 9:30 पर पब्लिक स्पीक। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। सवेरे 7:20 पर सुनिए गुड मॉर्निंग जबलपुर, इसमें आप चर्चा और फिल्म संगीत के साथ ही श्रीमती शिप्रा सेन की कहानी सुनेंगे, कोरा कागज और चंद लकीरें। लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार सुनिए सवेरे 9:00 और शाम को 6:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत।

सवेरे 9:30 पर आप सुनेंगे आईना उर्दू कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। सवेरे 10:05 पर सुनिए वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं। 10:10 पर आप सुनेंगे विश्व दर्पण कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और सवेरे 10:20 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा।

शाम 7:21 पर किसान भाई सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम। शाम 6 बजे सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए सवेरे 8:30 पर, शाम 5:33 पर और रात्रि 8:15 पर। सवेरे 10:58 से दोपहर 3 बजे तक आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम सुनेंगे।

आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशानां षड्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। अस्याः त्रिदेशीय यात्रायाः प्रथमे चरणे असौ अद्य इंडोनेशिया देशं प्राप्स्यति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः इयं चतुर्थ इंडोनेशिया यात्रा वर्तते। अत्रावधेयं यत् स्वयात्रावधौ प्रधानमन्त्री इंडोनेशिया देशस्य नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिना प्रोवोवो सुबियान्तो इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तालापं विधास्यति। सन्धेः प्रगतिमालक्ष्य समीक्षां च करिष्यति। तदीय मुख्याः आधिकारिकाः कार्यक्रमाः जकार्तानगरे भविष्यन्ति। परम् असौ योग्यकर्ता इति कञ्चन ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं च नगरम् अपि गमिष्यति। जकार्तानगरे प्रधानमन्त्री सुविशालं भारतीयप्रवासीसमुदायं सम्बोधयिष्यति। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य नव देहल्यां आयोजितं सहकारिता मंत्रालयस्य पंचमं स्थापना दिवस समारोहं अलंकरिष्यति। मंत्रालयेन ज्ञापितं यत् अयं समारोहः सहकारात् समृद्धिः इति राष्ट्रिय संकल्पनामाधृत्य विधीयते। अस्मिन् मंगलप्रसंगे श्रीशाहः अनेकासां प्रमुखाभिनव परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। एतासु योजनासु 32,200 अन्नसंग्रह भण्डारानां लोकार्पणं, सहकार वनस्य भूमिपूजनं, उत्तरप्रदेश महाराष्ट्र राज्ययोः ट्रिशु कल्चर इति सुविधायै भूमिपूजनं, राष्ट्रिय सहकारी डेटाबेस NCD 3.0 इत्यस्य भौगोलिक चिह्नांकन दूरभाषानुप्रयोगस्य च आरम्भः। जम्मू कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेशे प्रचलन्त्यां वार्षिक श्री अमरनाथजी यात्रायां श्रद्धालूनां महत्सम्मर्धः दृश्यते। यत्र यात्रायाः प्रथमेषु त्रिषु दिनेष्वेव 650,000+ जनाः पवित्रगुहामन्दिरे समागताः। रविवासरे प्रायः 25,000 भक्तैः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्यदर्शनं विहितम्। इतः पूर्वं द्वितीयदिने प्रायः 20,000 जनाः, उद्घाटनदिवसे च 12,000+ तीर्थयात्रिणः भगवतः दर्शनं लब्धवन्तः। अनेन सहैव जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा श्वः नुवान पहलगाम इति आधारशिबिरस्य निरीक्षणं विधास्यति। सममेव ह्यः तत्र तीर्थयात्रिभ्यः कल्पितानां व्यवस्थानां प्रबन्धानां च सूक्ष्म पुनरीक्षणं तेन कृतम्। देशस्य विशालेषु भूभागेषु प्रावृत् स्थितिः अत्यधिकं तीव्रीभूता सञ्जाता, येन हि अतिवृष्टिः, मेघगर्जनं, विद्युत्पातः, प्रचण्डचक्रवाद्वायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु 4 दिनेषु गुजरातराज्यस्य कतिपयभागेषु, हरियाणा पंजाब राजस्थानेषु च प्रावृत् स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेनाद्य छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु 2-3 दिनेषु राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां, उत्तरप्रदेशे, पंजाबे, चंडीगढ़ क्षेत्रे विकीर्णरूपेण वृष्टिः सम्भाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बिया देशस्य लब्ध प्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचेन रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकल क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेविवोचिस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सत्र में सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़त दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। ब्राजील की हार के बाद नेमार जूनियर ने संन्यास की घोषणा कर दी। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे अब तीसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will be on a six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his three-nation tour, he will reach Indonesia today on a three-day visit. Mr. Modi will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto and review the progress made in the partnership. His main engagements will be in Jakarta, but the Prime Minister will also visit a cultural and historic city, Yogyakarta. In Jakarta, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora. In the second leg of his tour, the Prime Minister will reach Melbourne on the 8th of this month on a three-day visit, where he will participate in the third India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. On the last leg of his visit, Mr. Modi will be in New Zealand from 10th to 11th of July. He will hold talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. India will chair the 9th session of the Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy in Geneva, Switzerland. The session is being organized by the United Nations Trade and Development from today to Wednesday. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the session will bring together member states, international organizations, consumer protection authorities, academia, and other stakeholders to deliberate on emerging issues in consumer protection law and policy. Secretary Department of Consumer Affairs Nidhi Khare will chair the session. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has convened a meeting of its members today to deliberate on several important administrative and financial matters, including the findings of the special investigation team probing the counting of donations received by the trust. We have a report.
3: The agenda of the meeting includes consideration of the resignation letters submitted by General Secretary Champat Rai and Trustee Dr. Anil Mishra. Members will also be briefed on the interim report of the SIT regarding the counting of donations received through the Trust's donation boxes. The meeting will further deliberate on arrangements related to the future management of the Ram Temple. Another key item on the agenda is the presentation and approval of the unaudited income and expenditure statement, balance sheet and other financial documents for the financial year 2025-26. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Lucknow.
2: The nation pays homage to Bharatiya Janasangh founder Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Ministry of Culture, in association with the West Bengal government, will organize a program in Kolkata to mark the occasion. The program will be organized as part of the two-year official commemoration of the 125th birth anniversary of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, announced by the ministry last year. Union Home Minister Amit Shah will preside over the program along with Union Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. Union Minister of Cooperation Amit Shah will attend the 5th Foundation Day ceremony of the Ministry of Cooperation in New Delhi today. The ministry said the ceremony will be held in line with the vision of Sahkar Se Samriddhi. On the occasion, Mr. Shah will lay the foundation stone and inaugurate several key initiatives. Assam Cabinet has approved a series of major policy decisions aimed at strengthening emergency services, promoting industrial growth and improving governance ahead of the commencement of budget session of the State Assembly today. Briefing the media after the Cabinet meeting in Guwahati, Chief Minister Himanta Biswa Sarma said the Cabinet approved several bills to be introduced during the ensuing Assembly session. The Cabinet also approved an integrated emergency response system under the 112 helpline with an outlay of 100 crore rupees. In Kerala, orange alert has been issued for Kannur and Kasaragod districts, indicating the likelihood of isolated very heavy rainfall. Yellow alert has been issued for 6 other districts, indicating the possibility of isolated heavy rainfall. Isolated very heavy rainfall is expected in the northern districts of Kerala tomorrow also. Brazil's veteran player Neymar Jr. has announced his retirement from international football after the 5-time world champion suffered a stunning 2-1 defeat to Norway in FIFA World Cup round of 16 last night. He finished his international career as the all-time leading scorer for Brazil. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा आज से शुरू। 40 वर्षों बाद हो चुकी न्यूजीलैंड की पहली द्विपक्षीय यात्रा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में करेंगे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी में रखी अदाणी डिफेंस फैक्ट्री की आधारशिला। रक्षा क्षेत्र में मिलेगी मजबूती। और प्रदेश में मानसून की जोरदार बारिश जारी। सागर, दमोह सहित 9 जिलों में आज अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में वे इंडोनेशिया पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर भी जाएंगे। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड में होंगे, जो पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। तीनों देशों में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल के सतगढ़ी में 173 एकड़ में विकसित होने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। इस परियोजना में 10,000 क्षमता वाला विश्व स्तरीय कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर भी विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम में देश प्रदेश के करीब 200 से अधिक उद्योगपति और निवेशक शामिल होंगे। इस परियोजना से 15,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शिवपुरी जिले के पाली में लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अदाणी डिफेंस एंड एरोस्पेस ग्रुप के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
1: मध्यप्रदेश में निवेश का एक नया मार्ग खुला है। ग्वालियर अंचल में हमारा डिफेंस कॉरिडोर का पहला प्रोजेक्ट लगभग 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ का, जहां मिसाइलें बनेगी, मिसाइल से लगा करके सारे प्रकार के आर्म्स की जो आवश्यकता है वो सारे विकास के साथ साथ यहां पर रोजगार भी मिलेगा। साथ साथ 211 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यो का लोकार्पण भूमि पूजन भी यही सम्पन्न हुआ। सब मिला के 4-5 हजार करोड़ के काम यहाँ लगातार प्रारंभ होने की स्थिति में आए हैं।
0: वहीं श्री सिंधिया ने कहा कि यह प्लांट भारत की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा और हजारों युवाओं को रोजगार देगा। इस मौके पर शिवपुरी जिले के लिए करीब 211 करोड़ रुपए की लागत के 38 विकास कार्यों का ई लोकार्पण और ई भूमि पूजन भी किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत जी राम जी योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने योजना के संचालन के लिए 25,863 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी की। उन्होंने बताया कि मनरेगा से इस योजना में ट्रांजिशन पूरी तरह सहज और सुचारू रहा है, अब तक कोई तकनीकी शिकायत नहीं मिली है। श्री चौहान ने कहा,
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए इसमें 2 हिंदू सदस्यों को भी शामिल किया है। अधिकारियों के अनुसार वक्फ अधिनियम संशोधित 2025 के तहत गठित ये देश का पहला राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड है, जिसमें हिंदू सदस्य शामिल किए गए हैं। इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी कर सनवर पटेल को 10 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को हिंदू सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश नया अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेहनत, आधुनिक तकनीक और सामूहिक प्रयास से खेती की तस्वीर कैसे बदल सकती है, इसकी मिसाल खंडवा जिले का जावर गांव बन रहा है। यहां किसान उत्पादक संगठन यानी FPO के माध्यम से उगाया जा रहा खीरा और टमाटर अब दुबई तक निर्यात हो रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं खंडवा से हमारे संवाददाता हीरा लाल लोंगरे।
4: खंडवा जिले के जावर गांव के किसान अश्विन बादल सिंह रावले ने 4 वर्ष पहले मात्र 2 एकड़ में खीरा और टमाटर की खेती शुरू की थी। बेहतर उत्पादन मिलने पर उन्होंने गांव के किसानों को जोड़कर FPO का गठन किया। आज इस संगठन से 160 किसान जुड़े हैं, जो करीब 400 एकड़ में टमाटर, खीरा, करेला, लौकी और नींबू जैसी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। इनकी उपज देश के बड़े बाजारों के साथ साथ दुबई तक पहुँच रही है।
5: मैं अश्विन सावले, ग्राम जावर, जिला खंडवा से हूँ। सोलर ड्राई के माध्यम से सब्जियों का मूल्य संवर्धन कर किसानों की आय बढ़ा रहे हैं। किसान संगठित होकर वैज्ञानिक तरीके से खेती करे तो बेहतर आमदनी और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँच सकते हो आप।
4: उद्यानिकी विभाग के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के कारण जावर का FPO आज क्षेत्र के किसानों के लिए एक सफल मॉडल बन चुका है। उद्यानिकी विभाग के उप संचालक श्री अजय चौहान ने बताया कि
6: शासन का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि किसान की आय में वृद्धि हो, इसी तारतम्य में उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषकों को उद्यानिकी की ओर प्रेरित किया जा रहा है। किसान की आय परंपरागत खेती की तुलना में उद्यानिकी फसलों से अधिक प्राप्त होती है।
4: आकाशवाणी समाचार के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे।
0: प्रदेश पुलिस की राज्यव्यापी सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत प्रदेश भर में साइबर जागरूकता गतिविधियां जारी हैं। कल इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने 6,000 से अधिक नागरिकों के साथ साइबर जागरूकता मैराथन आयोजित की। भोपाल में RD मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में करीब 1500 छात्र छात्राओं को डिजिटल अरेस्ट और फिशिंग जैसे साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। वहीं खंडवा, राजगढ़, टीकमगढ़ सहित कई जिलों में स्कूलों, पंचायतों और सरकारी कार्यालयों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल के शौर्य स्मारक में कल अंतर्राष्ट्रीय अनघ मंच द्वारा आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देश मेरे तुम भूल न जाना, वन वीरों का बलिदान थीम पर आधारित यह कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई में हजारों आदिवासी क्रांतिकारियों के बलिदान को इस महोत्सव के जरिए याद किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कल बैतूल में आयोजित स्कूल बैग विद एजुकेशनल डेस्क वितरण कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। मंत्री उइके ने कहा कि डेस्क युक्त स्कूल बैग बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी और नवाचारपूर्ण पहल है, ताकि बच्चे कहीं भी सुविधापूर्वक बैठकर अध्ययन कर सकें। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून जमकर बरस रहा है। अब तक औसत 6.4 इंच पानी गिर चुका है। मौसम विभाग ने आज सागर, दमोह, बैतूल सहित 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रतलाम, उज्जैन सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले को वर्ष 2027 तक पूर्ण साक्षर बनाने के लक्ष्य को लेकर डाइट कल्याणपुरा में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अमृत 2.0 योजना के तहत सांसद रोडमल नागर ने कल आगरमालवा में पौधरोपण की शुरुआत की। भोपाल शहर के जहांगीराबाद स्थित बापू कॉलोनी से 70 श्रद्धालुओं का एक जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। नर्मदापुरम जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट दामिनी की शुरुआत की है, जिसके तहत जिले के प्रत्येक गांव के घरों तक आकाशीय बिजली से बचाव का संदेश पहुंचाया जाएगा। खंडवा में मॉनसून अवधि के दौरान प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु आज से 12 जुलाई तक 7 दिवसीय सिविल डिफेंस वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी में जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव के केशव सभागार में करियर गाइडेंस कार्यशाला का आयोजन किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड पहली बार महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

हर वर्ष 6 जुलाई को विश्व पशुजन्य रोग दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को उन बीमारियों के प्रति जागरूक करना है जो पशुओं से मनुष्यों में फैल सकती हैं। इन्हें पशुजन्य या जीनोटिक रोग कहा जाता है।

6 जुलाई का दिन इसलिए विशेष है क्योंकि वर्ष 1885 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने रेबीज के विरुद्ध पहला सफल टीका लगाया था।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है।
1: अरे?
0: डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सो योर प्लेस और माइन?
6: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डम है?
5: कॉन्डम? लेकिन हम तो
6: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
5: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
4: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
7: इस अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि पशुओं के प्रति दया, जिम्मेदारी और जागरूकता का भाव अपनाएंगे

0: ओनली जी, अब सुनिए कहानी श्रीमती शिप्रा सेन की। कहानी का शीर्षक है कोरा कागज और चंद लकीरें।
1: सुरेंद्र झा और सुमन झा का निवास समस्तीपुर में जाना पहचाना था। बेहद रुचि संपन्न तरीके से सजा घर, प्रवेश द्वार हो या बगीचा, और फिर कलात्मक मुख्य द्वार आते जाते सभी को आकर्षित करती थी। सुमन जी राजेंद्र प्रसाद कॉलेज में रसायन शास्त्र की शिक्षिका थी और झा साहब विश्वविद्यालय में कला संकाय के वरिष्ठ अध्यापक थे। झा दंपति का एक बेटा था कुणाल, पढ़ाई पूरी करके सेना में ऑफिसर बन गया था। छोटा सा परिवार जिन पर पूरी कॉलोनी गर्व से कहती, देखो इकलौता बेटा और उसको भी देश सेवा में भेज दिया। पर माता पिता बहुत खुश थे कुणाल के निर्णय पर, क्योंकि उसने अपने स्वर्गीय दादाजी जो सेना से रिटायर हुए थे के पद चिन्हों पर चलने का निश्चय किया था। सुमन जी कभी कभी उदास हो जाती थी बेटे के लिए, पर फिर गर्व से उसके काबिलियत को दृष्टांत स्वरूप अपने छात्रों को बताकर देश सेवा के लिए प्रेरित करती थी। झा जी बेहद कुशल कलाकार थे। उनकी चित्रकला की एक अनूठी विधा ये भी थी कि कहीं हिंसा का चित्रण नहीं होता था। प्रकृति, पुष्प, पंच तत्व की जीवन में भूमिका और इंसानियत के चित्रण बनाते जो सदैव सकारात्मक और सार्थक होते थे। एक और खासियत उनकी थी कि वे बच्चों से एकाएक रेखा बनाने को कहते और फिर उस रेखा को कैसे चित्र में परिवर्तन करना है सिखाते थे। गलतियां होने पर उसी गलती में से एक नया सृजन हो सकता है, ये कौशल में भी सिद्ध हस्त थे। एक ऐसे कलाकार जो सदैव प्रयोगात्मक विचारधारा के प्रणेता रहे। रंग बनाने वाली कंपनी उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाते थे और सुमन जी को अपनी कंपनी के एडवाइजर मेंबर रखे थे। दोनों पति पत्नी का जीवन बहुत सफल गुजर रहा था। अचानक एक दिन सुमन जी कैंसर से पीड़ित पाई गई। बेटे ने जी जान लगाकर इलाज करवाया पर बचा नहीं पाया। झा साहब के रंगों की पेटी के मानो सब रंग धूमिल हो गए थे। अब झा साहब केवल पेंसिल से कला उकेरने लगे थे। जीवन संगिनी का जाना मानो सारे रंग भी साथ ले गया था। झा जी अब अकेले हो गए थे। कटी पतंग जैसी जीवन की स्थिति को उनके रंगों की शीशी और कूची और पेंसिलों ने और उनके मेधावी छात्रों ने संभाल लिया था। उनके छात्रों ने उनकी कला को केवल देश में सीमित नहीं रखा, बल्कि विदेशों में भी उनके क्लास खुल गए। गुरु शिष्य की अनूठी परंपरा को सभी सराहते और मिसाल देते थे। अब विदेशों में झा साहब को बुलाया जाता था सेमिनार में। बेटा कुणाल जम्मू कश्मीर में पदस्थ था। पिता उसको अपने छात्रों में तलाशते थे और रेडियो में सभी खबर ध्यान से सुनते रहते थे। कश्मीर घाटी में स्थिति ठीक नहीं थी ना, इसलिए अचानक एक दिन कुणाल के वीर गति की खबर आई और पार्थिव शरीर को देखकर मूर्छित हो गए थे झा साहब। पूरे शहर ने अश्रुपूरित राजकीय सम्मान सहित विदाई दी थी मेजर कुणाल को। झा जी के एक छात्र उनको पास ही अपने गांव में ले गया, मन बहल जाएगा सोचकर, और प्रकृति शायद उनमें स्थित कलाकार को जीवित रहने की राह दिखाती रहेगी। आज झा साहब को कुछ कोरे कागज लेकर पार्क की बेंच पर बैठे देखा लोगों ने। उंगलियों पर एक पेंसिल नाच रही थी, आसमान की ओर टकटकी लगाकर न जाने किन गहरे विचारों में खोए थे। आसपास कई प्रातः भ्रमण करने वाले उनको देख रहे थे, पर किसी ने उनकी शांति भंग नहीं की। इतने में एक छोटा सा बालक वहां से गुजरा, ठिठक कर थोड़ी देर देखा और एक झपट्टे में पेंसिल खींचकर भागा। झा साहब चौंक गए पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिए। चुपचाप जेब से एक और पेंसिल निकाली और तेजी से उनके हाथ कुछ लकीर खींचने लगे।

इतने में एक प्रौढ़ व्यक्ति, शायद बालक के दादाजी थे, बालक का हाथ थामे झाजी के समक्ष आए और बालक को प्रणाम करके माफी मांगने को कहा। बालक नजर झुकाए खड़ा रहा पर माफी नहीं मांगी, केवल पेंसिल पकड़े हाथ को पीछे छुपाए रखा। झाजी मुस्कुराते हुए बोले, रख लो, मैं वापस नहीं मांगूंगा, पर आज मैं तुमको एक उपहार जरूर दूंगा। झाजी ने वो कागज जिस पर चित्र बना रहे थे उसको दिया। बालक खुशी से अपने भागते हुए चित्र को देखकर खिलखिलाकर हंस रहा था। दादाजी देखिए, ये वाले दादाजी ने मेरा चित्र बनाया है, कहते हुए आते जाते सभी अंकल आंटियों को दिखाने लगा। काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, सब तारीफ कर रहे थे कला और कलाकार की। अब बच्चे ने झुककर उनके पैर छू लिए। झाजी ने उसको गले लगा लिया, सीने से भींचे, गोविंद कृष्ण जय, गोविंद कृष्ण जय, गोविंद कृष्ण जय बुदबुदाने लगे। सभी इतने मधुर दृश्य को देखकर अवाक थे। कुछ सोच रहे थे कि विषय की तलाश में शायद ये कलाकार बाग में बैठे थे और मिल जाने पर आनंदित थे। सभी की प्रश्नवाचक दृष्टि को देखते हुए झाजी बोले, मुझे मेरा जीवन वापस लौटाने के लिए आप सभी को हृदय से आभार। आज सुबह मैंने मन बना लिया था कि इस कागज पर अपने अंतिम भावना को लिखकर मैं आत्महत्या कर लूँगा। उसी गहरी सोच में शब्द तलाश रहा था, क्या और कैसे लिखूं। इतने में ये बालक पेंसिल छीन कर ले गया। अचानक महसूस हुआ मानो मेरे बाल गोपाल मुझे कुछ कहना चाहते थे। नटखट बाल गोपाल के दौड़ते चित्र को कागज पर झटपट मैं उतारने लगा। आंखों से ओझल होकर भी वो कागज पर रह जाए इस आस में। मैं एक आर्ट कॉलेज का सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। कुछ दिन पहले पत्नी वियोग से गुजरा हूँ और कल मेरे इकलौते पुत्र जो सीमा पर शहीद हुआ उसका अंतिम संस्कार करके लौटा हूँ। जीवन में अब जीने की कोई आस नहीं बची है। सोचा आज मौत को गले लगाकर बेटे के साथ मिलन कर लूँगा, कहते हुए फूट फूट कर रोने लगे झाजी। स्तब्ध खड़ी भीड़ के भी नयन सजल हो उठे थे। थोड़े संयत होकर झाजी बोले, इस बालक ने एक झटके में मुझे हकीकत दिखा दी। एक साहसी बेटे का मैं इतना कायर पिता, धिक्कार है मुझ पर। एक पल में मेरे अंदर के कलाकार ने मुझे कहा, केवल स्वयं के लिए ही जीना चाहते हो या जिस उद्देश्य से जन्म मिला उसको पूरा करना है। अब एक दिशा मुझे दिख रही है। आप सभी को मेरा असंख्य धन्यवाद। आप सभी ने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए आभार के शब्द नहीं है मेरे पास। प्रणाम करते हुए अपने निवास की ओर झाजी चल दिए। बाकी सब लोग भी उनकी बातों पर संजीदा होते हुए अपने गंतव्य की ओर चले गए। धीरे धीरे घर के दरवाजे की सांकल खोलते हुए झाजी में एक आत्मविश्वास की चमक झलक रही थी। घर से निकलते वक्त का असमंजस अब दिशा बोध से सुदृढ़ विश्वास में बदल चुका था। अगले दिन झा साहब के घर के बाहर चमकता हुआ साइन बोर्ड लग गया, मेजर कुणाल स्कूल ऑफ आर्ट्स, निशुल्क आर्ट क्लासेस।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। कार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
4: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य

0: देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
2: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
3: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
4: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में SIT की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और मोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है।

0: श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
1: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण

अभी आप सुन रहे थे फिल्म उस्तादी उस्ताद से का ये गीत। आवाज़ें थी आशा भोसले और भूपिंदर सिंह की। आइए सुनते हैं संजू फिल्म का गीत सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल के स्वरों में। गीतकार हैं शेखर अस्तित्व और संगीत दिया है विक्रम मोंटरोज ने।

मैं प्रेम की दीवानी हूँ। इस फिल्म का गीत सुनिए शान और चित्रा के युगल स्वरों में। गीतकार हैं देव कोहली और संगीत है अनु मलिक का।

अभी आप सुन रहे थे साथिया फिल्म का गीत ऋचा माँ लक्ष्मी वैशाली और शोभा के स्वरों में। गीतकार थे गुलजार और संगीत था ए आर रहमान का।

आपने हरिहरन के स्वर में रोजा फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे पीके मिश्रा और संगीत था एआर रहमान का। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद आप हमारे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। आप सुनेंगे समाचार न्यूज हेडलाइंस। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 6 दिन की विदेश यात्रा पर रहेंगे। पहले चरण में वे इंडोनेशिया पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे। 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचेंगे और 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड में रहेंगे, जो पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल के सतकड़ी में 173 एकड़ में विकसित होने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम में 200 से अधिक उद्योगपति और निवेशक शामिल होंगे। इस परियोजना से 15,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शिवपुरी जिले के पाली में लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। वहीं करीब 211 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का ई लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की राजपत्र अधिसूचना जारी कर सनवर पटेल को 10 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को हिंदू सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और प्रदेश में मानसून सक्रिय है, अब तक औसत 6.4 इंच बारिश हो चुकी है।

0: मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रतलाम, उज्जैन सहित अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लोक रसधार कार्यक्रम में लीजिए सुनिए ममता जंगाकर के स्वर में बुंदेली लोकगीत।

0: अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे आईना उर्दू कार्यक्रम।
1: स्वर तासीर शाहिद, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी और संयोजन था राजेश कुमार राय का। जमशेदपुर केंद्र के द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: अभी आप सुन रहे थे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम आईना।

लौटना है, उसी दर पे रोज़ जाना। और शेर यूं के मिले दाद हौसले को कि ये शौक़ रंग लाए, मिले दाद हौसले को कि ये शौक़ रंग लाए। मेरा काम सब्र रखना तेरा रोज़ आजमाना, मेरा काम सब्र रखना तेरा रोज़ आजमाना। इस शेर को भी आप गौर से सुने, ये मेरे पसंद का शेर है कि मेरा मुख्तलिफ़ बयां है, मेरा मुख्तलिफ़ बयां है तेरा मुख्तलिफ़ है लहजा, मेरा मुख्तलिफ़ बयां है तेरा मुख्तलिफ़ है लहजा। जो मेरे लिए हकीकत वो तेरे लिए फसाना, जो मेरे लिए हकीकत वो तेरे लिए फसाना। और शेर यूं भी कि किसी और दर से अब क्या मेरा वास्ता या हसरत, किसी और दर से अब क्या मेरा वास्ता या हसरत। जहां सर झुका दिया है वहीं अश्क है बहाना, जहां सर झुका दिया है वहीं अश्क है बहाना। और ये शेर भी सुने कि मेरे दिल की तरबियत है, मेरे दिल की तरबियत है मेरी ये अजीब आदत, मेरे दिल की तरबियत है मेरी ये अजीब आदत। वो जो बात भूलनी हो उसे और याद रखना, वो जो बात भूलनी हो उसे और याद रखना। और इस गज़ल का आखिरी शेर पेश कर रही हूँ, जिसे हद से आगे ढूँढा, जिसे हद से आगे ढूँढा, जिसे हद से आगे चाहा, बा जुनून बेनियाजी उसे छू के लौट आना, बा जुनून बेनियाजी उसे छू के लौट आना। गमे इस्तराब क्या है वही शौक आशिकाना, जहाँ जाके लौटना है उसी दर पे रोज जाना। मतला जो है इस गज़ल का को सुने कि किस हक से मैं निकालूं एक नुक्स भी किसी में, किस हक से मैं निकालूं एक नुक्स भी किसी में, तब जबकि एक नाकिस रहता है हम सभी में, किस हक से मैं निकालूं एक नुक्स भी किसी में, तब जबकि एक नाकिस रहता है हम सभी में। और ये शेर सुने, ये हम सबकी दर हकीकत बात है कि आंगन में है खुशी गम दहलीज पर खड़ा है, आंगन में है खुशी गम दहलीज पर खड़ा है, ये सिलसिला अजल से कायम है ज़िंदगी में, ये सिलसिला अजल से कायम है ज़िंदगी में। और शेर यूं भी कि क्यों ज़ख्म ज़ख्म मेरे ये पाँव हो गए हैं, क्यों ज़ख्म ज़ख्म मेरे ये पाँव हो गए हैं, तुम जानना जो चाहो चलना मेरी गली में, क्यों ज़ख्म ज़ख्म मेरे ये पाँव हो गए हैं, तुम जानना जो चाहो चलना मेरी गली में। रिश्तों के हवाले से ये शेर सुने कि रिश्ते तमाम खोए आलम यह है कि अब तो, रिश्ते तमाम खोए आलम है ये कि अब तो, खुद से भी बेखुदी है इस खपते जरकशी में, रिश्ते तमाम खोए आलम यह है कि अब तो, खुद से भी बेखुदी है इस खपते जरकशी में। और इस गज़ल का आखिरी शेर, कोशिश तमाम करके एक याद ही बनी बस, कोशिश तमाम करके एक याद ही बनी बस, लौटा सका न कोई वो वक्त फिर घड़ी में, लौटा सका न कोई वो वक्त फिर घड़ी में, किस हक से मैं निकालूं एक नुक्स भी किसी में, तब जबकि एक नाकिस रहता है हम सभी में। एक गज़ल थोड़ी बड़ी बहर की सुने कि रगे जाँ में सांस की तरह बह, रगे जाँ में सांस की तरह बह के लहू की तरह बदन में आ, रगे जाँ में सांस की तरह बह के लहू की तरह बदन में आ, ये बदन ये जाँ है वतन तेरा तू खुशी से अपने वतन में आ, ये बदन ये जाँ है वतन तेरा तू खुशी से अपने वतन में आ। और शेर सुने, मोहब्बत के लम्हों की बात है ये कि तेरे लम्स के एहसास में मेरे गुम से होश व हवास में, तेरे लम्स के एहसास में मेरे गुम से होश व हवास में, मुझे है कबूल ये दश्त भी, मुझे है कबूल ये दश्त भी मैंने कब कहा है चमन में आ, मुझे है कबूल ये दश्त भी मैंने कब कहा है चमन में आ। और शेर यूं कि तेरे अक्स को कई तरह से, तेरे अक्स को कई तरह से मैं उकेरती रहूं उम्र भर, तेरे अक्स को कई तरह से मैं उकेरती रहूं उम्र भर, मेरी हर गज़ल में तू लफ्ज़ बन, मेरी हर गज़ल में तू लफ्ज़ बन तू ख्याल बन के सुखन में आ, मेरी हर गज़ल में तू लफ्ज़ बन तू ख्याल बन के सुखन में आ। और शेर यूं कि मेरे साथ तेरे उरूज का ये जहान भी तो है मुंतज़िर, मेरे साथ तेरे उरूज का ये जहान भी तो है मुंतज़िर, मेरी बात सुन मेरे साथ चल मेरी जान फिर से चलन में आ, मेरी बात सुन मेरे साथ चल मेरी जान फिर से चलन में आ। शेर आखिर इस गज़ल का कि मेरे रुख

0: पे दुख की ये सिलवटें, मेरे रुख पे दुख की ये सिलवटें है नसीब की ये लिखावटें, मेरे रुख पे दुख की ये सिलवटें है नसीब की ये लिखावटें, तेरा क्या कसूर है इसमें तू, तेरा क्या कसूर है इसमें तू, न मलाल रख न शिकन में आ, तेरा क्या कसूर है इसमें तू, न मलाल रख न शिकन में आ, रगे जाम सांस की तरह बह के लहू की तरह बदन में आ, ये बदन ये जाँ है वतन तेरा, तू खुशी से अपने वतन में आ। और सिलसिला चल निकला है तो मैं एक नज़्म आप तक फिर पहुंचाना चाहूँगी। नज़्म का उनवान है गम क्या है, ये तेरा और मेरा गम क्या है, ये तेरा और मेरा गम क्या है, हैरत और रंज की अकजाई है, जाने कैसी ये शनासाई है, सुबह शाम वही वहशत है, हम में ना फासला ना कुर्बत है, ना हकीकत है ना असरार कोई, हम में तुम में जो है तकरार कोई, जाने किस बात के मुतालिक है, जीस्त की कौन सी सच्चाई है, ये तेरा और मेरा गम क्या है। अगला बन सुने कि चंद हालात हैं आशुफ्ता से, गलतियां दौर ए गुजिश्ता से, बोझ कुछ तरबियत ने डाले हुए, वहम कुछ जहनो दिल के पाले हुए, कुछ मरासिम जो निभाए न गए, कुछ गिले लब पे जो लाए न गए, कुछ हवादिस है कुछ तगाफुल है, और किस्मत की भी आराई है, ये तेरा और मेरा गम क्या है। अगला बनियों की एक लौ है जो कि अफसुरदा है, और खुद का जो खुद से ही पर्दा है, होश तकसीम है फर्जो हक में, एक अरसा हुआ हम है शक में, सच के इंसान है या है नकली, या किसी और की है कठपुतली, क्या नज़ारा है ये नाजिर के सिवा, जाने किस तरह की बिनाई है, ये तेरा और मेरा गम क्या है। आखिरी बंद इस नज़्म का मैं पेश करके आपसे इजाज़त चाहूँगी कि ज़ख्म नासूर हुए जाते हैं, फिर भी कांटों से छुए जाते हैं, और हम है कि इसी हालत में, ज़िंदा रहने की बुरी आदत में, बेगुनाही की सज़ा सुनते हैं, खुद ही फिर अपनी कज़ा चुनते हैं, ये बता दे कोई तो बेहतर हो, उम्र किस जुर्म की भरपाई है, ये तेरा और मेरा गम क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।
1: दोस्तों, अभी आप शायरा अपर्णा पात्रीकर से उनका कलाम समाप्त फरमा रहे थे। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम आईना यहीं खत्म होता है। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा, अपने खतूत के जरिए हमें जरूर मुत्तला करें। हमारा पता नोट कीजिए, उर्दू प्रोग्राम आईना, मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462002। अब आपके दोस्त वाजिद खान को दीजिए इजाजत। आदाब।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील पांडे, वाचन स्वर दीपा सिंह।

0: छतरपुर में केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा सांसद डॉ. वीरेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले के विकास कार्यों की एक एक कर समीक्षा की गई। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने, हर घर नल जल योजना पूरी होने पर पंचायतों को हैंड ओवर करने और नियमित पानी सप्लाई के निर्देश दिए गए। जनप्रतिनिधियों से भी अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की लगातार निगरानी करने को कहा गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जिले में पल्स पोलियो अभियान चलाया। पहले दिन पोलियो बूथों पर और उसके बाद घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जिले में करीब 3,04,000 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए 2,000 से ज्यादा बूथ बनाए गए। अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने की। जल संरक्षण को लेकर चल रहा जलगंगा संवर्धन अभियान भी अब सम्पन्न हो गया है। समापन कार्यक्रम मोटे के महावीर परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार शामिल हुए। उन्होंने प्राचीन बावड़ी के जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया और लोगों से बारिश के पानी को बचाने, जल स्रोतों की सफाई और खेतों में मेड़ बंधान तथा तालाब बनाने की अपील की। जिले के युवाओं के लिए जिला प्रशासन ने लोक सेवा गुरुकुल और सेंट्रल लाइब्रेरी की शुरुआत की है। यहां आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निशुल्क प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग मिलेगी। आज से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी खुद विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। दूसरी तरफ जिले के सरकारी स्कूलों में नए शिक्षा सत्र की पढ़ाई भी नियमित रूप से शुरू हो चुकी है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। शिक्षकों को समय पर स्कूल पहुंचने और बेहतर पढ़ाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं लापरवाही मिलने पर कुछ शिक्षकों के वेतन काटने और समूहों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई भी की गई। छतरपुर में बन रहा मेडिकल कॉलेज अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर हॉस्टल, ऑपरेशन थिएटर, क्लासरूम, इमरजेंसी और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। किनबितवा लिंक परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास को लेकर कलेक्टर पार्थ जायसवाल और पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने करोंदिया पहुंचकर विस्थापित परिवारों से मुलाकात कर सुविधाओं का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त बोरवेल कराने के निर्देश दिए और विस्थापित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर आयोजित करने को कहा। उन्होंने डोढ़न और खरियानी गांव का भी दौरा कर उन ग्रामीणों से चर्चा की जिन्होंने अभी तक अपने आवास खाली नहीं किए हैं। मानसून की दस्तक के बाद जिले में किसानों ने खरीफ की बुआई तेज कर दी है। अब तक 70% से ज्यादा रकबे में बोनी हो चुकी है। किसान मूंगफली, उड़द, सोयाबीन की फसल लगा रहे हैं। कृषि विभाग और किसान FPO के माध्यम से उन्नत बीज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिले के जरूरतमंद मरीजों के लिए भी राहत की खबर है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित 7 लोगों को मुख्यमंत्री स्वच्छ अनुदान मद से इलाज के लिए कुल 3.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। प्रशासन ने अवैध खनिज परिवहन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। खनिज विभाग ने 5 मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 17,45,300 रुपए का जुर्माना लगाया है। छतरपुर के लक्ष्मण कॉलोनी सटई रोड में बाल विवाह की सूचना मिलने पर महिला बाल विकास, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रुकवाया। टीम ने दोनों पक्षों को समझाते हुए बाल विवाह करने पर कानूनी कार्रवाई और सजा के प्रावधानों की जानकारी भी दी। छतरपुर के मऊ सहानिया में 2 दिवसीय विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें महाराजा छत्रसाल के शौर्य वीरता ने दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। समापन दिवस पर मुस्कान चौरसिया ने बुंदेली गायन और संप्रिया पूजा ने पनभानी शैली में महाभारत का प्रसंग प्रस्तुत किया। अंतिम प्रस्तुति सुमित मिश्रा द्वारा संयोजित धन्य धन्य बुंदेल धरा रही, जिसमें कविता शर्मा के गीतों के साथ 16 लोक नृत्य कलाकारों ने बुंदेलखंड की गाथा प्रस्तुत की और अंत में बात विश्व योग दिवस की। जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह परिसर में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 2,000 से ज्यादा लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार भी शामिल हुए और प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण भी लोगों ने देखा। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदे मातरम, गौरव गान की 150वीं।

अभी आप सुन रहे थे वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे विश्व दर्पण कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद तनाव बढ़ा और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की कर दी है घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। वार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारतीय दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क को मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
3: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों,

0: डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टोकरेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेनदेन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तान रेंजर्स की गोलाबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई के घायल होने के बाद तनाव और बढ़ गया है। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि यह घटना बुनियादी अधिकारों, आर्थिक राहत और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग के प्रदर्शनों के बीच हुई है।
2: पूरे क्षेत्र में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों में 600 से अधिक नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच कल लंदन में प्रवासी कश्मीरियों ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में रैली निकाली। दूसरी ओर पाकिस्तान में कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जहां डॉक्टर लंबित वेतन, बेहतर सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों ने मांगे पूरी नहीं होने पर सेवाएं बंद कर देने की चेतावनी दी है। विश्व दर्पण के लिए मैं निवेदी।
1: पुर्तगाल, ग्रीस और स्पेन में सैकड़ों दमकल कर्मी जंगल में लगी भीषण आग से जूझ रहे हैं। स्पेन और इटली ने पुर्तगाल में 3 दिन से लगी भीषण आग को बुझाने में मदद के लिए अपने अतिरिक्त दमकल कर्मी भेजे हैं।
3: ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े शहर थेसालोनिकी के कुछ हिस्सों में अधिकारियों ने लोगों से घर के अंदर रहने का आग्रह किया है। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस उपग्रह मानचित्रण एजेंसी के अनुसार कल तक जंगल की आग 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुकी थी। यूरोपीय संघ के नागरिक सुरक्षा और मानवीय सहायता विभाग ने बताया कि स्पेन ने शुक्रवार को पुर्तगाल को अतिरिक्त सहायता के रूप में 120 दमकल कर्मी और 45 वाहन भेजे, जबकि इटली और स्पेन से 3 दमकल विमान भी मदद के लिए भेजे गए। स्पेन में पूर्वोत्तर गिरोना क्षेत्र में शुक्रवार से लगी जंगल की आग लगभग 2,200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुकी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: प्रचंड तूफान बावी ने अमरीकी प्रशांत द्वीपों पर दस्तक दी है। चक्रवात और मूसलाधार बारिश से गुआम और उत्तरी मारियाना द्वीपों पर असर पड़ा है। लगभग 290 से लेकर 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह तूफान प्रशांत द्वीपों की ओर बढ़ रहा है। अमरीकी राष्ट्रीय मौसम सेवा ने इससे विनाशकारी तबाही की चेतावनी दी है। इससे समुद्र में लगभग 11 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार और छठे विश्व कप खिताब से चूकने के कुछ पलों बाद ही उन्होंने ये घोषणा की। वे हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में भी उन्होंने ब्राजील के लिए एकमात्र गोल किया, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी टीम को हार से बचा ना पाए। उनके संन्यास से ब्राजील फुटबॉल में एक सर्वाधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत हो गया है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। श्री मोदी ने कहा, इस यात्रा से व्यापक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ होगी। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद तनाव बढ़ गया है। और फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्मी फरमाइश संगीत कार्यक्रम सारंगा। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म नाम से। आवाज है पंकज उदास की। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हमारे सुनने वाले श्रोता हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, इन्होंने हमें सागर से पत्र लिखा है। आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद का ये गीत।

अगला पत्र है छत्तीसगढ़ से, सुनना चाहते हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। फिल्म का नाम है बेताब, आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, गीतकार आनंद बख्शी और संगीत है आर डी बर्मन का। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: अगला गीत है फिल्म अकियों के झरोके से, गायिका है हेमलता, संगीत और गीतकार है रविंद्र जैन। फरमाइश आई है बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की। गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद का ये गीत।

गौरी नगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले। ये सुनना चाहते हैं फिल्म परदेश का गीत। आवाजें हैं सोनू निगम, हेमलता और शंकर महादेवन की। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

रज़िया सुल्तान का गीत सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में। गीत के बोल लिखे हैं जानिसार अख्तर ने और संगीत है खयाम का। सुनना चाहते हैं कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनूरा श्रीमाली। आइए सुनते हैं इन सब श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम की अंतिम पेशकश है फिल्म पूरब और पश्चिम से, आवाजें हैं महेंद्र कपूर और साथियों की, गीतकार इंदिवर, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत को सुनना चाहते हैं चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की और नानू।

इसी के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: का भोपाल केंद्र है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे आज इंडोनेशिया पहुंचकर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे। 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचेंगे, 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड में रहेंगे, जो पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भोपाल के सतगढ़ी में 173 एकड़ में विकसित होने वाले डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। इस परियोजना से 15,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की राजपत्र अधिसूचना जारी कर सनवर पटेल को 10 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को हिंदू सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल विकसित भारत जी रामजी योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने योजना के संचालन के लिए 25,863 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी की है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उनका योगदान प्रेरणादायक है और मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रतलाम, उज्जैन सहित अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत

अनाड़ी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी अलका याग्निक और कुमार सानू की, गीतकार थे समीर और रतुस बनाई थी आनंद मिलंद ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

कश्मीर की कली इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, SH बिहारी की बोल थी और तर्ज बनाई थी OP नैयर ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू के युगल सुरों में ये दिल की फिल्म का नगमा।

संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में रानी मलिक के लिखे हुए नक्शे को, जिसे तर्ज से सजाया है अनु मलिक ने, और फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में आनंद असद भोपाली के लिखे बोलों को, जिसकी तर्ज बनाई है राम लक्ष्मण ने। तो आइए सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का ये नगमा।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म का गीत। गीतकार थे परवीन और संगीतकार थे टप्पू मलिक। फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे हम तुम पे मरते हैं फिल्म का नगमा, जिसे गाया था लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। आनंद बख्शी के बोल थे और तर्ज बनाई थी उत्तम सिंह ने।

आइए आपको सुनवाते हैं कुर्बान फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर ने। गीतकार हैं समीर, संगीतकार आनंद मिलंद।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे आज इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे और 10 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे, जो पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आज भोपाल के सतगढ़ी में 173 एकड़ में विकसित होने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में 200 से अधिक उद्योगपति और निवेशक शामिल हो रहे हैं। इस परियोजना से 15,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की राजपत्र अधिसूचना जारी कर सनवर पटेल को 10 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज मालपानी और अनिमेश पार्को को हिंदू सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण 13 जुलाई से शुरू होगा। अभियान में 5,72,000 पशुपालकों को भेंट करने का लक्ष्य है। शौर्य स्मारक भोपाल में कल आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश कार्यक्रम। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सरमती पंचोलिया। बड़वा से प्रवीण, शिमाली, मीना, आदित्य, आदिति, शिवानी और मीनूराज शिमाली। तो आइए आप सभी की पसंद पूरी करते हैं और आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का मर्डर फिल्म का ये नगमा, जिसे आमिर जमाल ने आवाज़ दी है। सईद कादरी के बोल हैं और अनु मलिक की तर्ज। तो आइए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए अब सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं नेपाल वैली सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। समाजी नगर से राजेश, राजदीप, राशि और शीतल। आप सभी ने सुनना चाहा है बरसात फिल्म का नगमा, आवाज़ें सोनू निगम और अलका याग्निक की, गीतकार समीर और तर्ज बनाई नदीम श्रवण ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

शाहजहाँपुर से मनमोहन राजावत, राज मधुराशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, ऋचा, रिया, रीत, ऋषभ और इनके परिवार के सदस्य, गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर और आरती। आप सभी ने सुनना चाहा है बरसात की रात फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी की बोल हैं तस बनाई रोशन ने।

सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हमीदा, अस्मा, सालिया, शुएब, मुश्तबा, रऊफ़ और शाहिद। गांधीबाग अकोला से रमेश और वैशाली। मुरादाबाद से अयूब खान, इरम, गुड़िया और शुएब। आप सभी ने सुनना चाहा है क्रिश फिल्म का नगमा सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। इब्राहिम अश्क के बोल हैं और राजेश रोशन ने इसकी तर्ज बनाई। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं क्रिश फिल्म से ये नगमा।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक हंसना मना है का पांचवा भाग।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। वैलेंटाइन डे किसी को अच्छा लगा तो किसी को बुरा, कोई खुश हुआ तो कोई खफा हो गया। अरे लाख मना करें आप, मगर गोपाल तिवारी कहां मानने वाले।
1: एक फेस्टिवल अभी घुसपैठिए की तरह हिंदुस्तान में घुसाया, और घुसा ऐसे कि हिंदुस्तान तो त्योहारों का देश है, यहां तो हर दिन त्योहार है। कैसे त्योहार? बैठ की।

0: भैया दूज, धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली, पंचमी, छठ, नागपंचमी, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, दशहरा, गन्ना ग्यारस, भीमसेनी द्वादशी, धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली। अब ये बताओ कौन सा दिन खाली। मतलब त्योहारों का देश हिंदुस्तान, लेकिन जिन देशों में त्योहार नहीं है अब वो क्या करें, उन्हें बड़ी दिक्कत होती। यार हिंदुस्तान तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे रोज त्योहार है, वहाँ कभी कुछ पकवान बन रहे हैं, कभी होली खेली जा रही, तो कभी ईद, तो कभी दिवाली, तो कभी क्रिसमस। यानी स्वर्ग की कहीं कल्पना है तो हिंदुस्तान में है, क्योंकि विश्व के जितने त्योहार हैं उसमें से अधिकांश हिंदुस्तान उसका जनक है। एक त्योहार विदेश से आया और वो त्योहार धीरे धीरे संक्रमित कर रहा है हमारी युवा पीढ़ी को, उस पर एक व्यंग है और मजा लीजिए। मैं उसके विरोध में भी बात नहीं कर रहा, उसके पक्ष में भी बात नहीं कर रहा, केवल आनंद लेने की बात है। आइटम का नाम है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे एक ऐसा त्योहार जिसे पाश्चात्य संस्कृति में मनाया गया, जिस दिन किसी संत ने यह कहा कि हम एक दूसरे में प्यार बांटें, एक दूसरे के साथ स्नेह बांटें। ये इसका सच्चा मैसेज था, और अभी जो उसका जो रूप हो गया है विकृत, वो भी हम देखेंगे इस आइटम के अंदर। वैलेंटाइन डे के कम से कम 2-4 दिन पहले लड़कों में विशेष तैयारी होती, और कैसी तैयारी वो देखिए साहब, लड़कों की तैयारी। 4-6 लड़के हैं और लड़कों में चर्चा चल रही है। तुम तो संजू कैसा क्या तुम्हारा कलर? अरे यार गुरु, यार वो जीन्स ले ली है, अब टी शर्ट की यार जुगाड़ नहीं हो रही, तुम दिलवा दो। तुम एक काम करो, 20 पड़े हैं, हाँ पड़े, तुम एक काम करो, वहाँ चलो, वहाँ गोल बाजार के वहाँ सब सेकंड हैंड मिलते हैं। अरे कोई पहचान जा, अरे कचने पर दे रहे हो चलेंगे। यार तुम्हारी क्या व्यवस्था यार? अरे यार जब क्या हुआ, पिछले बार कुर्ता पहन के गए थे तो वो यार उन्हें अच्छा रिस्पांस नहीं, इस बार क्या व्यवस्था तुम्हारी? यार भैया लेदर वाली जैकेट मिल जाए। अरे तुम भी बड़े भाई ना, उधारी के चक्कर में हर समय रहते, तुम आओ एक काम करो, शाम को आओ, हम दिलवाते हैं, वो चच्चा की है, हम दिलवा देंगे सेटिंग से, चिंता नहीं करो तुम। तुम्हारी क्या व्यवस्था यार? अरे यार मतलब कुर्ता मिल गया, हाँ मिल गया कुर्ता, और मतलब जीन्स भी सब मिल गई। अब यार बड़ा भाई यार जूते की बहुत दिक्कत, क्या? अरे बोले यार वो जूते यार ढीले पड़ रहे हैं यार, और छोटे भाई के लिए तो वो बहुत गड़ रहे हैं, काट रहे हैं यार। तो बोले फिर क्या व्यवस्था? पैसे की व्यवस्था करिए यार, 250-300 रुपये। हम सोच रहे हैं यार सदर से मतलब जाके ले लें जूते। अरे यार तुम सदर जाने क्या जरूरत, हर चीज़ सदर जाना, गोरखपुर जाना, यहीं मिल जाएंगे। तुम बोलो तो कितने चाहिए तुम्हें? और विश्वास नहीं है तो मतलब 14 को चलना, मुफ्त दिलवाएंगे अपन। और सुबह से माहौल बन रहा है, और सब सुबह से अपना बिल्कुल टीम टाम होके, और जो दुकान होती है बार्बर की वहाँ भी भीड़ लगी हुई है, शेविंग विविंग बन रही है बढ़िया। अरे तो खूंट निकाल दी, अरे यहाँ से, अरे आज बहुत तुम उल्टी भी रेजर चलवा रहे, सीधी भी नहीं गुरु, करीब का मामला है ना, तो जरा गड़ना नहीं चाहिए। अरे हाँ सही। अब साहब पूरी तैयारियाँ हो गई, और सुबह सुबह यहाँ इनकी तैयारी चल रही है, वहाँ दूसरे डिपार्टमेंट की भी तैयारी चल रही है।
1: तुम्हारा कैसा क्या? नहीं हमने तो ना नई ड्रेस बनवाई है, और ये शॉर्ट ब्लाउज, शॉर्ट ये शॉर्ट वो, तू तो बिल्कुल आजकल इतनी शॉर्टकट होती जा रही है, ऐसा नहीं करना कि अल्लाह सब हो गया बाद में हम लोग को पता चल रहा है। नहीं रे तेरे को तो ना कितनी पक्की सहेली थी ना, हाँ मालूम है पक्की सहेली, पिछली बार बुलाया था वहाँ, बाद में कज़न बोल, नहीं वो कज़न ही हमको चार आ रही। एक बात बता, जिसको तुम कजन कह रही थी परसों तक तो मेरे कजन थे, तो आए कैसे हो गए?
0: अब साहब ये सब चर्चाएं, वहां पुलिस महकमा भी जो है अपनी तैयारी में लगा है, और आदेश दिए जा रहे हैं।
2: ऐसा है कि देखिए देश में ये जो त्योहार आ रहे हैं इनसे बड़ी दिक्कत हो रही है, समझ रहे नहीं आप, हमारी युवा पीढ़ी बिगड़ती चली जा रही है। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी जगह हैं, खासकर पॉइंट है ना, कॉलेज वगैरह हो गए, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, कॉफ़ी हाउस, और जहाँ जहाँ मीटिंग पॉइंट है पूरे में सब में रहेंगे। और सुनो तुम इधर आओ, रेखा, सुशीला, श्यामा तुम इधर आओ, कर लो तुम भी जाओ। एक चीज़ ध्यान रखो कि कल तुम लोग विदाउट यूनिफॉर्म रहो।
3: क्यों सर, यू विदाउट यूनिफॉर्म?
2: समझो बात, जितनी कह रहा है मिशन है हमारा, विदाउट यूनिफॉर्म रहोगी, और अगर कोई फूल दे तो ले लेना।
3: नहीं सर हम किसी से भी,
2: अरे तुमको फूल लेने का मतलब हम वैसा नहीं बोल रहे, फूल दे तो ले लेना, और उसके बाद फिर मतलब झुराई चालू, समझ गए नहीं समझ गए?
0: ये पूरा वहां भी आदेश चल रहा, वहां भी बड़ी

0: तैयारियां हो रही साहब। अब सुबह जब हुई, वहां फूल वाले भी अपना जुगाड़ करके फूल लाए हैं, और 2 रुपए की कली 20 रुपए में बेचने के चक्कर में है, कुछ प्लास्टिक की कलियां भी लाए हैं, उनकी भी तैयारियां हैं। और देखिए सुबह का वक्त और सब अपने अपने मुहिम में चल पड़े, और कॉलेज के पास, स्कूल्स के पास, बच्चों में, सब में बड़ा जोश है त्यौहार को मनाने का। जो त्यौहार नहीं मनाने देना चाहते उनमें भी बड़ा जोश है, क्यों नहीं मनाने देना चाहते। उसमें कुछ लोग नए शामिल हुए हैं दूसरी पार्टी से, क्यों बोले पिछले साल तो तुम विरोध नहीं कर रहे थे बाबा, इस बार, अरे नहीं यार पिछले बार हम फूल लेके गए तो मना कर दिया हमने, बोला ठीक है स्वच्छ विरोधी में शामिल हो जाओ। बोले गुरु इस बार तो बहुत मतलब चटकाना है। बोले तुम क्यों उसको मारे क्यों रहे पिछली बार, अरे वैलेंटाइन का तो बहाना रहा, कोई बोलता नहीं हो चक्कर में मरना ही चक्का दो। ये सब चर्चाएं हुई। अब जो फूल देते हैं और लेते हैं, जिनका मामला पहले से पटरी में है उनकी बात अलग है, और जो पहली बार हौसला बढ़ाते हैं उनके साथ बहुत गजब बात होती है। कैसी बात, अब मान लीजिए लड़का दे रहा है तो वो 3-4 बार सोचेगा कि कहीं दे ऐसा ना हो कि रिवर्स में झापड़ पड़ जाए। माने एक बड़ा डर रहता है, और लड़कियों को भी डर रहता है, इन्होंने भैया ना देख ये वो बाजू वाला देख रहा हूँ शिकायत कर देगा। अब जैसे ही उसने फूल दिया, एक्सक्यूज मी फूल, मुझे आपसे बात नहीं करनी, हम आपको बहुत मतलब चाहते, आप चाहो या ना चाहो, आप जा नहीं तो हम बोल देंगे अभी शोर मचाएंगे, आप फालतू नहीं नाटक नहीं करो, आप प्लीज दे दीजिए माम, अच्छा रहने दीजिए हम जा रहे, वो भागा। ये साहब ऐसी कई घटनाएं घटी। अब दोस्तों की चर्चा चल रही है, एक चौबारे पे मैं गया, काफ़ी दोस्त बैठे हुए हैं, शाम का वक्त है, और उनकी समीक्षा चल रही है कि बॉस फूल मंडी में क्या स्थिति है, कॉलेजेस में क्या स्थिति है, यहाँ क्या स्थिति है, और क्या चर्चा हो रही है। देखिए साहब, एक उसमें से गैंग लीडर है, और वो सबको एक एक को बुला के पूछ रहा है, तुम आओ बेटा तुम बताओ तुम्हारे फूल देने का क्या हुआ, तुम भी बताओ फूल मिले कि नहीं मिले। अरे यार फूल देना तो है लेकिन मंडी में फूल नहीं है यार, तो तुम एक काम करो ना तुम वहाँ चले जाओ फूल मंडी बड़े बाजार के पास चले जाओ। अरे भैया कह रहे यार, गुड्डू भी कह रहा क्या हुआ भैया, गुड्डू से पूछो ना क्या तुम रो कह रहे यार भैया हुआ क्या भैया, हम फूल लेना मेरे यार 20 रुपया के 3 कली की बात है यार, बाप रे ऐसा टल्ला टल्ला आ रहा है कमर हट गई गुरु, बहुत बड़ा मारा माँ कसम बहुत मारा,
1: और जा फूल लेने।
0: ये घटनाएं हमने एक से पूछा, अच्छा एक काम करो तुम्हारे इधर लग रहे हैं फूल, तुम्हारे इधर के फूल का क्या हुआ। अरे विजय रात ही में कोई चुरा के लेकर, हमने सोचा सुबह ताजा देंगे, वो ताजे के चक्कर में बासा भी चला गया। विजय तुम्हारे इधर तो इधर आ, तुम्हारा क्या नाम।
2: हमारा नाम झोरी लाल।
0: अरे बहुत सुंदर झोरी, झोरी बेटा तुम्हारे तो बगीचा लगा ना, तुम्हारे कौन से फूल लगे।
2: हमारे इधर तो गेंदा की लग।
0: अरे गेंदा के फूल नहीं दिए जाते यार। तुम्हारा क्या नाम है
2: जी। खजूरी।
0: क्या नाम। खजूरी। अरे बहुत सुंदर खजूरी, तुम्हारे इधर बेटा कौन से फूल लगे।
2: हमारे इधर तो रात रानी के लगे।
0: अच्छा रात रानी के फूल नहीं दिए जाते यार,
2: नहीं तो हम तो देंगे।
0: अरे रात रानी के फूल नहीं दिए जाते, कब दोगे तुम।
2: दिन में नहीं देंगे, बहुत डर लगता है, रात रानी के फूल रात में कल्टी में देंगे।
0: और बेटा तुम बताओ कि तुम्हारे इधर। अरे बहुत सुंदर, आओ आओ भैया श्यामदास जी आओ आओ। अब श्यामू आ गए, रंग पक्का, कलर छूटे, पैसा वापस। उनसे पूछा कि क्यों तुम दे रहे फूल कि नहीं।
3: भैया हम नहीं देंगे यार। क्यों। अरे सोचना देगी ना,
0: दे दो ना, क्या डरने क्या बात है। अच्छा ये बताओ दे किसको रहे हो।
3: अपन तो मतलब उसी को देंगे, अब दोनों का हम लोग का कलर भैया एक ही सा है ना, मैचिंग है।
0: अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा कलर मैचिंग है, तुम फूल कौन सा दे रहे हो।
3: भैया ऐसा है, गोरा कलर होता तो अपन लाल वाला फूल गुलाब का दे देते, लेकिन पक्के कलर की हम सोच रहे हैं कि मतलब मैया को जासौन का चढ़ा दे।
0: अब ये साहब फूलों की चर्चा चल रही है, एक से बुलाए तुम इधर आओ, तुम कहा फूल देते।
4: अरे भैया हम नहीं दे, फूल के पीछे बहुत देखा।
0: तुम क्यों नहीं।
4: अरे ग्यारह फूल दे रहे यार, हम लाइन में लगे भैया, 4 से जन के फूल ले रही हूँ, वापस आ गए।
0: क्यों तुम्हारे नहीं
4: भैया, नंबर ही नहीं आया भैया।
0: तो फिर
4: हम भी लेके आ फूल, अब दूसरा वाला दें।
0: कौन सा दोगे।
4: बेशरम का।

0: फूलों की चर्चा चल रही।
1: एक को पूछा क्या भाई तुम काहे के फूल दे रखे हैं? लगे गुरु हमारी जो है ना सफेद कपड़े की बहुत शौकीन। क्या झक कपड़े पहनती गुरु मार एकदम। अब कौन कौन सी कंपनी के पाउडर ऑर्डर से धो के बहुत झमाझम कपड़े सफेद जूती और सफेद बिल्कुल एकदम बालों में रिवेन रिवेन मतलब बिल्कुल सफेदी की चमकार है। कहने लगे फिर आप बिल्कुल चांदनी बदन गुरु, हम तो चांदनी बदन को चांदनी रात में आप बिल्कुल सफेद कपड़ों में चांदनी के फूल देंगे। बात अच्छे अब ये फूलों की चर्चा चल रही है। हमने पूछा काय बड्डा तुम कैसे फूल दे रहे? हम कभी नहीं देंगे बाबा फूल। क्यों? अरे गुरु यार हमने बोला फूल दे तो उसने कहा तुम अप्रैल में आना। एक लड़के को बुलाया और उससे पूछा तुम आओ तुम्हारा नाम?
2: जी झोरी।
1: अरे कैसे कैसे नाम धरते तुम लोग यार। झोरी दराव बेटा तुम कहाँ रहते?
2: जी ग्वारी घाट में।
1: ग्वारी घाट में रहते बहुत खूबसूरत बात है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी रहते हैं। अब ये बताइए ग्वारी घाट बड़ा धार्मिक स्थल भी है, माँ नर्मदा का सरिल है और ग्वारी घाट में बहुत बढ़िया फूलों की खेती भी होती है, नर्सरी लगी है, वहाँ तो फूल जरूर मिल जाएंगे। नहीं भैया वहाँ का सब फूल मतलब पहले ही कट गए बिक गए भैया, एक्सपोर्ट हो गए। अच्छा एक्सपोर्ट हो गए? हाँ भैया इस बार फूल नहीं है वहाँ, बहुत महंगा गया गुलाब इस बार वहाँ का, तो अभी कोई फूल नहीं मिलेंगे। मिलेंगे ना भैया? तो कौन से फूल? खारी वाले। इसी दौरान मैंने एक पार्क का सर्वे किया, पार्क में देखा कि दो तीन लोग यहाँ वहाँ बैठे हैं और बड़े उदास बैठे हैं। एक मित्र को मैंने देखा कि वो परिचित थे कहीं से, बड़े उदास बैठे। हमने पूछा क्यों क्या हुआ तुमको यार? अरे बोले यार भैया यार बहुत दिक्कत हो गई। बोले क्यों क्या हुआ? बोले यार हम मतलब बहुत दिन से सिलसिला चल रहा था, आज फाइनल बात होना थी तो यार हमारे पिताजी ने कहा कि नहीं उसके पिताजी क्या देंगे दहेज में, कुछ दे नहीं पा रहे हैं। एक काम करो तुम तो वो दूसरी वाली पार्टी उसको हमने यस कर दिया और वहीं शादी करो तुम। तो यार वो वहाँ से मतलब दिल टूट गया यार क्या बताएं। तो फिर बोले फिर हुआ क्या? तो बोले यार हम क्या बताएं बहुत दुखी हैं। वो शायराना अंदाज के आदमी थे तो उनने उसी अंदाज में अपनी बात बयां की कि मोहब्बत में मेरा सर फूटा, मोहब्बत में मेरा सर फूटा, हाथ टूटा पैरों में दर्द आया है। मोहब्बत में मेरा सर फूटा, हाथ टूटा पैरों में दर्द आया है, और मैं जब निकला उनकी गली से तो उन्होंने अखियों के झरोखों से देखा और फरमाया बहारो फूल बरसाओ। लोग अलग अलग तरह की शर्त लगाते हैं और शर्तों की बात होती है, लेकिन उसके पहले एक बात वैलेंटाइन डे की चल रही थी। बिटिया जब घर में पहुंची तो पापा पहले से मौजूद थे और पापा ने जैसे ही बिटिया को आते देखा और क्या बात की। कितना बज रहे हैं?
3: पापा 5:30।
1: अच्छा कॉलेज कितने बजे छूटता?
3: पापा जी 3:30 बजे छूटता।
1: तो इतनी देर क्या कर रही थी?
3: नहीं वो सहेली के यहाँ चली गई थी तो इसलिए लेट हो गई।
1: हमें सब पता है सहेली के यहाँ चली गई थी तुम, और ये हाथ पे पीछे क्या है?
3: नहीं पापा कुछ नहीं।
1: हाथ दिखाओ।
3: नहीं वो कुछ नहीं।
1: हाथ दिखाओ, हमने कहा नहीं अभी, अब हाथ दिखाओ। रोने रोने की बात नहीं है। अच्छा मतलब गुलाब की कली, हम समझ गए कहाँ से तुम आ रही हो।
3: पापा मम्मी हमको बोलते।
1: तुमको नहीं बोले किसको बोले?
3: मम्मी को।
1: क्यों मम्मी ने क्या किया? और मम्मी है कहाँ तुम्हारी? मम्मी कहाँ? देखो बेटा
3: मम्मी नहीं है।
1: क्यों कहाँ गई मम्मी?
3: मम्मी वहाँ गई है प्रवचन सुन।
1: क्यों आज किसके प्रवचन हो रहे? कौन संत आ गए?
3: वो संत वैलेंटाइन आए।
1: और जैसी मम्मी आई, आइए कहाँ गई थी?
3: नहीं वो गुरुजी आए थे तो उनका प्रवचन सुन।
1: और ये हाथ में क्या तुम्हारे? अच्छा पूरा बुके लेके आई हो तुम गुलाब का, बहुत अच्छे। कौन ने दिया ये?
3: नहीं सब सब जन चढ़ाने को लाए नहीं तो मतलब आखिरी बचे वाले हम।
1: तो हमको ना बता दो बिल्कुल। ये ऐसी बहुत सारी बातें वैलेंटाइन में हमने सुनी। एक और बिटिया बिल्कुल सबसे अलग, सुबह उठी पूजा की और 200 रुपए की उसने गुलाब की माला दो महीने पहले बुक कर दी थी। वो गुलाब की माला उसने ली और गुलाब के दुकानदार से कहा कि एक कली मुफ्त। हाँ मैडम बोले आपने 200 रुपए की माला ली, एक कली की बात करें? ये लीजिए, बढ़िया पैक करके उनने खुशबू डाल के और वो थर्मोकोल के बबल और बढ़िया से उसको

जरा सजा के वो उसने दिया और गुलाब की माला उसने ली, साथ में कुछ मिष्ठान लिया और बाबा के दरबार गई। बाबा को एक माला चढ़ाई उसने, हाथ जोड़े आंख बंद बाबा से विनम्र भाव से प्रार्थना की, बाबा मैंने आपका ख्याल रखा, आप मेरा रखिएगा।

0: मैं तो रोज ले जाती हूँ भगवान जी के लिए फूल, और आप आज मना कर रहे हैं, ऐसे में भगवान जी नाराज हो। तुम हमें न बताओ मतलब कि भगवान जी नाराज हो जाए, हमें मालूम तुम फूल कौन के लाने ले जा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, सच्ची में मैं भगवान के लिए फूल ले जा रही हूँ। आप बिल्कुल ऐसे में भगवान आपको पाप पड़ेगा और किसी को मना नहीं। हमें न बताओ बेटा, तुम जौन के लाने फूल ले जा रहे हैं हमें सब मालूम है। आपको क्या मालूम है? ऐसा है बेटा, तुम जितने दिन फूल ले गई आज के बाद फूल ले जाना बंद। क्यों ऐसा क्यों आप कर रहे हैं हमारे साथ जुल्म? ऐसा है बेटा, तुम जौन भगवान के लाने फूल ले जाती हो, वे तुम्हारे वाले भगवान आज हमारी नातिन से एंगेज हो रहे हैं।
1: हंसना मना है,
2: हंसना मना है,
1: रे हंसना मना है,
2: हंसना मना है।
1: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
2: हंसना मना है।
3: ले लो भाइयों, ताजे फलों का संसार आपके द्वार पे आ गया। अरे कश्मीर का लाल सेब ले लो, महाराष्ट्र का संतरा ले लो, भुसावल का ले लो केला, सबसे बढ़िया ताजा केला, जबरदस्त और प्यारा मीठा मीठा ताजा केला ले लो भाई साहब।
4: ले केले वाले, ए केले वाले।
3: हाँ बाबूजी, नमस्कार बाबूजी, बोलिए बाबूजी।
4: ये केले कैसे दिए?
3: ये वाले केले भुसावल के बाबूजी, बड़े प्यारे, बहुत ताजे, बहुत बढ़िया केले हैं बाबूजी। अरे भाव क्या लगाए बाबूजी, जो मन करे आपका दे देना, और क्या है।
4: अरे भाई कुछ तो भाव होगा, कैसे दिए आपने केले?
3: अरे आप पूछ रहे तो बता देते, 5 रुपए के 12।
4: पाँच के 12?
3: हाँ।
4: अरे यार कुछ कम करो यार।
3: तो 10 ले लो।
4: नमस्कार नमस्कार, आइए साहब आइए।
3: और क्या हाल दोस्त?
4: और बढ़िया।
3: लाला एक काम करो भैया, जरा जल्दी से 6 साबुन दे दो, नहाने के साबुन।
4: नहाने का साबुन? अच्छा अच्छा, छोटू जरा नहाने के साबुन निकाल लो भैया।
5: सेठ जी नहाने का साबुन खत्म हो गया है। सेठ जी
4: क्या कहा? नहाने का साबुन खत्म हो गया है? भाई साहब नहाने का साबुन तो खत्म हो गया है। एक काम कीजिए कि वो रात को हमारा माल आने वाला है, तो जैसे ही हमारा माल आएगा तो कल वो साबुन आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
3: तो एक काम करो, साबुन नहीं है, है ना, आप नाले दे दीजिए, वो पायजामे में जो नाले डाले जाते हैं।
4: अच्छा अच्छा, पायजामे का नाला?
3: हाँ, हाँ,
4: हाँ जी पायजामे का नाला। छोटू पायजामे का नाला देना भैया।
5: सर जी नाला तो पायजामे का खत्म हो गया। सर जी रात में माल आएगा तभी आ पाएगा।
4: क्या कहा? पैजामे का नाला भी खत्म हो गया है। भाई साहब क्या है कि वो नाला भी खत्म हो गया है पैजामे का, वो क्या है कि माल आने वाला है, और जैसे ही रात को माल आएगा तो हम आपके यहाँ वो नाला और साबुन, ये दोनों सामान पहुँचा देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए।
3: माल आने वाला, माल आने वाला। अच्छा फिर आप एक काम करिए, आप बहुत जल्दी से वो जूते की पॉलिश दे दीजिए, वो काले वाली।
4: जूते की पॉलिश?
3: हाँ
4: काली वाली।
3: हाँ, हाँ।
4: वो तो साहब ये रखिए, ये लीजिए, ये काली।
3: हाँ।
4: ये आपने काली मांगी?
3: हाँ।
4: जी जी ये लाल है, क्या है कि काली जरा खत्म हो गई है। हाँ। वो माल आने वाला है साहब, हमारा जैसे ही माल आएगा तो हम वैसे आपके यहाँ तीनों सामान पहुँचा देंगे।
3: हमें कोई जरूरत नहीं है, आप एक बात बताइए, आपकी दुकान में ताले हैं?
4: ताले?
3: हाँ ताले। हाँ, ताले।
4: ये देखिए ताले तो सामने रखे, ये देखिए छोटा ताला, ये देखिए बड़ा, ये हरा वाला देखिए कैसा है, ये देखिए।
3: हमें ताले चाहिए नहीं है भाई साहब, हमको ताले नहीं चाहिए हैं। आप एक काम करिए, आप अपनी दुकान का शटर नीचे गिराइए, दुकान बंद करिए, उसमें ताले लगाइए और अपने घर जाइए। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि हंसने से आपकी कितनी मांस पेशियां तनाव रहित हो जाती हैं? नहीं मालूम ना? वैसे एक राज की बात बताऊं, हमें भी नहीं मालूम। मगर अंदाजा है कि 2-400 मांस पेशियों पर असर तो होता होगा, है ना। खैर छोड़िए, विनय जैन एक बार फिर आ रहे हैं आपको हंसाने के लिए।
4: एक साहब डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और बोले, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब जल्दी चलिए। क्या बात है डॉक्टर साहब जल्दी चलिए? अरे भाई बात क्या है, कहाँ चलूँ मैं? डॉक्टर साहब क्या है कि वो हमारे घर में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। अरे भाई किसकी तबीयत खराब है? जिसकी तबीयत खराब है उसको यहीं ले आऊँ? डॉक्टर साहब वो यहाँ नहीं आ सकती। अरे भाई कौन नहीं आ सकती? आपकी माता जी हैं, आपकी पत्नी हैं, आपकी बच्ची हैं।

0: नहीं डॉक्टर साहब, वो क्या है ना कि वो यहाँ मैं उनको ला नहीं सकता। अरे भाई वो है कौन? वो डॉक्टर साहब, हमारी भैंस बीमार है। भैंस बीमार है? शट अप, गो डाउन। भैंस बीमार है और मेरे जैसे डॉक्टर के पास आप यहाँ पे ये शिकायत लेके आए कि भैंस बीमार है, मैं आपके घर आपकी भैंस को देखने चलूं? मैं मरीज को यहाँ पर देखता हूँ, वो भी जानवरों को नहीं, इंसानों को। तुम भैंस की तबीयत खराब लेके मेरे पास आए हो, गेट आउट। अरे डॉक्टर साहब कुछ करो डॉक्टर साहब, हमारी भैंस मर जाएगी डॉक्टर साहब, मैं भैंस को बिल्कुल नहीं ला सकता साहब। ठीक है, डॉक्टर साहब को दया आ जाती है, एक काम करते हैं, तुम्हारी भैंस की तबीयत खराब है तो मैं उसको दवाई दे देता हूँ और ये गोली दे देता हूँ, तो तुम ये गोली ले जाओ और भैंस को खिला देना और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, इसका 50 रुपया लगेगा। हाँ डॉक्टर साहब, हम 50 रुपये देंगे। साहब 50 रुपये देते हैं, डॉक्टर साहब उनको 2-3 गोलियाँ देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गोलियाँ, देख के साहब उनको खिलाने का तरीका पूछते हैं। डॉक्टर साहब इसको खिलाएंगे कैसे? अरे भाई एक तो भैंस का इलाज बता रहे हैं, वैसे ही हम जानवरों का इलाज करते नहीं हैं, उसके बाद तुमको हम गोली दे रहे हैं। खिलाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है भाई। तुम चूल्हे फूकने वाली कभी तुमने वो फूकनी देखी है जिससे फूका करते हैं? हाँ साहब, हमने फूकनी तो बहुत देखी। बस फूकनी को ऐसा भैंस के मुंह में फंसाना और उसके बाद तुम क्या करना, गोली को लेके फूकनी के बीच में रखना और जोर से एक बार फूंक मार देना, बस गोली अंदर, भैंस की तबीयत ठीक। दूसरे दिन साहब वापस लौट के आए, डॉक्टर साहब ने पूछा कि भाई भैंस की तबीयत ठीक है? बोले साहब भैंस की तो छोड़ो, हमारी तबीयत खराब हो गई। बोले क्या हो गया? बोले साहब जैसे बताया था वैसे ही किया था, फूकनी उकनी सब लगा दी भैंसिया के मुंह में, जैसे ही गोली रखी तो भैंस ने पहले ही फूक मार दी।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हंसना मना है, मगर आपकी न हंसने की कसम तोड़ने के लिए आवाज दे रहे हैं हसोड़ गोपाल तिवारी को।
2: कुछ लोग ऑफिस में भी होते हैं तो ऐसी बात करते हैं कि उसका कुछ मजा ही अलग होता है। एक सज्जन बैठे हुए ऑफिस में अपने कुछ मैटर ड्राफ्ट कर रहे थे और ड्राफ्टिंग के वक्त जो गलतियां होती हैं, तो पेपर चूंकि शासकीय होता है तो उसका कैसा भी उपयोग किया जा सकता है, तुरंत अंदर 4 लाइन लिखी, नहीं गलत, ऐसा मोड़ा और फेंका उन्होंने, फिर दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, ऐसा कई देर से कर रहे थे। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने लिखा कुछ और उसको मोड़ा, फेंकने के लिए एक विंडो जो होती है, खिड़की होती है, उसमें थोड़ा छेद था, बाहर फेंकने के वो मूड में थे, जैसे उन्होंने ऐसा करके फेंका और फेंका तो वो टकरा के वापस आ गया। अरे यार नहीं गया, फिर रेड गया और फिर फेंका, फिर नहीं गया, 3-4 बार ऐसा हो गया। तो पास में एक जो सज्जन बैठे थे वो इरिटेट हुए और उन्होंने वो कागज उठाया, नहीं भाई साहब ऐसे नहीं फेंकते, देखो निशाना देखना है, और जैसे उन्होंने लिया एक बार में ऐसा फेंका उस तरफ, देखा ऐसे फेंकते हैं। भैया ऐसा है, हमारे बस की बात नहीं है, आप ही कर सकते हो क्योंकि आप बचपन से फेंक रहे हो। और गजब गजब बातें हो जाती हैं। एक सज्जन गुरंदी बाजार पहुंचे और गुरंदी बाजार पहुंचकर उन्होंने कुछ चीजों के रेट पूछे, और रेट कैसे पूछे, क्या बात हुई देखिए। एक तोता बेचने वाला था और तोता बेचने वाले के पास गए और तोते की क्वालिटी वाइज उसके रेट से वो पूछ रहा है तोते के बारे में, देखिए। अरे भैया ये तोते दिखा रहे जरा। हाँ साहब कौन सा तोता देखना चाहेंगे सर आप? वो वाला दिखाओ, वो जो लोहे के पिंजरे में है, जो ऑर्डिनरी सा, वो जिसकी कंठी इंटी है और बहुत बढ़िया सा, कैसा तोता वो दिखाओ जरा, कैसा लग रहा है वो? साहब ये जो तोता है, इस तोते को करण तोता बोलते साहब, ये राम राम सीताराम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलता सर, हेलो बोलता है मिले तो, हाय बोलता है मिले तो, बाय बोलता है जाए तो, और मोहल्ले में कभी मिल जाए, कभी कॉलोनी में मिल जाए तो फौरन बोलता है काय, तो हाय बाय और काय का तीनों का मैच है इसका साहब, बड़ा इंटेलिजेंट को ये जो है तोता है, आप चाहे तो ये ले लीजिए। कितने का है साहब ये जो तोता है? ये मात्र 200 रुपए का है।
1: अच्छा,
2: उसके बाद वो जो बहुत बढ़िया सा प्यारा सा तोता और बिल्कुल गजब लग रहा है वो तोता दिखाओ जरा, वो चांदी के पिंजरे में है उसको दिखाओ। हाँ साहब ये जो तोता है, ये तोता कुछ काम करता है, इधर के उधर, उधर के इधर करता है साहब, ये तोता इसकी पगार बहुत कम होती है लेकिन ये उससे ज़्यादा कमाता है, तोता बहुत काम का है, बड़े बड़े काम कर देता है सर, जो काम आप चक्कर लगवा लगवा के नहीं करवा पाएंगे ये तोते कर देते हैं। साहब ये तोता जो है 2000 रुपये का है, कम बोलता है, यस सर नो सर बोलता है।
1: अच्छा
2: अच्छा ये जो सोने के पिंजड़े में, सोने के झूले में सुनहरा सा
3: वेल गजब।

0: छम तोता दिख रहा है जो, जिस तोते के एक पंख में इतनी शार्पनेस है, इतना बढ़िया शाइन है, ये तोता थोड़ा दिखा। साहब जिस तोते की बात आप कर रहे हैं ये बहुत कॉस्टली तोता है, ये एक्चुअली सर बहुत लर्निड तोता है, बड़ी जुगाड़ के बाद इस पिंजरे में आए साहब, बड़े मुश्किल से कैद हुआ है, और साहब ये जो तोता है केवल ऑर्डर देना जाता है। नो नो दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत बात है। हाँ ठीक है तुम्हें मिलेगा भाई, ये ऐसा नहीं है, ये साहब बहुत बढ़िया तोता है, ये बिल्कुल ऑफिशियल जवान जानता है। अच्छा ये कितने का है? ये 10,000 का है। यार तुम गजबत भी हो यार, जो तोता सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे बढ़िया बोलता है, सबसे बढ़िया क्वालिटी है जिसकी, और जो लोहे के पिंजरे में रखा है उसको तुम खिला रहे वही अपना चना हो गया, मूंगफली हो गई, और जो सबसे बढ़िया वाला तोता है उसको तुम हम देख रहे कि तुम हलवा।
1: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक हंसना मना है की 5वीं कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आज भोपाल के सतगढ़ी में 173 एकड़ में विकसित होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक उद्योगपति और निवेशक शामिल हो रहे हैं। इस परियोजना में 15,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। चुनाव आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा पर उपचुनाव होना है। अधिसूचना के अनुसार नामांकन 13 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे और 30 जुलाई को मतदान होगा। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की राजपत्र अधिसूचना जारी कर सनवर पटेल को 10 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को हिंदू सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में पशुपालन व डेयरी विभाग द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण 13 जुलाई से शुरू होगा। इस अभियान में 5,72,000 पशुपालकों से भेंट करने का लक्ष्य है। शौर्य स्मारक भोपाल में कल आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और प्रदेश में मानसून सक्रिय है, अब तक औसत 6.4 इंच बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रतलाम, उज्जैन सहित अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

प्रिय श्रोताओं, आज के स्वास्थ्य दर्पण में मैं प्रेक्षा सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे सेल्फ केयर और स्वस्थ जीवन शैली की, जो कि एक दूसरे के पूरक हैं। स्वयं की देखभाल करना स्वस्थ जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं, बल्कि संतुलित दिनचर्या, पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच का सुंदर समन्वय है। रोजमर्रा की ये छोटी छोटी आदतें मिलकर स्वस्थ जीवन शैली का आधार बनती हैं। पर याद रखिए, एक स्वस्थ जीवन शैली की शुरुआत स्वयं की देखभाल से होती है। इसके लिए कुछ अच्छा समय खुद के लिए निकालना जरूरी है, तभी हम अपने जीवन को स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल बना पाएंगे। श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये मधुर गीत।

0: कार्यक्रम में समय हो गया है भेंट वार्ता का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बारिश के मौसम में बहुत से ऐसे वायरस हैं जो पनप जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इन बीमारियों की रोकथाम कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर लोकेंद्र दवे को, और इनसे बातचीत की है महक गुप्ता ने। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं, आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेंद्र दवे जी। नमस्कार सर।
2: नमस्कार मैडम, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: सर, बारिश के मौसम में अक्सर वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में कभी कभी हम कोई घातक बीमारी भी कैच कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो कैसे हम इस मौसम में खुद को बचा सकते हैं?
2: देखिए, बारिश में हवा में वातावरण में नमी बहुत रहती है
1: जी।
2: और थोड़ा टेम्परेचर भी कम होता है, तो नमी और टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ों का जो मिक्सचर है, ये वायरस के पनपने के लिए बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट बनाता है
1: जी।
2: और इसलिए बहुतायत इस वातावरण के कारण से सांस संबंधी बीमारियां समझो, या हम पेट संबंधी रोग समझो, या आँखों से संबंधी, गले के संबंधी, ये सब वायरस की जो बीमारियां हैं, और इसके अलावा कई सारी सीरियस इलनेसेस हैं वायरस रिलेटेड, वो सभी इस समय बहुतायत से हमारे ओपीडी में हम लोग देखते हैं। तो वायरस की जो बीमारियां हैं उसमें अगर हम आँखों की बात करें तो कंजक्टिवाइटिस एक बहुत कॉमन डिजीज़ है, देन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, नाक संबंधी, गले संबंधी तकलीफें होती लोगों को, और सांस संबंधी तकलीफों के अंदर वायरल ब्रोंकाइटिस और निमोनिया। निमोनिया सबसे जो घातक होता है, वो जिसकी मॉर्टेलिटी रेट भी काफ़ी होती है, अगर हम उस पर समय रहते ध्यान नहीं दें तो कॉम्प्लिकेट होता है। और पेट संबंधी उल्टी दस्त की जो बीमारियां हैं, वो कॉमनली इस मौसम में हम लोगों को देखने को मिलती है
1: जी। सर, खासकर जब रेस्पिरेटरी बीमारियों के बारे में हम बात करते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, घर में अगर कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, ये एक संक्रमित बीमारी होती है, वायरल डिजीजेस, हम उनका ध्यान रखते हुए खुद को कैसे बचा सकते हैं?
2: देखिए, वायरस अगर सांस संबंधी बीमारियों की बात करें तो छींकने पर, खांसने पर, बोलने पर करीब करीब एक मीटर के डिस्टेंस में एकदम से फैलते हैं, ये वायरस की प्रकृति होती है। तो क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए बीमार व्यक्ति से, इसलिए हम लोग बोलते हैं, जैसे हमने कोविड प्रोटोकॉल में भी यही बातें की थी, क्योंकि कोविड भी

0: वायरस था,
1: जी
0: इसी तरह से जो मौसमी वायरस होते हैं उनसे बचाव के लिए भी हम बोलते हैं, यदि घर में किसी को भी सर्दी खांसी या बुखार आ रहा है तो उससे एक नियत दूरी बना के रखें और मरीज के मुंह पे कपड़ा या मास्क जो है रहना चाहिए, उसके कांटेक्ट में उसको सेवा करने वाले जो लोग हैं उनके भी जो है मुंह पे सांस में अवरोध मास्क के रूप में एक रहे तो सबसे अच्छी बात है। दूसरा, जो वायरस के जनित मरीजों के रोगी हैं उनकी सेवा करने वाले यदि संभव हो तो या तो ग्लव्स पहने या हाथों को बार बार धोएं साबुन पानी से, क्योंकि हाथ एक और माध्यम है जिसके माध्यम से वायरस एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। तो ये दूसरी तरीका है जिसमें हम ये कर सकते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है खान पान से रिलेटेड, कि इस समय हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे तो वायरस की बीमारी जो है माइल्ड होती है, नहीं तो वायरस की बीमारी अनकंट्रोल्ड हो जाती है। जो कोमोर्बिडिटी वाले लोग हैं उनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, प्रेग्नेंट वुमेन है, ये सब लोग जो हैं उनको विशेषतर ये कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है वायरस की बीमारी से, इसलिए इन लोगों को विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है।
1: जी, सबसे ज्यादा जो हमने कॉम्प्लिकेशन देखा है जैसे कि आपने बोला निमोनिया, निमोनिया एक ऐसा शब्द है जिससे अक्सर लोग डरते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो इस बीमारी के बारे में हमें कुछ बताइए।
0: देखिए, निमोनिया किसी भी मरीज को सांस नली में संक्रमण होता है और वो फेफड़े की तरफ बढ़ता है, फेफड़े में सूजन आ जाती है, तो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट का काम है फेफड़े का वो काम प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो निमोनिया के जो सामान्य लक्षण है सर्दी खांसी बुखार चेस्ट में पेन और उसके बाद सांस में लेने में दिक्कत और पसली चलना जिसको साधारण भाषा में लोग बोलते हैं, तो ये लक्षण यदि दिखाई दें हाई ग्रेड फीवर के साथ तो निमोनिया की संभावना पूरी है और ऐसे मरीज को तुरंत अस्पताल में इलाज कराएं, क्योंकि घर पे निमोनिया का इलाज करने में कई बार कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं।
1: जी सर, इसके अलावा इस मौसम में एलर्जीज भी हमने देखा है कई गुना बढ़ जाती है, लगातार छींकें आना, नाक बहना, जरा सी धूल से या पोलन से, तो उनसे हम किस तरह से बच सकते हैं?
0: देखिए, इस समय हरियाली ज़्यादा होती है, जंगली घास फूस उग जाती है, वो भी एलर्जी का एक बड़ा कारण होता है। हरियाली में पोलन्स, जो आपने जैसा बोला पोलन्स भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जो एलर्जी का कारण है। मुख्यतः शहरों में और गाँव में इस मौसम में एलर्जी मिलती फंगस की, क्योंकि दीवारों में सीपेज होता है और फिर जब दीवारें सूखती है तो दीवारों पर काले हरे धब्बे आ जाते हैं, वो धब्बे एक्चुअल में फंगस है और फंगस ड्राई होने के साथ हवा में उड़ती है तो लोगों को एलर्जी बहुत करती है। दूसरा जो प्रॉब्लम है, इस समय नमी ज़्यादा होती है, सूरज की रोशनी कम निकलती है, तो जो गद्दे होते हैं, सोफ़ा होता है, मोटे गद्दे, तकिया, कालीन, ये सब जो हमारे घर के अंदर चीज़ें होती है इनमें डस्ट माइट पनपती है। डस्ट माइट, डस्ट के साथ होने वाले बहुत माइक्रोस्कोपिक बारीक कीड़े होते हैं जो नज़र नहीं आते आँखों से, लेकिन उनकी एलर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो डस्ट माइट की एलर्जी और पोलन की, फंगस की एलर्जी, इन तीनों की संख्या बढ़ने की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ती है। तो ये कॉमन कॉजेज हैं जिनसे हमें दूर रहना है, बचाव करने की ज़रूरत है।
1: जी, इसके अलावा सर, शहरों में प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ रही है, क्या उसका आपने आपकी ओपीडी में कोई प्रभाव देखा है?
0: प्रदूषण देखिए राउंड द क्लॉक समस्या है, बारिश के टाइम में इस मौसम में प्रदूषण का एक समस्या बड़ी है कि जो पानी गिरता है तो उसके साथ में हवा जो होती है ठंडक, उसमें घनत्व तो ज़्यादा हो जाता है हवा का, तो जो पार्टिकुलेट मटेरियल होता है हवा के अंदर जो कण होते हैं वो बहुत नीचे तैरते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव निश्चित रूप से हेल्थ पर पड़ता है और कई सारी हेल्थ संबंधी समस्याएं प्रदूषण के साथ भी इस मौसम में होती हैं। तो कॉमनली समस्याएं वही हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, वायरस की समस्याएं, एलर्जी की समस्याएं, प्रदूषण की समस्याएं, सभी में आँखों में खुजली हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, नाक और गले की समस्याएं हो सकती है, फेफड़े की समस्याएं हो सकती है। प्रदूषण की अन्य समस्याओं में हम लोग न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स वगैरह ये सब चीज़ें भी देखते हैं, लेकिन वो लगातार लंबे समय रहने पर होती हैं। इस तरह से शॉर्ट टर्म में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है जो इस मौसम के लिए पर्टिकुलरली ध्यान रखने की बात है।
1: जी, फेफड़ों की बीमारियों से संबंधित कोई और बीमारी जिस पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे?
0: देखिए, जो आपने जैसे एलर्जी का बोला, तो एलर्जी में लगभग 1/3 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें अस्थमा डेवलप होता है। तो इस मौसम में अस्थमा के लिए ट्रिगर फैक्टर होता है नमी, हवा की नमी, और बहुत लोग बादलों में आपने देखा होगा सांस के मरीजों को तकलीफ होती है। तो हम लोग हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि इस मौसम में अपने दवाओं पर पूरा ध्यान दें और इनहेलर्स अगर प्रिस्क्राइब किए तो इनहेलर्स को प्रॉपर लेते रहें ताकि सांस नलियाँ खुले अच्छे से और कफ बलगम यदि बन रहा है तो बाहर निकले, नहीं तो उसके दुष्परिणाम होते हैं, अस्थमा का अटैक आता है या सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं, मरीजों को तकलीफ होती है, तो इन सब समस्याओं की वजह से फिर मरीज परेशान होते हैं। तो अस्थमा की एक बीमारी है और बाकी मौसमी समस्याओं में एक हेपेटाइटिस, इस समय बारिश के टाइम में पीलिया जो होता है वो वायरस जो है पानी से फैलता है, तो पीने के पानी में गंदगी रहे, तो वायरल बीमारियों की बात करें तो हेपेटाइटिस भी हो सकता है, उल्टी दस्त भी हो सकता है, इसके साथ में

0: दूसरी जो बीमारियां बैक्टीरियल बीमारियां जैसे हैजा है या टाइफाइड, टाइफाइड का भी इस समय बहुत प्रभाव रहता है। तो ये मौसम संबंधी सारी समस्याएं इस समय होती हैं, और मच्छर जन्य समस्याएं जैसे डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया ये भी बहुत होती हैं। तो हमारे लिए एक तरह से देखा जाए तो इस समय मरीज की संख्या बढ़ जाती है और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। फीवर के साथ यदि व्यक्ति आया है तो क्या बीमारी हो सकती है उसका पता लगाने में थोड़ी मुश्किलें आती है, पर जाँच करके सब चीज़ें कर सकते हैं। तो इसलिए टाइमली अपना इलाज कराएं, जांच कराएं और सही डॉक्टर के मार्गदर्शन में अपना इलाज कराएंगे तो हमें निश्चित रूप से बीमार से स्वास्थ्य की तरफ ले जाएगा वो, और हमको ये चीज़ में प्रायोरिटी देनी चाहिए बारिश के टाइम में, क्योंकि मैंने जैसा बताया बीमारियों के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाते हैं यदि टाइम रहते इलाज ना किया जाए तो।
1: जी सर, जैसा आपने बोला टाइम रहते इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोगों में ये मानसिकता देखी गई है कि सर्दी है, ज़ुकाम है, श्वास से संबंधित जब भी कोई बीमारियां होती हैं लोग अक्सर डॉक्टर के पास जाने में काफ़ी देरी कर देते हैं
0: जी।
1: कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे हमें पता चल सके कि नहीं, अब इस व्यक्ति का इलाज घर पे संभव नहीं है, हमें विशेषज्ञ की मदद लगेगी, अस्पताल जाना पड़ेगा।
0: देखिए, मामूली सर्दी जुकाम एक या दो दिन से हो रहा है तो फिर हम होम रेमेडीज से हम काम चला सकते हैं, लेकिन यदि सर्दी जुकाम के साथ बुखार आ रहा है या गले में दर्द पकड़ रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे मरीज को बिल्कुल भी घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसे मरीज को जरूर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। घरेलू इलाज बहुत मामूली सिम्टम्स के लिए हो सकते हैं, जिसमें हम सिंपल पैरासीटामोल लेके और प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स देके पेशेंट को एडवाइस करते हैं रेस्ट करने के लिए, लेकिन माइल्ड सिम्टम्स बहुत कम लोग जो है इसको फॉलो करते हैं, रेस्ट नहीं करते, तो उसके साथ वो फिर कॉम्प्लिकेशन भी किसी किसी को बढ़ जाते हैं। मॉडरेट सिम्टम जहाँ फीवर आने लगता है, गले में तकलीफ होने लगती है, सांस में तकलीफ होने लगती है, तुरंत जाके मरीज को एंटीवायरल और सपोर्टिव मेडिसिन लिखवानी चाहिए, जरूरत हो तो भर्ती भी करना चाहिए। सीरियस मरीज जो है वो तो ऑलरेडी हमारे पास इसी तरह के आते हैं जिनको भर्ती करना बहुत आवश्यक हो जाता है, पर वो स्टेज ना आए तो अच्छा है, क्योंकि सीरियस मरीज निमोनिया के जो होते हैं उनमें 30-40% मॉर्टेलिटी रहती है, मतलब डेथ की संभावना रहती है। तो सीरियसनेस को नहीं पनपने दें, ये मेरा सभी से आग्रह रहता है और इसका सभी को ध्यान रखना चाहिए।
1: थैंक यू सर। आपकी तरफ से कोई और संदेश जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे?
0: देखिए, बारिश का मौसम एक वरदान मौसम है मानव सभ्यता के लिए, प्राणियों के लिए, सभी के लिए बारिश बहुत आवश्यक है हमारे लिए
1: जी।
0: लेकिन इस मौसम का लुत्फ उठाएं, साथ में अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी करें, अपना खान पान संतुलित रखें, बाहरी गरिष्ठ चीज़ें ज़्यादा नहीं खाएं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाएं जिसके, और यदि फल फ्रूट वगैरह लाते हैं तो अच्छे से धुलाई करके खाएं, और जो बाहर चाट पकौड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती है उसमें अपना ध्यान रखना है कि हमें नहीं खाना चाहिए ऐसी चीज़ें, क्योंकि इस मौसम में इन चीज़ों से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। दूसरा, आँखों पर चश्मा लगाना, मास्क बांधना रोड पर, क्योंकि जो डस्ट उड़ती है कीचड़ वाली वो भी बीमारी का एक कारण बनती है प्रदूषण के साथ में, और वायरस के जो अन्य बीमारियां जैसे मैंने बताया कि बीमार व्यक्ति के संपर्क में नहीं जाना ज़्यादा, यदि संपर्क में जाना पड़े तो मास्क लगाना ज़रूरी है, और हाथों को बार बार साबुन पानी से धोते रहना ताकि हाथ हमारे बीमारी का सोर्स ना बन पाए। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसे हमेशा ध्यान रखना है हमको। बच्चों को, बूढ़ों को ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनको तेज़ी से बीमारी होती है कोई भी, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। डायबिटिक्स और हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट अपनी बीमारी कंट्रोल रखें और साथ में इन सब चीज़ों का भी पूरा पूरा ध्यान रखें, क्योंकि उनमें भी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है हमेशा।
1: धन्यवाद सर, हमें आपका कीमती समय देने के लिए।
0: धन्यवाद मैडम।
2: अभी आपने सुनी मौसमी बीमारियों से बचाव विषय पर डॉक्टर लोकेंद्र दवे से महक गुप्ता की बातचीत। आइए सुनते हैं अब ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अब समय हो गया है हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअस शुगर मॉनिटरिंग की। आज स्वास्थ्य के लिए नई नई तकनीकें आ गई हैं, इन्हीं में से एक है कंटिन्यूअस शुगर मॉनिटरिंग। ये एक छोटी सेंसर आधारित तकनीक है जो त्वचा के नीचे लगाई जाती है और रात दिन ब्लड शुगर का स्तर मापती रहती है। इससे कई बार उंगली में सुई चुभाने की ज़रूरत कम होती है और शुगर के स्तर में लगातार होने वाले उतार चढ़ावों का पता लग जाता है। यह जानकारी मोबाइल या रीडर पर आसानी से देखी जा सकती है, जिससे मरीज व डॉक्टर दोनों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसका सबसे बड़ा लाभ है समय पर सही कदम उठाना, दवा, भोजन और व्यायाम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करना तथा डायबिटीज़ को सुरक्षित तरीके से संभालना। तो इस तरह की ये तकनीक डायबिटीज़ के मरीजों के इलाज में बेहद कारगर है। श्रोताओं, अब सुनिए ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, बारिश का मौसम पूरी तरह शुरू हो चुका है। ऐसे में हम आपसे कुछ सेहत सूत्र साझा कर रहे हैं। इस मौसम में संक्रमण, सर्दी जुकाम, पेट की समस्याएं, मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाहर का खुला और बासी खाना खाने से बचें। हमेशा ताज़ा और गर्म भोजन करें। पीने के लिए साफ, फिल्टर या उबले पानी का प्रयोग करें ताकि पेट की बीमारियों से बचा जा सके। बारिश में भीगने पर तुरंत गीले कपड़े बदलें और शरीर को सुखाएं, क्योंकि गीले रहने से त्वचा संबंधित रोग और सर्दी जुकाम होने का खतरा बना रहता है। घर के आसपास गंदा पानी जमा होने से रोकें, जिससे बीमारियों से बचा जा सके। इस तरह आप मौसम का आनंद ले सकते हैं। श्रोताओं, उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। प्रतिक्रिया हेतु पत्र अवश्य लिखें। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। इसी के साथ मैं प्रेक्षा सक्सेना आपसे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं छगन लाल वर्मा और साथी। इनके स्वरों में आज हम आपको सुनवाएंगे कुछ बुंदेली लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे छगनलाल वर्मा और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए असलम साबरी को। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे असलम साबरी और साथियों को, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर बाद।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। फिल्म का नाम है अभिनेत्री।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। फिल्म का नाम है बहारों के सपने। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आर डी बर्मन।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। राष्ट्रवादी चिंतक और भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पार्क औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति देगा। लगभग 173 एकड़ में विकसित होने वाला यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का नया आधार माना जा रहा है, जिसमें आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, आईटी एवं एआई आधारित सुविधाएं और लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। यह परियोजना वर्क लिव ग्रो मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें उच्च मूल्य विनिर्माण, गारमेंट, टॉयज, आईटी और एआई से जुड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे।
1: सतगढ़ी में बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क, रोजगार के लिए क्या रहना, खाना, आराम करना, रोजगार पाना, समग्र रूप से भोपाल बदलते समय में एक अलग प्रकार की आर्थिक समृद्धशाली राजधानी बदलने के लिए जा रहा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर अगर कहीं बनेगा तो भोपाल में बनेगा, और रोजगार के लिए आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सबसे कम बेरोजगार की दर रही है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर में संभाग स्तरीय उन्नत कृषक संवाद सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ये आयोजन आज शाम राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित होगा। डॉक्टर यादव किसानों से संवाद कर उनके प्राकृतिक खेती के संबंधित अनुभव भी सुनेंगे। मुख्यमंत्री हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन का भूमि पूजन भी इसी कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। इस हाईटेक नर्सरी और फ्लोरिकल्चर गार्डन के प्रथम चरण के कार्य के लिए सरकार द्वारा 13 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता स्थित प्रतिष्ठित प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच 1000 वर्षों से चले आ रहे गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर थे, और ये भारत के बाहर भी भारतीय वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी 2026 परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा 7 जुलाई तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खातों के विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एनटीए ने बताया कि अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद इस वर्ष 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द होने के बाद एनटीए द्वारा रिफंड प्रक्रिया चलाई जा रही है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। आज प्रदेश के 23 जिलों में अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं रतलाम, उज्जैन, धार, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, गुना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और पन्ना में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुरी सहित प्रदेश के बाकी जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में अब तक औसत 6.4 इंच बारिश हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में कंठाल नदी पर सुसनेर बामनिया खेड़ी के बीच बनने वाले 50 मीटर लंबे पुल का भूमि पूजन कल सांसद रोडमल नागर ने किया। नर्मदापुरम में वन महोत्सव 2026 के तहत हर्बल पार्क से चौरे घाट तक वृहद पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल में कल से 21 दिवसीय संस्कृत रूपक निर्देशन राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत हो रही है, जिसका उद्घाटन कल सुबह 10:30 बजे भवभूति सभागृह में किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीवनोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति महा

0: सागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई हैं।
1: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे

0: संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
1: जगन्नाथ तकानेन।
2: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: जगन्नाथ
0: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
3: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
4: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
0: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोडोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलेजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदे, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। जी हाँ श्रोताओं, रिमझिम बारिश का मौसम आ चुका है, धरती की प्यास बुझ गई है, हर मन का इंतजार खत्म हुआ है और मन खुशियों के गीत गुनगुना रहा है। जिंदगी की तपिश मिट गई है, तो आइए ऐसे सुहाने से मौसम में आपके मन की बात कर लें। जी हाँ, आपके मन की बात यानी आपके मन के गीत, जिन्हें आपने लिख भेजा है खतों में। और ये पहला खत मेरे हाथ में है, धमतरी से आया हुआ, छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता हैं रामचंद्र माखीजा काफिर, सविता, बेबी स्वाति, माही, छुटकी, शरद कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या। ये चिट्ठी आई है चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, पार्वती मोटवानी, राजेश, रेशम मोटवानी, मुकेश भावना, सोमेश्वर यशराज। और ये खत आया हुआ है पेंड्रा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं देवदास फिल्म का गीत। आवाजें उदित नारायण और श्रेया घोषाल की हैं, संगीत इस्माइल दरबार का और गीतकार नुसरत बद्र। बेगाना वार ऐसे वो गुजरे करीब से, जैसे कि उनको मुझसे कोई वास्ता ही नहीं।

आपकी फरमाइश का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारणी, सूरज ज्योति, रियान शोरगुड़िया, भाटापारा दत्तरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा, कमर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली, सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका अवंतिका, शिवालिका, पारस मणिवाघ, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल। और ये चिट्ठी आई हुई है मुंगेली छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन, वंशिका और उनके परिवार के सभी सदस्य। और मोटका माफी जिला खंडवा से इसी गीत को पसंद करते हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं तमाशा फिल्म का गीत। आवाजें अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की हैं। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार एआर रहमान। आज कैसी हवा चली कि फिराक आंखें बेख्तियार भर आईं,

कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। भिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि, जया, जाह्नवी, तृप्तेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा। राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। निभोरा से अशोक देशमुख, शरद देशमुख और बबन जोशी। और बुराला खुर्द से आदिनाथ वाघ और अमोल वाघ। और लखनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी। बोल इरशाद कामिल के हैं और धुन प्रीतम की। एक अदना सा करिश्मा है ये उसके इश्क का, मर गया हूँ और मरने का वो मन।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

और अब हम आपको सुनवाते हैं जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत, विशाल शेखर का संगीत। फिल्म का नाम है ओम शांति ओम। आवाज़ें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की हैं। इस गीत को सुनना चाहा है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने। इसी गीत की फरमाइश की है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा और मोनिका नूपुर।

ऋषिका रॉबिन ने। और अगली चिट्ठी है प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शुभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। सूरत गुजरी निगाहों से कितने मेरी, कौन दिल में बसा है तुम्हारी तरह।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता स्थित प्रतिष्ठित ब्रह्मानंद मंदिर का दौरा करेंगे। ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच 1000 वर्षों से चले आ रहे गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की एक विशिष्ट पहचान है जो व्यक्तियों को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये पार्क औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति देगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा UG 2026 परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाते विवरण अपडेट करने की समय सीमा को 7 जुलाई यानी कल तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल में कल से 21 दिवसीय संस्कृत रूपक निर्देशन राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हो रही है, जिसका उद्घाटन सुबह 10:30 बजे भवभूति सभागृह में होगा। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला कल खेला जाएगा, जो मैच भारतीय समय के अनुसार 10:00 बजे टेंट ब्रिज में शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30 और रात 8:15। आज शाम 6 होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम आजकल का प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। कार्यक्रम आजकल का प्रसारण होगा शाम 6:40 पर और 6:45 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार दर्शन। रात 8 होगा कार्यक्रम सुर्खियों में पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आप सुन सकते हैं रात 10 और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे लोक गीतों का फरमाइशी क्रम लोक रंग। आपको हम एक बार फिर याद दिला दें, आज शाम 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आजकल और 6:45 पर होगा प्रादेशिक समाचार दर्शन। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, वेब्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हो चुके हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।
1: आप सब अपना बहुत अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, तो आप अपने परिवार का और अपना सभी का स्वास्थ्य का खूब अच्छा ध्यान रखिए।
2: बिल्कुल। और चलो दीपा, हम बता देते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रादेशिक व्यंजन। सबसे पहले तो खान पान की बात, क्योंकि दीपा आ गई, मंजरी आ गई है, तो कुछ ना कुछ
1: कैसे
2: तो बने
1: नहीं हो कि बातें भोजन पान की होगी
2: होगी। बिल्कुल, क्योंकि पंजाबी छोले आजकल हम लोग बताने वाले हैं और भटूरे साथ में, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका। तो मेरे ख्याल से सबके लग रहा है, सबको स्वाद आ रहा होगा छोले भटूरों का, है ना?
1: शायद आ रहा होगा। और ये देखिए ना, इस मौसम में ऐसी कुछ चीज़ें, चटपटी और कुछ तली भुनी चीज़ों का को हम उसका आनंद ले सकते हैं।
2: बिल्कुल,
1: तो बिल्कुल लेना भी चाहिए
2: और

0: अब हम बात उसके लिए बात करेंगे। अगला विषय मेरा है वन महोत्सव, तो जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चल रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आज है कथा सुधा में,
1: जी,
0: कहानी का दिन है। तो आज दीपा कौन सी कहानी हम लेकर आए हैं?
1: आज हम मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी दो बहनों, दो बहनें, इस कहानी का हम सुनेंगे भाग एक।
0: जी
1: और फिर देखो, महीने की ये शुरुआत है, शुरुआत के महीने में तो ऐसा होता है ना, जब सैलरी आती है या व्यापार में अगर आप हैं तो जो भी एक नियत आप पैसे जो घर पे लेके आते हैं, तो शुरुआत में तो जिसको सैलरी आपको देनी है दे देते हैं, घर में जो आपके काम करते हैं, जो मदद करते हैं उनको दे देते हैं, स्कूल की फीस वगैरह चली जाती है। उसके बाद 15 तारीख से ही फिर ऐसा लगता है खिंचातानी से कुछ शुरू
0: धड़कनें बढ़
1: होने लगी
0: जाती हैं कि भाई अब
1: है।
0: बजट बनाएं, फालतू
1: हाँ,
0: खर्चा नहीं
1: क्या हो
0: करें।
1: रहा है, क्या नहीं हो
0: हाँ
1: रहा है।
0: बिल्कुल, कोई कुछ कहता तो नहीं भाई अभी रुक जाओ, अभी
1: हाँ,
0: नहीं।
1: सही बात है।
0: बचत करने के बारे में हम सभी सोचते हैं और महिलाएं खासकर सोचती हैं, हालांकि थोड़ा वो खर्चा भी थोड़ा करती है मनमर्जी की, लेकिन बचत के प्रति वो जागरूक भी रहती है। तो इसके
1: बिल्कुल
0: बारे में चर्चा
1: जी।
0: करेंगे। लेकिन देखो, मौसम को हम लोग थोड़ा सब जगह भेज देते हैं गीतों के द्वारा, तो सभी सखियों और सखाओं को सुनाते हैं ये गीत।

0: साथियों, अभी तो सावन आया नहीं है, लेकिन हम उसे पुकार रहे हैं कि आए। लेकिन फिलहाल आषाढ़ के महीने में ये जो बरसात है हर जगह पहुंचे, हमारी तो यही शुभकामना है।
1: क्योंकि हरियाली छा जाती है, तो हरियाली छाते बस सावन याद आने लग जाता है, और सावन का मतलब होता है कि बस अब हाथों में मेहंदी लगाएंगे, श्रृंगार करेंगे, हरी हरी चूड़ियां पहनेंगे,
0: सब
1: है ना?
0: होगा, सब होगा मंजरी। लेकिन पहले चलो सुन लेते हैं कहानी,
1: कथा सुधा।
2: सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: हिंदी कथा साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी है दो बहनें। शीर्षक के अनुरूप कहानी दो बहनों के पारस्परिक संबंधों पर केंद्रित है। प्रेमचंद ने कहानी के मुख्य पात्र, दोनों बहनों के बाह्य आकार और रूप रंग का वर्णन करने के साथ ही उनके मन का भी सूक्ष्म विवेचन और विश्लेषण किया है। कहानी में प्रवाह है, धन की संपन्नता और विपन्नता के अनुरूप पात्रों का चरित्र चित्रण और पात्रों के चरित्र का विकास बहुत स्वाभाविक रूप में किया गया है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में आदर्श और यथार्थ का अद्भुत समन्वय है। दोनों बहनें और उनके पति जिस मानसिक अवस्था और शैक्षिक स्तर के हैं, उसी के अनुसार शब्दों के प्रयोग, नाटकीयता के गुण और संवाद योजना के कारण कहानी जीवंत हो उठती है। वे यथार्थ का चित्रण करते हुए सदा आदर्श पर दृष्टि रखते हैं, यही इस कहानी में भी परिलक्षित होता है। मुंशी प्रेमचंद की स्पष्ट धारणा है कि साहित्यकार को मानवीय स्वभाव की उज्ज्वलताओं को दिखाने वाला होना चाहिए, यही इस कहानी का मर्म भी है। भाव और पात्र के अनुकूल भाषा का सफल प्रयोग इस कहानी की विशेषता है। अत्यंत मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली कहानी है दो बहनें। इसमें प्रेरणा देने की शक्ति के साथ साथ पाठक को चिंतन में लीन करने की भी अद्भुत क्षमता है। तो आइए सुनते हैं कथा सुधा में मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें, आज इस कहानी की पहली कड़ी।
4: दो बहनें दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई, तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन रामदुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है। बेशकीमत साड़ी और बेलदार उन्नाबी मखमल के जंपर ने उसके हुस्न को और भी चमका दिया है। वही रामदुलारी जो लड़कपन में सर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी, आखिरी बार रूप कुमारी ने उसे उसकी शादी में देखा था। दो साल कबल तक भी उसकी शक्ल और सूरत में कुछ ज्यादा तगय्युर ना हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर उतनी ही दुबली, उतनी ही जर्दरू और उतनी ही बदतमीज, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो और हुस्न उसने कहां छुपा रखा था।
5: नहीं नहीं, नजरों को धोखा हो रहा है, यह हुस्न नहीं, महज दीदा जेबी है। रेशम मखमल और सोने की बदौलत नक्शा थोड़े ही बदल जाएगा, फिर भी वो आंखों में समाई जाती है। 50 औरतें जमा हैं, मगर ये कशिश और किसी में नहीं।
4: कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते वक्त उसने अपनी सूरत देखी थी, उसे चमकाने के लिए जितना साइकिल कर सकती थी वो किया था, लेकिन अब वो सूरत जैसे याददाश्त से मिट गई है। उसकी महज एक धुंधली सी परछाई जहन में है। उसे फिर से देखने के लिए वो बेकरार हो रही है। यूं तो उसके साथ मेकअप के लवाजमात के साथ आईना भी है, लेकिन उस मजमे में वो आईना देखने या बनाव सिंगार करने की आदि नहीं है। ये औरतें दिल में खुदा जाने क्या समझे, यहाँ कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में तो ज़रूर होगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई और कदे आदम शीशा में अपनी सूरत देखी। उसके खद्दो खाल बेएब हैं, मगर वो ताजगी में, वो शगुफ्तगी, वो नज़र फरेबी नहीं है। रामदुलारी आज खुली है और उससे खुले जमाना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसे तस्कीन नहीं हुई। वो रामदुलारी से हेटी बनकर नहीं रह सकती।
5: ये मर्द भी कितने अहमक होते हैं, किसी में असली हुस्न की परख नहीं। उन्हें तो जवानी, शोखी और नफासत चाहिए बस। आंखें रख कर भी अंधे बनते हैं। मेरे कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहाँ उड़ गया है। चुड़ैल सी नजर आए, अब इन अहमकों को कौन समझाए। से राम दुलारी के घर वाले तो इतने खुशहाल न थे। वो शादी में जो जोड़े और जेवर आए थे वो भी बहुत दिल शिकन थे। उसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और शौहर कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी 2-4 दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं। अब अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने का मर्ज कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है, लेकिन इस तरह बन ठन कर निकलेंगी गोया कहीं की राजकुमारी है। बिसातियों के, दर्जियों के और बजाज के तकाजे सहेंगी, शौहर की घुड़कियां खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर नुमाइश के जुनून को नहीं रोक सकें। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहां तो बेहयाई पर कमर बांध ली। कोई कितना ही हंसे, बेहया की बला दूर। इसको तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर उसकी खूब तारीफें की जाए। राम दुलारी ने जरूर जरूर किसी से जेवर और कपड़े मांग लिए हैं। मैं जानती हूं ये बेशर्म जो है।
4: उसके चेहरे पर गुरूर की सुर्खी झलक पड़ी। ना सही उसके पास जेवर और कपड़े, किसी के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। एक एक लाख के तो उसके 2 लड़के हैं, भगवान उन्हें जिंदा सलामत रखे। वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से ही तो जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी की बददुआ तो नहीं लेते। इस तरह अपना दिल मजबूत करके वो फिर बरामदे में आई तो रामदुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
2: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं।
4: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ोरे दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है। अकड़ कर बोली,
5: हाँ तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल ये भी गनीमत है, मैं तो अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। और तेरा शौहर अब बीए में होगा? हा?
2: नहीं, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया है बहन। पढ़कर औकात खराब करना था और क्या, एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपया माहवार कमाते हैं, कमीशन ऊपर से। ₹500 रोज सफर खर्च के भी मिलते हैं। अब ये समझ लो 500 का औसत पड़ जाता है। ₹150 माहवार तो उनका जाती खर्च है। बहन ऊंचे होदे पर है तो अच्छी हैसियत भी बनाए रखनी लाजिमी है ना।
5: वो तो है भाई।
2: ₹350 बेदाग घर दे देते हैं और उसमें ₹100 मुझे मिल जाते हैं। 250 में घर का खर्च खुशफेली से चल जाता है। अब एमए पास करके भला क्या करते।
4: रूप कुमारी उसे शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा वक्त नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी सदाकत है कि चेहरे पर शिकस्त की बदमजगी साफ झलक रही है। मगर उसे अपने होशो हवास को कायम रखना है तो इस असर को दिल से मिटा देना पड़ेगा। उसे जिरहों से अपने दिल को यकीन करा देना पड़ेगा कि इसमें एक चौथाई से ज्यादा हकीकत नहीं है। वहां तक तो वो बर्दाश्त करेगी, इससे ज्यादा कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है। अगर ये रुदात सच निकली तो वो कैसे राम दुलारी को मुंह दिखा सकेगी। उसे अंदेशा है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तमस्खुर के अंदाज से पूछा,
5: जब एजेंटी में इतनी तनख्वाह और भत्ते मिलते हैं तो ये तमाम कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते, भला बताओ जरा। हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं हा?
4: राम दुलारी बहन की खिफत का मजा उठाते हुए बोली,
2: बहन तुम यहाँ गलती कर रही हो। एमए तो सभी पास हो सकते हैं।
5: अच्छा,
2: मगर एजेंटी करना किसको आता है भला। ये तो बहुत हुनर का काम है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे मगर जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट हो जाए। रुपया पैदा करना दूसरी चीज है, इल्मी फजीलत हासिल करना दूसरी चीज है, अपने माल की खूबी का यकीन पैदा कर देना या जहन नशीन करा देना कि इससे तो बेहतर और देरपा चीज बाजार में मिल ही नहीं सकती, आसान काम नहीं है।
5: वो तो है भाई।
2: एक से एक ग्राहकों से उनका साबिका पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों की ताली कलब भी करनी पड़ती है। औरों की तो उन राजाओं और नवाबों के सामने जाने की हिम्मत भी न पड़े, और किसी तरह पहुंच जाए तो जवान न निकले। शुरू शुरू में उन्हें भी झिझक हुई थी बहन, मगर अब तो इस दरिया के मगर हैं मगर। अगले साल तरक्की भी होने वाली है।
5: सही कहती हो।
4: रूप कुमारी की रगों में जैसे खून की हरकत बंद हुई जा रही है।
5: जालिम आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता, बेरहम जमीन क्यों नहीं फट जाती। ये कहां का इंसाफ है कि मैं जो हसीन हूं, तमीजदार हूं, किफायत शियार हूं, अपने शौहर पर जान देती हूं, बच्चों को जान से अजीज समझती हूं, इस खस्ता हाली में बसर हो रही है मेरे, और ये बदतमीज तनपरवर चंचल छोकरी रानी बन गई है। लेकिन कुछ तो उम्मीद है बाकी, शायद मेरी तस्कीन कल्ब का कोई तो रास्ता निकल आए।
4: उसी तमस्खुर के अंदाज से बोली,
5: तब तो शायद 1000 मिलने लगे होंगे। हाँ
2: 1000 तो नहीं, मगर 600 में शुभा नहीं।
5: हाँ, ऐसे ही कोई आँख का अंधा मालिक बन गया होगा।
2: बहन व्यापारी आँख के अंधे नहीं होते। हाँ, जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो ना, तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कोई क्या बेवकूफ बनाएगा भला।
4: तमस्खुर से काम न चलते देख रूप कुमारी ने तहकीर शुरू की।
5: हाँ, वैसे मैं उसको बहुत मुअज्जज पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तोमार बांधो, क्या ये ठीक विद्या है?
2: अरे इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी गलत करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकीलों को हम अपना लीडर कहते हैं, उन्हें अपनी कौमी सभाओं का सदर बनाते हैं, उनकी गाड़ियां खींचते हैं, उन पर फूल बरसाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है, पैसा। पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता। जिसके पास पैसा हो उसकी पूजा होती है। जो बदनसीब हैं, नाकाबिल हैं, पस्त हिम्मत हैं, वो जमीर और अखलाक की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछ लेते हैं। वरना जमीर और अखलाक को भला कौन पूछता है।
4: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है, इससे मुजीर नहीं। तमस्खुर या तहकीर से वो अपनी तंगदिली के इजहार के सिवा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वाकई लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो वो अपनी किस्मत को ठोक कर बैठ रहेगी। समझ लें कि दुनिया में कहीं इंसाफ नहीं है, कहीं ईमानदारी की कदर नहीं है।
3: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। आज आपने सुनी पहली कड़ी। पात्र परिचय इस प्रकार है: रूप कुमारी, रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी, ममता सिंह, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की पहली कड़ी सुनी। आगे यह कहानी क्या मोड़ लेती है जानने के लिए अगले हफ्ते जरूर सुनिएगा कथा सुधा।
0: इस कहानी के भाव में तो हम भी बह गए थे साथियों, आपके साथ
1: बिल्कुल।
0: चलिए सुनते हैं गीत।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: तो दीपा, अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं और बात करते हैं बचत के ऊपर।
1: बहुत
0: तो
1: जरूरी है
0: दीपा,
1: भाई।
0: बचत करने से पहले हम एक उसी का ही कमेंट है वो उठा लेते हैं। हमारे साथ ही लिखते हैं कि बचत हम दोनों ने अपनी बेटियों और बेटों को अजमेर शहर के बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाया, बहुत ही महंगी शिक्षा थी, तो हमें और बच्चों को भी शुरुआत से ही हाथ टाइट करके बचत करना अनिवार्य हो गया था। कभी बेटों को जब मैं स्वयं ही स्कूल की छुट्टी के बाद लाता और ये कहता कि कचौरी खा लो, तो बेटे कहते पापा जी खर्चा नहीं करना है, वैसे ही घर पहुंचकर भोजन करेंगे। ये सुनकर खुशी के मतलब उनकी आंखें जो हैं वो नम हो जाया करती थी और कहते मेरा मन सोचता था कि मेरी मेहनत सफल हुई। अगर बच्चे समझने लग जाएं कि हमें कहाँ पे खर्चा करना है, कहाँ पर नहीं करना है, तो समझ लो कि माता पिता की आधी समस्या तो वैसे ही हल हो जाती है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: सही कहा। देखो ना, कई बार ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे हम जब खर्च करते चले जाते हैं, तो फाइनेंशियल यानी कि जो वित्तीय अनुशासन है वो अगर हम नहीं रख पाते हैं, तो हमें कभी ना कभी एक आर्थिक तनाव वो आ जाता है, थोड़ा सा एनजाइटी, टेंशन,
0: बिल्कुल
1: ये सब चीज़ें आई जाती है। और फिर सहेलियों के मन में ये सवाल आता ही है कि आखिर पैसे इतनी जल्दी ख़त्म हो क्यों जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: होता है ना ऐसा?
0: बिल्कुल ऐसा होता है। और यही होता ना कि अक्सर हम जो है बिना योजनाएं बनाकर बनाए खर्च करते रहते हैं, और छोटे छोटे जो खर्च होते हैं वो सुविधाओं के नाम पर होने वाला व्यय, अचानक की गई खरीदारी होती है, और बचत को टालने की आदत यानी धीरे धीरे पूरे बजट को जो है वो बिगाड़ ही देती है।
1: अरे अरे मंजरी, इतना परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। और सखियो, हम आपसे भी कहते हैं इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर थोड़ा सा आपस में अभी जो विचार विमर्श कर रहे हैं और जो बहुत सारे संदेश आए हैं, तो हम कुछ जानेंगे आसान बदलाव के बारे में कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, आपको क्या सही लगता है क्या गलत, वो ज़रूर बताते चलिएगा।
0: बिल्कुल। और अक्सर लोग ये तय नहीं कर पाते हैं दीपा कि उनकी आय का कितना हिस्सा कहाँ खर्च होना चाहिए। और अब देखिए ना, कुछ खर्चे तो बिल्कुल निश्चित होते हैं कि जैसे मकान का किराया, राशन की खरीदारी करनी है, पेट्रोल भराना है, बिजली पानी वगैरह वगैरह, जैसे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, घर में दूध का बिल देना है, तो बच्चों की फीस जमा करनी है, इन सब खर्चों के लिए पहले से ही राशि तय करने से कर लेने से क्या होता है कि फिजूल खर्च से हम बच सकते हैं। यानी कि जब
1: बिल्कुल
0: आप सैलरी लेकर आएँ तो एक एक छोटे छोटे बॉक्स बना लें, उसमें सबके हिस्से के पैसे डाल दें,
1: हाँ,
0: है ना,
1: इस तरह से
0: इस
1: भी कर
0: तरह से
1: सकते
0: बचत
1: हैं,
0: कर
1: बिल्कुल।
0: सकते हैं।
1: और कई बार ये भी देखने में आता है मंजरी कि बहुत सारे लोग महीने की शुरुआत में

0: खुलकर खर्च कर देते हैं। फिर जनाब नतीजा तो तय ही होता है ना कि आखिरी दिनों में आर्थिक जो एक टेंशन सी आ जाती है वो बढ़ने लग जाती है। इसलिए ज़रूरी खर्चों के बाद बचे रकम को पूरे महीने के हिसाब से अलग अलग हिस्से में बांट कर देखना चाहिए, जैसे अभी आप बता रही थी। तो वैसे भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 से 10 तारीख का खर्च अलग रख दो, 11 से 20 का अलग रख दीजिए, और फिर 21 से 30 का खर्च आप अलग अलग एक सेगमेंट बना करके अलग अलग रख के ये भी करके हम देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और अक्सर दीपा हम लोग यही सोचते हैं कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बचत में डाल देंगे, लेकिन क्या होता है ऐसा होता नहीं है और पता ही नहीं चलता है कि मतलब सैलरी मिलते ही 20-30% राशि बचत के लिए जो हमने रखी है या नहीं रख पाए हैं वो कहाँ चली गई, खर्च होते ही चले जा रहे हैं। तो हमें बचत के लिए भी सोचना पड़ता है और सच में यही बचत आने वाले दिनों में आर्थिक सुरक्षा का आधार बनाती है, जो हम कटौती करते हैं। और दीपा एक और रास्ता है कि आप एक कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए खर्चे को,
0: बिल्कुल।
1: तो आप अगले महीने उसको सोचिए कि हमने कहाँ पे खर्चा ज्यादा किया है, तो उस चीज को फिर अगले महीने आप बजट से हटा सकते हैं कि
0: हटा
1: नहीं भाई ये
0: सकते
1: हमारे
0: हैं
1: लिए
0: जी,
1: आवश्यक नहीं है।
0: बिल्कुल। और इसी तरह से एक इमरजेंसी फंड भी हम जरूर रखना चाहिए हमें, जैसे बीमारी हो गई या नौकरी में बदलाव हो गया, इस तरह की कोई परिस्थिति अगर बन जाती है तो बिना तैयारी के जो ये आर्थिक दबाव आता है, ऐसे में 3 से 6 महीने का खर्च के बराबर का एक इमरजेंसी फंड अगर हम रखें ना अलग से, बहुत मुश्किलें, देखिए बोलना आसान होता है करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बचा करके हम कुछ ऐसा करने की 3-1 महीने की सैलरी जितना पैसा अगर हमारा अलग से रखा हुआ है, तो कभी भी अचानक कुछ अगर इमरजेंसी आ गई है तो हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि अरे क्या करें क्या नहीं करें और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे मदद मांगे, किसको बोले कि हमें थोड़ा सा पैसे की जरूरत है, तो आप प्लीज हमें कुछ हेल्प करेंगे क्या। तो इस तरह की स्थिति हमारे सामने आने से हम बच जाएंगे।
1: और दीपा देखो पहले के समय में ऐसा होता था ना, महिलाएं जो है दादी नानी काकी लोग, इनको देखो तुम अलमारी के पेपर के नीचे पैसे रख देते थे या अपनी साड़ी के फलाने साड़ी के पल्लू में बांध के रख दिए या अलमारी के अंदर उन्होंने एक छोटी सी डिब्बा रख दी, तो वो हर जगह थोड़े थोड़े पैसे रखती थी और मुसीबत के समय वही पैसे उनके काम आते थे। तो सिर्फ बचत करने से काम नहीं चलता है दोस्तों, थोड़ा सा निवेश भी होता रहना चाहिए, इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निवेश करने की आदत जरूर बनाएं, फिर वो चाहे महीने के 1,000 या 2,000 रुपए की शुरुआत क्यों ना हो शुरू किया जाए। और आप
0: बिल्कुल।
1: गुल्लक भी बना सकते हैं, अपनी गुल्लक भी बनाइए, बच्चों की भी, हस्बैंड की भी, और सबसे बोलिए इसमें सब लोग पैसे बचाइए, तो आप इस तरह से भी पैसे बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और हम अपने लिए कुछ ऐसे दिन भी चुन सकते हैं जहां हम सिर्फ ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी करेंगे और फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे महीने के 3-4 दिन भी अगर ऐसे आ गए तो आप देखिएगा थोड़ा सा पैसा तो हमारे पास बच जाएगा। एक और तरीका भी हो सकता है कि 24 घंटे का नियम बना लें, यानी कि कभी भी ऑनलाइन कोई लग्जरी आइटम या ऐसी कोई चीज़ जो कि आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं हमें लेना है, वो ऑनलाइन पे दिख गई, अब हमें लगता है खर्चना तो है या हमें ये ख़रीदना तो है, तो आप 24 घंटे का इंतज़ार करिए, उसके बाद ही उसे ख़रीदने की सोचें। देखिए आवेग में आकर के बहुत चीज़ हम ऐसे खरीद लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा रुक जाते हैं ना तो ऐसा लगता है नहीं ये फिजूल लग रहा है, अगले
1: किसी
0: महीने ले
1: किसी
0: लेंगे।
1: की आदत होती है दीपा खर्चा करने की, हाथ में खुजली होती तो नहीं लगता है, मतलब पैसे वाली की, अब कुछ कुछ तो कर ले कुछ तो कर ले, तो उन्हें ऑनलाइन सबसे अच्छा माध्यम लगता
0: बिल्कुल।
1: है।
0: तो उन्हीं लोगों के लिए ये है कि आप रुकिएगा, बिल्कुल तुरंत ही वो चीज़ जो है ऑनलाइन उसकी शॉपिंग ना
1: नहीं
0: करिएगा,
1: बिल्कुल,
0: थोड़ा सा रुक जाइए। हम कह रहे हैं 24 घंटा, आप 24 घंटा भी नहीं, आप 12 घंटे रुकिएगा,
1: बिल्कुल
0: 12 घंटे के बाद आपके मन में वो जो उतावलापन है ना वो हम बिल्कुल
1: शांत
0: कम हो
1: हो जाएगा।
0: जाएगा।
1: और जब खरीदने का मन भी करे तो आप अपने आप से ये कहिए कि ये मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, इसकी कितनी जरूरत है या नहीं जरूरत है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह की जब बातों पर विचार करेंगे तो भी आप अपने को रोक सकते हैं। और दीपा हम खुद को एक वित्तीय चुनौती देकर भी देख सकते हैं, जैसे कि 15 दिन से हम कोई एक तय हुई राशि में ही काम चलाएंगे, उसे चलाएंगे, ऐसा करके देख सकते हैं कि सोची हुई राशि से हम अपने 15 दिन निकाल सकते हैं या नहीं। अक्सर लोग केवल किराया, राशन, बिल जैसे तय खर्चों को ही बजट में शामिल करते हैं, लेकिन रोज़मर्रा के कई छोटे छोटे अनियोजित व्यय धीरे धीरे पूरे वित्तीय संतुलन को बिगाड़ देते हैं।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही। और अब देखिए कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जो अचानक से आ सकते हैं, जैसे उपहार खरीदना है, या कभी कभी ऐसा होता है ना फल सब्जियों की अचानक कीमतें बढ़ जाती हैं, या बाहर कभी खाना खाने जाना पड़ सकता है, कोई या अचानक से कोई ट्रैवल यानी यात्रा पे निकलना पड़ सकता है, कोई मेडिकल खर्च भी आ सकता है, या दफ्तर में कोई छोटे छोटे योगदान होते हैं ना, हमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, इस तरह के भी खर्च आ जाते हैं। तो इस ये सब भी आपका, इन सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बजट में शामिल करके रखना जरूरी है।
1: बिल्कुल। और देखो हमारे साथी भी लिखते हैं कि महीने की शुरुआत और बचत का सीधा संबंध है, शुरुआत अच्छी तो महीना अच्छा, सैलरी मिलते ही शुरुआती दिन में सबसे ज़रूरी वही खर्च करें जिनकी तारीखें फिक्स होती हैं, मसलन घर का किराया, बिजली का बिल, गैस पेमेंट, ईएमआई, बच्चों की फ़ीस वगैरह, फिर आता है राशन, और घर में कोई पेशेंट है तो दवाइयाँ। इसके बाद कुछ पैसा घर में इस तरह से रख लो कि लगभग ऐसा लगे कि जैसे है ही नहीं, जो आड़े वक्त काम आ सके, किसी से मांगना ना पड़े। फिर इसके बाद आते हैं शौक वाले खर्च, जो तो वो अपनी आय और बचत के अनुसार करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को देखकर। अगर आय के अनुसार बजट बनाकर खर्च किया जाए तो महीना बहुत आराम से निकल जाता है।
0: और एक संदेश ये भी आ रहा है कि एक गीत सुना दीजिए।

0: बताइए आपके दिल में क्या है?
1: मेरे दिल में तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, हम संदेश ही पढ़ेंगे फिलहाल तो अपने विषय पर।
0: हाँ।
1: तो हमारे साथी लिखती हैं कि आजकल बचत के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, पर अपनी माँ के ज़माने में हम देखते थे कि माँ एक अलग से अपना गुल्लक टिन या पाउडर वाले डिब्बे या किसी तरह के डिब्बे रखती थी। वे ज़्यादातर रसोई घर में छुपा के रखा जाता था और कुछ महीने के अंत में कभी ज़रूरत पड़ा तो उसमें से निकाला जाता था पैसा। हम बच्चों को डरवाया जाता था, उस डिब्बे में कोई नहीं छूएगा, उसमें भगवान का पैसा रहता है, पाप लगेगा। अब कभी माँ निकाल कर कुछ खर्च करके बाजार से मंगवाती

0: थी तो हम कहते थे कि ये तो भगवान का पैसा है। माँ बोलती थी कि अन्नपूर्णा भी देवी माँ ही है, उन्हीं के नाम पर आ रहा है। क्या बात है,
1: क्या बात
0: माँ तो
1: है।
0: माँ ही होती है आखिर, है ना।
1: सही कहा। और एक संदेश में हमारे श्रोता भाई ने लिख भेजा है कि मेरे बड़े भैया अक्सर कहा करते थे कि जीवन में तीन मित्र जरूरी हैं, इससे बचत के स्रोत कहिए या मित्र। वो ऐसे मित्र हैं जो विपरीत परिस्थितियों में हमारे संकट मोचक साबित हो सकते हैं। पहला आपकी बचत, दूसरा है सोना या गहने का, और तीसरा है आपके खुद का मकान। मैंने उनकी बातों का अनुसरण करते हुए छोटी छोटी बचत के द्वारा शुरुआत की, जैसे पोस्ट या बैंक में 5 साल की अवधि के लिए रिकरिंग अकाउंट खुलवा लिए। इन अकाउंट की अवधि पूरी होने पर उसी रकम को फिक्स डिपॉजिट में तब्दील करता गया। 15 साल के बाद खुद का मकान बनाने में मुझे बड़े भाई जैसा साथ मिला हो ऐसा महसूस हुआ, वो भी बगैर लोन लिए। उसके बाद बेटे बेटी की शादी के लिए अग्रिम तैयारी स्वरूप समय समय पर गहने बनवाता गया। क्या बात है। और आज सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये सब कुछ बातें ठीक ठाक चल रही हैं।
0: और
1: तो
0: देखो
1: भाई इस तरह के अगर परिवार का साथ हो तो फिर तो देखिए बचत में और आपको दुगनी सहायता ही मिलेगी।
0: बिल्कुल। और एक हमारी साथी लिखती कि जब पहली तारीख को तनख्वाह आती तो इतना सारा पैसा एक साथ देकर मन ही मन बहुत से प्लान शुरू हो जाते थे, उस समय हाथ रुक भी नहीं पाता था। पर जब एक एक करके पैसे देने यानी फीस, राशन पानी, दवा, डॉक्टर आदि में निपटाने लगते थे तो कैसे फुर्सत उड़ जाता था, पैसा पता ही नहीं चलता था। और महीने के शुरू से ही कुछ एक चौथाई पैसा अलग दबा कर रख देते और भूल जाए, और फिर पूरे महीने का राशन, दवा और डॉक्टर के पैसे, बच्चों की फीस, घर में काम करने वाली महिलाएं आदि को दे दे, बीच बीच में 50-100 रुपए एक अलग गुल्लक में डाल दे। अगर हाथ में पूरा पैसा होगा तो अधिक तेजी से खर्च होता है, दबाए हुए पैसे आड़े वक्त में काम आते हैं। बहुत अच्छी सी सबने बात लिख के
1: जी बिल्कुल।
0: रखी है।
1: और हमारे सभी साथी बचत के मामले में इतने सतर्क हैं और हमेशा करते हैं और अलग अलग सुझाव दे रहे हैं, उसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद
0: जी
1: देते हैं। मंजरी हमसे एक सवाल पूछ रही थी, क्या सवाल था मंजरी?
0: ये सवाल हम ये पूछ रहे थे कि ये बताओ कि वन तुमने देखा है ना, हरियाली वहाँ की बहुत मन को मोहती
1: जी
0: है, तो क्या कभी तुमने उस पर ध्यान दिया कि वन में कौन कौन से वृक्ष लगे होते हैं?
1: बहुत सारे लगे होते हैं, कई बार जाते हैं ना तो लगातार कभी बरगद के पेड़ दिखने लग जाते हैं, नीम होते हैं, पीपल होते हैं, और भी कई कई तरह के कहीं कहीं पे आम के बगीचे लगातार दिखते हैं, यात्रा में जाते हैं ना।
0: और देखो वनों में जब हम जाते हैं तो ये तो तुमने सही बताया, लेकिन इसके साथ साथ महुआ है, पलाश है, तेंदू है, सेमल है, आंवला है, जामुन है, खैर, बबूल, चंदन, शीशम, चीड़, देवदार, साल, सागौन, ये सारे पेड़ भी वहाँ पर दिखते हैं। तो जब कभी वन की तरफ रुख करना तो इन पत्तों को, इन पेड़ों को बहुत ध्यान से देखना तो
1: बिल्कुल,
0: बड़ा मज़ा आएगा,
1: बहुत
0: है
1: मज़ा
0: ना।
1: आता है। उनके अलग अलग आकार, किसी कोई पत्ता चौड़ा होता है, कोई लंबा होता है, किसी की धारियां बहुत साफ सफाई से
0: और कोई
1: दिखती
0: बड़े
1: हैं,
0: खुरदुरे भी
1: और
0: होते हैं कि
1: कोई
0: उंगली लगाओ
1: जी
0: तो तुम्हारे उंगली में भी छिलने जैसा एहसास होगा, ऐसा भी होता है।
1: बिल्कुल
0: तो भाई देखो कहते हैं ना कि वन महोत्सव जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है, तो एक पेड़ लगाए 100 खुशियां पाए, हरियाली बढ़ाए, धरती को स्वर्ग बनाए। इस वर्ष की थीम है हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण है। इसके अलावा ये मुहिम चलाई जा रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ धरती लगाओ बचाओ जैसे नारे जागरूकता बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने जो पौधा रोपण किया है दीपा, उसकी देखभाल एवं उसके बढ़ने, फलने, फूलने तक का ध्यान रखा जाए। पानी समय पर देना है उसको, कोई और क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल। और इसकी शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर के एम मुंशी इनके द्वारा हुई थी, तभी से इसे पेड़ लगाने का त्यौहार भी कहा जाता है। हर साल एक, जैसा कि अभी आपने बताया, हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे हमारे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। पेड़ों से हमें प्राण वायु ऑक्सीजन मिलती है, वर्षा चक्र संतुलन में रहता है, तापमान नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, इनमें अनेक जीव जंतु पशु पक्षी निवास करते हैं, उन्हें भोजन मिलता है, और हम सभी को अनेक आवश्यकताएं इन्हीं से पूर्ण होती हैं।
0: बिल्कुल। और इनको बचाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कटाई इसकी रोकनी होती है, वरना आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। जो वनों को बहुत काटते जाते तो उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसको अगर थामा नहीं तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और गर्मी की दिक्कतें हमें झेलनी पड़ जाती है। तो कहना चाहिए प्रति व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए और उसकी देखभाल के प्रति भी सजग रहना चाहिए।
1: बिल्कुल। और इसी तरह के बहुत सारे संदेश भी हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं, लेकिन सुनते हैं क्या
0: एक गीत।

0: ऐसे ही जो काली काली घटाएं हैं ना, हर जगह हर तरफ बस ये बरखा रानी इसी तरह से बाहर बरसा दे, यही हम चाहते हैं।
1: बिल्कुल। और हमारे साथ ही लिखते हैं दीपा, वन महोत्सव के सप्ताह के दौरान स्कूल कॉलेज या सरकारी संस्थान वृक्षारोपण अभियान वहाँ पर चलाया जाते हैं और लोगों को पौधे वितरित करते हैं और पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम और आम बहार आपके द्वार जैसे विषय विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें देशी और फलदार वृक्ष जैसे आम, जामुन, अमरूद, नीम के रोपण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। और दीपा, जो हमारे जो पेड़ हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है? वृक्ष जब लगे होते तो देखो लकड़ी की और लकड़ी और इमारती सामान मिलता है, जलावन की लकड़ी मिलती है, औषधि जड़ी बूटियाँ, शहद, फल, जामुन, आंवला, बेल आदि, मेवे, मशरूम, बांस और बेत भी मिलते हैं, गोंद, लाख, राल, ये सब चीज़ें इन सब में घास और चारा मिलता है पशुओं के लिए। और वन्य जीव पक्षी जो है वो वहाँ पर जीव जंतु हैं, पशु पक्षी है, वो सब वहाँ पर निवास करते हैं। तो कहना चाहिए कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए और वनों को कटने से, उसको जो है रोकने से बचाना चाहिए और तभी हमारा जो जीवन है वो सफल हो पाएगा।
0: बिल्कुल, सफलता सफल जीवन के लिए देखिए अच्छा वातावरण तो बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और स्वास्थ्य अच्छे के लिए अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिख भी भेजा है, बहुत सारे रेसिपीज़ आज अलग अलग तरह से आई है, पंजाबी छोले और भटूरे की। तो मंजरी आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़ें?
1: कोई भी पढ़ सकता है,
0: पढ़िए आप पढ़िए।
1: चलिए, तो हमारे एक साथी लिखते हैं छोले भटूरे की रेसिपी। 2 कप काबुली चने रात भर भिगोए हुए, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर पिसे हुए, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2-3 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, इतना ही आप हल्दी लें और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 या 2 छोटे चम्मच ले सकते हैं, और लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच छोटा छोले मसाला पाउडर लेना है और आधा चम्मच छोला मसाला लेना है इन्होंने लिखा है, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया, भीगे हुए चनों को नमक प्रेशर कुकर के साथ में और पानी डालकर 5-6 सीटी के साथ इसको उबाल लें। 1 कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें प्याज सुनहरा होने तक भूने, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, टमाटर और सारे मसाले डालकर तब तक पकाएं जब तक तेल अलग ना हो जाए। अब छोले और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर 10 से 15 मिनट धीमी आँच पर पकाएं, अंत में हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। भटूरे के लिए सामग्री, दीपा इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच सूजी, 2 बड़े चम्मच दही, आधा छोटा चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच तेल, गुनगुना पानी, तलने के लिए तेल लेना है आपको, मैदा, सूजी, नमक, चीनी और बेकिंग सोडा मिलाएं, दही और तेल डालकर गुनगुने पानी से मुलायम आटा गूंथ लें, आटे को ढककर 2-3 घंटे के लिए रख दें, छोटी छोटी लोइयां बनाएं जब आपको बनाना हो और गर्म तेल में मध्यम तेज आँच पर गर्म तेल करें और मध्यम तेज आँच होनी चाहिए और दोनों तरफ भटूरों को आप उसमें सुनहरा तल लें और बस भटूरे तलने पर बहुत ही अच्छे बनते हैं। और आप इसको परोसना है तो आप कटा प्याज, हरी मिर्च, नींबू और आम के अचार के साथ छोले के संग में परोसे।
0: ये भोजन का आप स्वाद का आनंद लीजिए और साथ में लीजिए इस गीत का आनंद।
2: अरे

0: तो साथियों, आज तो देखिए समय कह रहा है कि हमारे भी चलने का वक्त हो गया है,
1: लेकिन चलने से पहले एक बात बताते हैं। हमारी सखी ने लिखा है, जंगल की जब हम लोग बात कर रहे थे वनों की, तो उन्होंने कहा है कि कभी कभी वो ऐसे वन भोज में शामिल हुई जहाँ पर उन्हीं पत्तों पर वहाँ की सब्जियाँ साग परोसे जाते थे और झाड़ बेरियाँ और जंगली पत्तों पर बैठ कर प्रेम से भोजन करते थे, इन्होंने लिखा है। तो भाई वन तो ऐसे हैं कि हम उनको छू कर महसूस कर सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी आत्मिक शांति मिलती है ना।
0: बिल्कुल। तो हम तो आशा करते हैं आज का कार्यक्रम में आपने खूब आनंद लिया होगा। आप अपना, अपने परिवार का खूब अच्छे से
1: जी,
0: ध्यान रखिएगा।
1: और अब लेते हैं विदा कार्यक्रम से। तो सभी को मंजरी वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लता देवलीकर को। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह और ये है कार्यक्रम सेहतनामा। दोस्तों स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और जब बात महिलाओं के स्वास्थ्य की हो तो जागरूकता और सही जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर महिला के जीवन से जुड़ा है। महिलाओं का स्वास्थ्य, हार्मोनल बदलाव, PCOD, प्रजनन स्वास्थ्य और आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव। तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर जो नासिक से आई हैं। डॉक्टर आशा लता देवलीकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार। थैंक यू।
1: कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा।
1: स्टूडियो में आकर
2: बहुत ही अच्छा लगा
1: जी। आज एक बड़ी समस्या हो गई है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है, जिस पर सजगता बहुत ज़रूरी है, वो है PCOD। ये PCOD क्या है और क्या ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: यस, अभी PCOD यानी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। और PCOD क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसका फुल फॉर्म है पॉली यानी ज़्यादा और सिस्ट यानी सिस्ट। PCOD के दो है, PCOD और PCOS। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो PCOD है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है और PCOD में क्लियरली होता है सिस्टिक ओवरीज। और जो PCOS है जो उसमें मल्टीपल डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम्स होते हैं, ज़्यादा लक्षण होते हैं, इसमें फर्टिलिटी पर इफेक्ट करता है, ये आजकल यही है PCOS।
1: इसके लक्षण क्या है, मतलब क्या है इसमें खतरा क्या है?
2: PCOD है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और ये जो है ये फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है। फर्टिलिटी पे तो इफेक्ट करता ही यही है, लेकिन उसके साथ साथ में शुगर, BP हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है और आगे बहुत आगे चल के एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। ये जितना सिंपल है उतना खतरनाक भी है ये बीमारी।
1: तो PCOD असल में क्या है, ये क्या हार्मोनल इंबैलेंस?
2: PCOD एक हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से होता है। क्या होता है, अभी जो ओपीडी में बच्ची आती है हमारे पास, 10 बच्चियों में से 6 बच्चियों में ये साइन दिखता है PCOD। तो इसका बहुत ज़्यादा ही प्रमाण हो गया है। रिप्रोडक्टिव एज जो होता है बच्चियों का 14 से 35 तक ये इफेक्ट करता है और ज़्यादातर 20 से 30 तक उम्र के बच्चों में ये ज़्यादा दिखता है
1: जी।
2: ये जो डिसीज़ है

0: लाइफस्टाइल चेंज डिजीज है, लाइफस्टाइल चेंजिंग, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, और ये तीन फैक्टर के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है
1: जी,
0: और इंसुलिन रजिस्टर हो जाने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो इंसुलिन रजिस्टेंस के वजह से मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं और एंड्रोजन बढ़ने लगता है, और ये बढ़ने के वजह से ओवुलेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो इसके वजह से नॉर्मल ओवुलेशन नहीं आता है, पीरियड रेगुलर नहीं आता है, ओरी सिस्टिक हो जाती है और इरेगुलर सब हो जाता है
1: जी। तो इसके जैसे कि आप लक्षण बता रहे हैं, पीरियड्स
0: हाँ।
1: नहीं आते हैं रेगुलर, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या
0: हाँ।
1: हो जाती है ना लड़कियों की, महिलाओं की, उनको स्ट्रेस और बढ़ेगा, अगर स्ट्रेस और बढ़ेगा तो ये समस्या और बढ़ेगी, तो इसका क्या इलाज है?
0: हाँ, तो इसके लक्षण बताती हूँ मैं। पहला इसमें फर्स्ट लक्षण दिखता है पीरियड का इरेगुलर हो जाना, और पीरियड का फ्लो कम हो जाना, स्केंटी पीरियड्स बोलते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाना, कभी 2 महीने के अंदर पीरियड आते हैं, 3-3 महीने आते हैं, ये 6-6 मंथ भी नहीं आते हैं, और कभी कभी मेडिसिन लेके ही पीरियड्स आ जाते हैं, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एक्ने आते हैं, पिम्पल्स आते हैं, रफ फेस दिखता है
1: जी,
0: और मूड स्विंग्स होते हैं, आलस आता है, बाल झड़ते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर, चिन पे हेयर आते हैं, अपर लिप्स पे हेयर आते हैं, बॉडी पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं, और इनफर्टिलिटी में ये बहुत इफेक्ट करता है, आगे चल के शुगर, थायराइड, वो सब होता है
1: जी। तो इसका इलाज किस तरह से संभव है?
0: हाँ, इसका इलाज संभव है, इसका इलाज है कि नेचुरल वे से संभव है, जैसे वेट लॉस, पीसीओडी के पेशेंट में देखो तो 80% पेशेंट में ओवर वेट रहते हैं, पेशेंट वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसका इलाज है वेट लॉस और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, यानी
1: मेडिटेशन,
0: हाँ वो थोड़ा, तो एक्सरसाइज, योगा, सूर्य नमस्कार, पावर योगा, वॉकिंग, एरोबिक्स, कार्डियो, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, ये सब एक्सरसाइज में कर सकते हैं, 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम, एक्सरसाइज इतना किया तो भी 35% तक पीसीओडी रिवर्स हो जाता है, और डाइट।
1: तो अब आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं, आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: अच्छा, एक प्यार का नगमा,
1: एक प्यार का नगमा है मौजू की रवाने, सुनते हैं ये गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है इसमें।

0: इस गाने के बाद डॉक्टर आशा लता, आपने जिक्र किया था कि PCOD यानी कि ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, असंतुलन है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होता है। तो इनफर्टिलिटी के लिए जब पता चले कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा है किसी कपल को, तो क्या है जांच पद्धति और क्या है उसका ट्रीटमेंट, बताइए। हाँ, पहले जांच पद्धति बताइए। हाँ, किस तरह से
1: जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो 1 ईयर कुछ प्रिकॉशन यूज करते हुए भी उनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, तो फर्स्ट थिंग हम करते हैं लेडीज में, फीमेल में, ओवुलेशन स्टडी। कि ओवुलेशन स्टडी एक सोनोग्राफी होती है
0: जी,
1: और उसमें पता चलता है कि उसका यूटेरस सही है, यूटेरस की मेजरमेंट क्या है, ओरी सही है, गर्भनलिका जो है वो सही है, एंडोमेट्रियम थिकनेस जिसको हम बोलते हैं अंदर का अस्तर वो सही है, ये सब पता चलता है। और फिर उसके कोई हार्मोनल टेस्ट रहती है, उसमें रहता है ब्लड टेस्ट रहते हैं, वो पीरियड के सेकेंड डे से करना पड़ता है, और वो खाली पेट करते हैं, उसमें FSH रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन बोलते हैं, LH रहता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल रहता है, और सबसे बड़ी चीज़ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, ग्लूकोज का पूरा टेस्ट करते हैं, फास्टिंग, PP, और उसमें कुछ आ गया 120 110 120 के आसपास तो HbA1c ये टेस्ट रहता है। और फर्टिलिटी के लिए MH लेवल, एंटी मिलेरियन हार्मोन की लेवल रहती है वो करना पड़ती है, इतना ब्लड टेस्ट रहता है और UHG सोनोग्राफी, ये दो टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और मेल पार्टनर में हम सीमेन काउंट, सीमेन एनालिसिस करते हैं।
0: और अभी तो तकनीक काफ़ी एडवांस हो गई है, तो इनफर्टिलिटी की जांच के लिए और भी कुछ जांच की पद्धति आ गई है, तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ इन्हें बच्चा ना होने का क्या कारण है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। जैसे लेप्रोस्कोपी है तो क्या?
1: हाँ, वो थोड़ा जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी, IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने ज़माने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल, और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर। और शिफ्ट नहीं हो रहा है तो टेस्ट रहते हैं आगे चल के उनका ट्यूबल ब्लॉक है कि नहीं, वो एक अच्छी सी टेस्ट रहता है
0: जी।
1: तो वो सब ठीक है, अभी नहीं हो रहा है नॉर्मल, कुछ ज़्यादा दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आगे चल के उनको लेप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं।
0: तो ये भी इनफर्टिलिटी भी एक ऐसा कारण है जो स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। आज हम बात करना चाह रहे हैं PCOD और महिलाओं के अन्य तमाम समस्याओं पर, और आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि जब PCOD का इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती, लक्षण हैं जैसे कि पीरियड्स का इररेगुलर हो जाना। तो पीरियड्स का इररेगुलर होता है, कई बार कई महिलाओं को, कई लड़कियों को हैवी ब्लीडिंग होती है, भयानक पेन होता है, तो दर्द से निजात पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? और ये भी सुना है कि फिर फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं क्या हैवी ब्लीडिंग की वजह से, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है फाइब्रॉइड्स और
1: यूटेराइन फाइब्रॉइड और CSTA जो है, तो मेडिसिन लेकर देखते हैं पेशेंट को, अगर उसका साइज ज़्यादा हुआ, फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वो सर्जरी करना पड़ता है इसका।
0: कैसे पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स है या नहीं?
1: UHG में, सोनोग्राफी में उसका परफेक्ट मेजरमेंट आता है
0: जी,
1: सोनोग्राफी एक ही माध्यम है उसको
0: जी। तो क्या फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन करना जरूरी होता है या ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है?
1: शुरू में तो ट्रीटमेंट नहीं देना जरूरी है, और ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है मेजरमेंट उसका, तो सर्जरी करना पड़ती है उसकी।
0: जी, तो एक गाना और सुने आपकी पसंद का, कौन सा?
1: अजीब दास्ता
0: है जी, सुनते हैं, बेहतरीन गाना चुना है, लता मंगेशकर की आवाज़ है।

0: आपने कुछ लक्षण बताए, हार्मोनल असंतुलन होता है तो और क्या क्या लक्षण होते हैं जब हार्मोनल असंतुलन होता है, और इनको क्या नजरअंदाज करती हैं कई बार महिलाएं, तो क्या कुछ मुश्किलें आती हैं जब इन्हें नजरअंदाज करती
1: हाँ,
0: छोड़ देती हैं?
1: ये तो जब फिजिकली होता है तो हमको समझ में आता है कि नहीं उसको ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है इस केस में, उसको नज़रअंदाज कर दिया जा सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन है जिसे, और काउंसलिंग पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा,
0: तो काउंसलिंग किस तरह की होनी चाहिए?
1: काउंसलिंग जब डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर भी अच्छे, जब काउंसलर डॉक्टर हो गए तो पेशेंट का रेपो अच्छा हो जाता है उनसे, फ्रेंडली, जब वो अच्छे से समझाते हैं तो आधा काम इधर ही हो जाता है
0: जी जी
1: ऐसा
0: जी
1: मुझे लगता है।
0: जी
1: और डीप ब्रीदिंग, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक थिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी अभी जो चाहिए इस ज़माने में, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, और उसका स्लीपिंग जो पार्ट है प्रॉपर स्लीप वो होना चाहिए, और समझाना चाहिए सब। और एक है पॉजिटिव विजुलाइजेशन, जो तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव थिंक प्रोसेस और पॉजिटिव विजुलाइजेशन, ये
0: जी
1: बहुत बड़ी बात है।
0: जी डॉक्टर आशालता, पीसीओडी एक बड़ी समस्या है, हार्मोन्स का असंतुलन, तो इसमें डाइट्स का कितना बड़ा योगदान है? क्या डाइट्स के जरिए ठीक किया जा सकता है, खान पान के जरिए किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
1: डाइट के जरिए 35 तक ठीक कर सकते हैं पीसीओडी, 35% तक ठीक कर सकते हैं।
0: 35%।
1: हाँ, तो डाइट में, डाइट ही बहुत ज़रूरी है पीसीओडी यानी वुमन हेल्थ में, एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर बहुत ज़रूरी है। और डाइट में हम देखें तो अभी फास्ट फूड खाते हैं बच्चियाँ, बस फास्ट फूड ही खाती है, बर्गर खाएगी, पिज़्ज़ा खाएगी, बाहर का सब खाएगी, तो ये सबसे बुरी बात है। कार्ब्स कम करना है इसमें, और फाइबर इंटेक करना है, जिसे सैलड हो, कच्चे स्प्राउट्स हो, कैलोरीज पर ध्यान देना है। हाँ, जो हमको डेली में लगता है 1800 2000 तक कैलोरीज,
0: जी
1: और बच्चियाँ लड़कियाँ खाती है 4000 5000 कैलोरी, तो कहाँ पर कम करना है, और कैलोरी अगर खा लिया तो बर्न कैसे करना है, तो उसको बर्न करना है एक्सरसाइज से। तो डाइट हम लोग जैसे बोलेंगे तो टाइम पे सोना है, उठना है पीसीओडी में, पानी पीना है 3 से 4 लीटर, स्ट्रेस ना लेना है, और शुरू में उठते बराबर सुबह सुबह थोड़ा गर्म पानी पीना है, और अगर मेथी, थोड़ा जीरा, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा ये भी डाले तो ये टी हो सकता है, हर्बल टी, उससे भी थोड़ा सा पीसीओडी कम होने में मदद कर सकते हैं। नाश्ते में फाई आलमंड, वाइट एग ये ले सकते हैं, स्प्राउट्स ये ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में मूंग दाल वगैरह ये चीले ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन उपमा, पोहा, शीरा ये कार्ब्स है, उससे वजन बढ़ता है और अफेक्ट करता है। और हरी सब्जियाँ बहुत ज़रूरी है,
0: जी
1: जैसे सभी मेथी, पालक ये सब, और हरी सब्जियाँ से भी 25% तक पीसीओडी या वुमेन हेल्थ कम कर सकता है। और शुगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शुगर, शुगर एकदम बंद, पीसीओडी के पेशेंट में हम शुगर बंद कर देते, शुगर, मैदा, वाइट जो चीज़ें, राइस जैसे,
0: जी
1: हाँ, और हाई प्रोटीन डाइट हम बोलते हैं पेशेंट को कि थोड़ा प्रोटीन लो, तो प्रोटीन किस में होता है, जैसे मिल्क है, टोफू है, पनीर है, गुड प्रोटीन होता है ड्राई फ्रूट्स में, वो भी हम बोलते हैं। और सप्लीमेंट्स भी लेना ज़रूरी है, हम उनको बोलते हैं, जैसे ओमेगा फैटी हो गया, विटामिन D3 हो
0: जी
1: गया,
0: जी
1: विटामिन
0: जी
1: डी ये
0: और
1: बोलते हैं।
0: विटामिन डी
1: हाँ,
0: धूप से
1: सन,
0: ही मिलता
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: और
1: सनलाइट, हाँ
0: आजकल धूप की बहुत कमी
1: बहुत
0: है,
1: कमी है।
0: लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, तो मिलता
1: एसी,
0: नहीं, तो धूप सेकना बहुत ज़रूरी है। धूप का ही एक गाना है, एक टुकड़ा धूप का, फिल्म थप्पड़ से, आप कहें तो वो गाना सुनवा दें, आप कहें तो कोई
1: हाँ,
0: और गाना,
1: नहीं नहीं जरूर, बहुत अच्छा गाना है।
0: तो ठीक है ये गाना सुनते हैं जिसमें धूप है।

0: डाइट का कितना योगदान है?
1: डाइट का बहुत सारा योगदान है।
0: तो और क्या क्या डाइट्स ले सकते
1: हाँ,
0: हैं?
1: अभी डाइट में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते हैं, जैसे
0: जी
1: कोक हो गया और जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया।
0: चॉकलेट
1: हाँ,
0: नहीं ले
1: आर्टिफिशियल
0: सकते।
1: स्वीटनर्स रहता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं, चॉकलेट्स भी नहीं। और इससे बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ता है, और शुगर लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। बाहर की चीज़ें जैसे रिसाइकलिंग ऑयल में हम जैसे बोलते हैं समोसा, जो
0: नहीं खाना
1: इससे हाँ
0: चाहिए,
1: नहीं खाना चाहिए,
0: समोसे के
1: उससे
0: शौकीन
1: ट्रांस
0: के
1: फैटी,
0: लिए मुश्किल है।
1: हाँ, ये ट्रांस फैटी एसिड बढ़ता है और वो भी ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। और पैकेज फूड जो होता है, पैकेट बंद पैकेट का फूड, वो भी नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग फूड,
0: जी
1: नमकीन, भुजिया, जो सॉल्टी फूड्स है, वो भी नहीं।
0: तो और आपने कहा कि शक्कर एक बंद

0: कर देना चाहिए एकदम। तो कई बार एकदम से शक्कर बंद हो जाए तो लोगों को चक्कर आना, इस तरह की समस्या, वीकनेस, कमजोरी
1: हाँ
0: महसूस होती है, तो उसके लिए फिर क्या
1: वो
0: करना
1: फ्रूट्स
0: चाहिए?
1: से नेचुरल शुगर मिल जाती है
0: जी,
1: उनको। हाँ तो फ्रूट्स
0: मतलब
1: इंटेक कीजिए।
0: जब अगर
1: हाँ
0: शक्कर
1: खजूर
0: छोड़े
1: में,
0: तो फल जरूर
1: हाँ
0: खाएं।
1: फल जरूर खाएं। और ऐसा नहीं है कि शक्कर छोड़े गुड़ खाओ, अभी वैसा ही करती है महिलाएं कि हमको शक्कर छोड़ने बोला है और बोला है कि गुड़ खाओ,
0: जी
1: बिल्कुल गलत है।
0: हाँ।
1: शक्कर की सब्स्टिट्यूट गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं तो कोई नहीं, स्वीटनर कोई नहीं है।
0: मीठा वो
1: और
0: भी है,
1: मीठा, हाँ
0: नुकसानदेह
1: हमारे रोज के खाने में भी हमको शुगर जाती है। और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खजूर वगैरह है, नेचुरल शुगर मिल जाती
0: वो
1: है,
0: खा सकते
1: खा
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: और PCOD जो हार्मोनल असंतुलन होता है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है,
1: हाँ
0: तो
1: क्रॉनिक,
0: उसके लक्षण क्या है और कैसे इलाज हो सकता है, क्या
1: हाँ
0: निजात पाए,
1: क्रॉनिक
0: कैसे
1: स्ट्रेस
0: निजात
1: होता
0: पाए?
1: है, बहुत सारी चिड़चिड़ पीसीओडी की पेशेंट, चिड़चिड़ बहुत ज़्यादा होती है पीसीओडी की पेशेंट
0: जी
1: की। अभी जब भी पेशेंट हमारे पास आती है तो बोलती है कि चिड़चिड़ी बहुत ही होती है, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कुछ हो तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ये क्रॉनिक ये रहता है स्ट्रेस, और इससे कॉर्टिसोल बढ़ा देता है ये, और वजन बढ़ता है और ओवुलेशन ब्लॉक हो जाता है, सिस्टिक ओवरी हो जाती है, इनफर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है।
0: और क्या क्या कर सकते हैं इस स्ट्रेस से निजात पाने के लिए?
1: स्ट्रेस से कुछ तुम हॉबी हो या करियर पे ध्यान दो, या थोड़ा मेडिटेशन करो, या थोड़े अच्छे संगीत सुनो, और फिर थोड़ा सा मौन व्रत धारण करो।
0: चलिए हम मौन व्रत धारण करते हैं, एक गाना सुनते हैं। बताइए कौन सा गाना
1: चलिए
0: सुनवाए?
1: झिलमिल सितारों के।
0: आंगन होगा, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, आप पीसीओडी की बात करें और महिलाओं की और भी बीमारियां होती हैं जो महिलाएं जिनसे बचती भी हैं, जिन्हें छुपाती भी हैं, संकोच करती हैं। जैसे कि एक समस्या और है कि एक खास समय पर टीनेज पर 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं मासिक धर्म, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये बताया नहीं जाता, अवेयर नहीं किया जाता है, माँ बाप उन्हें इस बात की शिक्षा नहीं देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से उनको जागरूक बनाया जाए, उनको जानकारी कैसे दी जाए इसके बारे में कुछ?
1: अभी जो है टीनेज में आने का, जो मेनार्क बोलते हैं हम लोग, पीरियड स्टार्ट होने का, वो एज बहुत अर्लियर हो गया है,
0: जल्दी आ जाता
1: है। हाँ, जल्दी आ गया है। हम लोगों में जब 14 to 16 था, 12 से आता था, 12 ईयर से, अभी वो 8.5-9 साल की लड़कियों में भी दिख जाता है कि इसको मेनार्क स्टार्ट हो गया, इसको पीरियड स्टार्ट हो गए। और ये बहुत ज़्यादा डरने की चीज़ है, डरने की चीज़।
0: तो क्या वजह है इसकी?
1: इसकी वजह है जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, 2-3 साल की, खाने लगती है, तो बस उसको फास्ट फूड देते हैं। हाँ, कोक ये वो सब। मोटी होती है बच्ची, ध्यान नहीं देते, खाती है। और जब जितना अर्लियर मेनार्क स्टार्ट हो गया, जितना अर्लियर तुमको पीरियड स्टार्ट हो गए, उतना पीसीओडी का खतरा बढ़ता है। और अभी पीरियड्स कैसे स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, यूटेरस क्या चीज़ है, उसका फंक्शन कैसा है, ये सब स्कूल में इसके सब शोज होते हैं, बातें करती है डॉक्टर, और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है।
0: और आपने ये गर्भाशय में सिस्ट बन जाता है,
1: गर्भाशय में सिस्ट बन जाता है,
0: क्या समस्या है और इसका इलाज कैसे होता है?
1: गर्भाशय के साइड में दो गर्भनलिकाएं रहती है और गर्भनली के नीचे ओरिस रहती है। और जनरली देखा जाए तो 30 डेज की साइकिल रहती है, 30, 28, 30। तो फर्स्ट 10 डेज, बीच के 10 डेज और लास्ट 10 डेज, इसे 30 डेज। तो फर्स्ट 10 डेज में ओवुलेशन नहीं होता है, लास्ट 10 डेज में ओवुलेशन हो जाता है, और बीच के 10 डेज जो होते हैं उसमें ओवुलेशन होता है, यानी ओरी से एक फॉलिकल निकलता है, अंडा निकलता है, वो रिलीज होता है, बाहर आता है, और जब स्पर्म उससे मिलता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और नहीं मिलता है तो पीरियड्स आ जाता है। ये नेचुरल नॉर्मल लेडी में होता है, बीच के 10 डेज ओवुलेशन पीरियड। और पीसीओडी के पेशेंट में ये होता है कि उनका वो जो एग है वो रिलीज नहीं होता है, वो बाहर नहीं आता है, वो बाहर ना आने जाने की वजह से मोतियों जैसी, मालाएं जैसी ओरी में सिस्ट दिखती है, छोटी छोटी सिस्ट होती है, और बाहर न आने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है।
0: जी, तो उस सिस्ट का इलाज कैसे किया जाता है, क्या ऑपरेशन होता है या दवा?
1: वो सिस्ट तो नेचुरल सिस्ट, मैंने जैसे बार बार बोला है कि वो अच्छे से डाइट, एक्सरसाइज, पहले नेचुरल वे से कंट्रोल करते हैं, नेचुरल वे से नहीं कंट्रोल हुआ तो मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, नहीं हुआ तो सिस्ट का ड्रिल होता है, ड्रिलिंग लैप्रोस्कोपी से, सर्जिकल प्रोसेस है।
0: जी, तो उसका कोई खतरा नहीं?
1: नहीं, उसका कोई खतरा नहीं, सर्जिकल होता है और मेडिकली वो होता है ठीक ठाक।
0: जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
1: सुरमई अखियो
0: में नन्ना मुन्ना सपना, सुंदर गाना, सदमा फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और डॉक्टर आशा रता विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर, हमें बताइए कि आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया था कि पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके तो बहुत सारे इलाज आजकल संभव है। अखबारों में विज्ञापन आता है कि इतने हजार में आप IVF तकनीक से बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा IVF तकनीक के बारे में बताइए किस तरह से वो बच्चे का जन्म होता है, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो गांव में भी हैं जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी बताइए, और कितना टाइम लगता है, कितना रिस्की होता है।
1: तो पेशेंट जिसे इनफर्टिलिटी उनको डिटेक्ट हुआ, चलो तो डायरेक्टली IVF नहीं करना चाहिए और करते भी नहीं है, उनको प्रॉपर नेचुरल वे से ट्राई करते हैं और फिर इनफर्टिलिटी जर्नी किसी को नहीं होना चाहिए, इतनी सफ़र होती है पेशेंट उसमें बहुत सारे, तो नेचुरल ट्राई करते हैं। नेचुरल ट्राई नहीं हुआ तो डॉक्टर मेडिसिन देख के ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है और फिर IUI का सेटिंग करते हैं। IUI भी नहीं हुआ तो
0: IUI क्या है?
1: IUI है इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको, डायरेक्टली यूटेरस में सीमेन डाल देते हैं। IUI जब करते हैं कि जैसे स्पर्म काउंट कम हो, उसकी मोर्टेलिटी कम हो और स्पर्म काउंट जीरो भी हो, एजोस्पर्मिया उसको जो बोलते हैं, तो डोनर से बोल लेते हैं, लैब

0: में ये सब किया जाता है
1: और लैब से भी डोनेट,
0: हाँ डोनर कर देते हैं, और डोनर को पता नहीं रहता है, पेशेंट को पता नहीं रहता है, ये सब बहुत ही लीगली होता है, बहुत ज़्यादा लीगली होता है। और IUI के जैसे परसेंटेज सक्सेस रेट बहुत कम है, 5-7% इतना ही सक्सेस रेट है, बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट कम है। और फिर नहीं IUI हुआ तो वो फॉर IVF, IVF के तरफ जब जाते हैं तो IVF क्या होता है, तो IVF में ओवम पिकअप करते हैं फीमेल का,
1: वो जो प्रेग्नेंटली
0: हाँ सिर बीच, हाँ उसमें सब मेडिसिन पहला देकर उसको मैच्योर करते हैं और वो पिकअप करते हैं, और स्पर्म तो लैब में उसको एम्ब्रियो बनाते हैं, उसका एम्ब्रियो बन जाने के बाद में यूटेरस में
1: तो ट्रांसफर करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पीरियड्स के किस दिन से शुरू होता है ये प्रोसीजर?
0: हाँ पीरियड्स के सेकेंड थर्ड से स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर, फर्स्ट तो इंजेक्शंस मेडिसिंस और फिर बाद में ओम पिकअप करते हैं जब मैच्योर हो जाता है श्रीबीज अंडा, और फिर बाद में
1: तो कई बार कपल जो पति पत्नी होते हैं जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको घबराहट भी होती है कि क्या प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कैसे होता है, क्या जैसे महिलाओं के गर्भाशय से जब अंडे रप्चर होते हैं वो निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, उस समय कैसे फिर उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती है?
0: वो थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर रहता है, तकलीफ तो होती है उनको,
1: एनेस्थीसिया वगैरह देना पड़ता?
0: एनेस्थीसिया नहीं, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं रहती है, और स्पर्म तो ऐसे ही लैब में कलेक्ट हो जाते हैं और उसका एम्ब्रियो बनाते हैं लैब में।
1: तो फिर इसमें किसी तरह का खतरा कोई रिस्क नहीं होता है?
0: नहीं अभी तो सब लैब टेस्टिंग होता है, पूरा सब लीगली प्रोसीजर्स होता है, खतरा कोई नहीं होता है।
1: कितने साइकिल में ये संभव हो पाता है, डॉक्टर के पास कितनी बार जाना पड़ता है?
0: वो बोल नहीं सकते, कभी वन साइकिल में हो जाता है, कभी सेकंड साइकिल में, कभी थर्ड साइकिल में भी हो जाता है, वो बोल नहीं सकते, कभी फेल भी हो जाता है। लेकिन IVF जो फेल हो गया वो लास्ट है
1: जी,
0: लास्ट टप्पा है, IVF फेल हो जाने के बाद में तुम नेचुरल वे में नहीं आ सकते।
1: जी जी, तो PCOD के कारण क्या ये भी होता है कि मेनोपॉज जल्दी हो जाए या फिर बहुत देर से हो, ये समस्या भी होती है?
0: हाँ होती है, PCOD में पीरियड से ही रेगुलर रहते हैं और ट्रीटमेंट नहीं किया तो मेनोपॉज ही हो जाता है, कभी कभी दवाई लेके ही पीरियड आता है
1: जी,
0: ये भी होता है
1: जी। तो इसकी क्या वजह है कि नींद की कमी और...
0: हाँ नींद की कमी, डाइट और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस।
1: कई बार हमने देखा है कि महिलाओं में ब्लीडिंग ज्यादा होती है और कई महिलाओं में बहुत कम
0: हो जाती है स्केंट पे,
1: और कुछ महिलाओं को दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी क्या वजह होती है?
0: वो जेनेटिक फैक्टर भी रहता है, कभी कभी दर्द होता है, मेनोर्जिया बोलते हैं उसको, और डाइट का भी इफेक्ट करता है वो, और एक्सरसाइज भी नहीं होती है तो होता है, जो महिलाएं एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, काम करती है, उनको नहीं इतना कुछ होता है।
1: तो
0: जो महिलाएं बहुत सुख वस्तु है, कुछ भी नहीं करती, योगा भी नहीं करती है, तो उनको ये सब पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज पेनफुल होता है।
1: तो ये गंभीर रूप कब ले लेता है?
0: इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये गंभीर ही रूप लेता है।
1: क्या कुछ खतरा होता है?
0: हाँ यूटेराइन कैंसर भी होता है, एंडोमेट्रियम कैंसर, ओरीज का कैंसर हो सकता है।

0: नमस्कार। 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम न्यूज़ हेडलाइन से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने 3 देशों के हिंद प्रशांत दौरे की शुरुआत की। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक आज लगभग 27 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के बढ़ते योगदान को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज ग्वालियर में संभाग स्तरीय उन्नत कृषक संवाद सम्मेलन में शामिल होंगे। ये आयोजन आज शाम राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन का भूमि पूजन भी करेंगे। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा 7 जुलाई तक बढ़ा दी है। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला कल खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे टेंट ब्रिज में शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रसारण

खुद को उम्मीदों से सजाना ज़रूरी है, ज़िंदगी खुशनुमा बनाना ज़रूरी है, हालात चाहे कुछ भी हो लेकिन हमेशा हंसना मुस्कुराना ज़रूरी है। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में युवाणी में। मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त पूजा पांडे। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं वन महोत्सव सप्ताह और वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में। साथ ही जानेंगे क्या है फिन टॉक्सिसिटी और कैसे युवाओं को इससे बचना चाहिए, और साथ ही सुनेंगे आपके मनपसंदीदा फिल्मी गीत। आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस मज़ेदार से गीत के साथ।

दोस्तों आप सुन रहे थे गीत फिल्म प्रिंस से, जिसमें स्वर दिए थे आतिफ असलम और श्रेया घोषाल ने। गीतकार हैं समीर और संगीत है सचिन गुप्ता का। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात वन महोत्सव की करते हैं। दोस्तों वन महोत्सव सप्ताह भारत का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय वृक्षारोपण उत्सव है। इसे हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। वन महोत्सव का सीधा मतलब है पेड़ों का त्यौहार, जिसका मेन मोटिव लोगों को प्रकृति से जोड़ना और वनों की कटाई को रोककर ज़्यादा से ज़्यादा नए पौधे लगाना है। बात करें इसकी शुरुआत की तो साल 1947 में देश की आज़ादी के बाद भारत में बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को बहुत तेज़ी से काटा जा रहा था। पेड़ों की इस अंधाधुंध कटाई की वजह से ज़मीन का बंजर होना, समय पर बारिश नहीं होना, सूखा और खाने की कमी जैसी समस्याएं देश में होने लगी थी। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए साल 1950 में भारत की तत्कालीन केंद्र खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया और 1950 के पहले सप्ताह में, जुलाई के पहले सप्ताह में दिल्ली में एक विशाल वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया और तभी से हर साल देश भर में 1 जुलाई से 7 जुलाई को एक पूरा सप्ताह एक त्यौहार की तरह मनाया जाने लगा। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि भारत में वन महोत्सव सप्ताह कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तो इस सप्ताह बच्चे अपनी स्कूल कैंपस में छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। इसके अलावा पर्यावरण पर एक्ट, पोस्टर मेकिंग और एसी राइटिंग जैसे प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए जाते हैं। बात करें सरकारी विभागों की तो भारत सरकार और राज्य के वन विभाग द्वारा आम जनता को मुफ्त या फिर बहुत कम दामों पर पौधे बांटे जाते हैं। वन विभाग द्वारा बंजर जमीनों, पहाड़ी इलाकों और जंगलों में जाकर लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर हैशटैग एक पेड़ माँ के नाम और हैशटैग वन महोत्सव जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करते हैं। लोग रील्स, वीडियो और पोस्ट के जरिए अपने दोस्तों

भी पौधे लगाने के लिए अपील करते हैं। आइए बात करते हैं वन महोत्सव सप्ताह के उद्देश्य के बारे में। दोस्तों, इसमें सबसे पहला है प्रदूषण को कम करना। वन महोत्सव का सबसे बड़ा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है, ताकि वे हवा से खतरनाक गैसों को कम किया जा सके और हमें सांस लेने के लिए भरपूर ऑक्सीजन दे सके। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग और तापमान को रोकना। वन महोत्सव के जरिए नए जंगल तैयार किए जाते हैं, जो धरती को ठंडक देते हैं और मौसम के चक्र, जैसे समय पर बारिश होना जैसे फिनोमेना को ठीक रखते हैं। दोस्तों, इसमें अगला लेकिन सबसे ज़रूरी है जंगली जानवरों के घर को बचाना। इस उत्सव का एक मुख्य लक्ष्य वनों का दायरा बढ़ाना भी है, ताकि वन्य जीवों को उनका प्राकृतिक घर और भोजन मिल सके और वो सुरक्षित रह सकें। साथियों, इस तरह हमने जाना वन महोत्सव सप्ताह के बारे में। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों आप सुन रहे थे फिल्म ड्रीम गर्ल से, जिसमें स्वर थे नक्काश अजीज़, जोनिता गांधी और मीट ब्रोस के। गीतकार हैं कुमार और संगीत भी है मीट ब्रोस का। दोस्तों क्या आप जानते हैं आज है वर्ल्ड जूनोसिस डे। आइए पहले तो जानते हैं जूनोसिस होता क्या है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इंसानों में होने वाले सभी संक्रामक रोगों में से लगभग 75% से ज़्यादा बीमारियां जानवरों से इंसानों के बीच में फैलती हैं, जैसे रेबीज़, लाइम रोग, इबोला, सार्स। इसके अलावा ये गिनती WHO के अनुसार 200 से भी ज़्यादा है। ऐसे में फ्रांसीसी

बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट लुई पास्चर ने एक महान खोज की थी। दरअसल 6 जुलाई 1985 को लुई पास्चर ने रेबीज वायरस से संक्रमित एक बच्चे को पहला सफल टीका यानी कि वैक्सीन लगाकर उसकी जान बचाई थी, जो कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली एक जानलेवा बीमारी है। इसी ऐतिहासिक चिकित्सा सफलता की याद में और इंसानों, जानवरों और पर्यावरण के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए ये दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। बात करें इस दिन के उद्देश्य की तो सबसे पहला तो है बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। आम जनता को जूनोटिक बीमारियों जैसे रेबीज, बर्ड फ्लू इत्यादि के खतरे और उनके लक्षणों के बारे में एजुकेट करना। दूसरा है वन हेल्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। इंसानों, जानवरों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक दूसरे से जुड़ा मानकर सभी स्तरों पर मिलकर काम करने के महत्व को समझना और समझाना। तीसरा है बचाव और स्वच्छता सिखाना। जानवरों के संपर्क में आने के बाद सही तरीके से हाथ धोने और पालतू पशुओं को समय समय पर टीकाकरण के आदतों को बढ़ावा देना है। दोस्तों, इसी में अगला है महामारी को रोकना। शुरुआती स्तर पर ही जानवरों में फैलने वाले संक्रमणों की पहचान करना ताकि उन्हें इंसानों में फैलने और बड़ी महामारी बनने से पहले ही रोका जा सके। साथियों, वक्त है अब रोजगार सूचना का। IBPS द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर एवं मैनेजमेंट ट्रेनी के 6715 पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, अभी आपने सुना गीत फिल्म दगाबाज 2 से, जिसमें स्वर थे राहत फ़तेह अली खान और श्रेया घोषाल के। गीतकार हैं समर अनजान और संगीत है साजिद वाजिद का। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं फिन टॉक्सिसिटी के बारे में। आखिर फिन टॉक्सिसिटी क्या है और इससे युवाओं को क्यों बचना चाहिए? एक्चुअली फिन या फिर फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी उसे कहते हैं जब किसी इंसान या उसके परिवार को गंभीर बीमारी जैसे कैंसर या दिल की बीमारी जैसे रोग हो जाते हैं और उसकी इलाज की वजह से भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, यानी कि महंगी दवाओं, अस्पताल के खर्चे और बार बार डॉक्टर के पास जाने की वजह से पेशेंट की सारी सेविंग्स खत्म हो जाती हैं। वो कर्ज के जाल में फंसने लग जाते हैं, जिसे फाइनेंशियल ट्रैप भी कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये बीमारी के शारीरिक दर्द के साथ साथ मिलने वाला वो गहरा आर्थिक और मानसिक दर्द है जो पूरे परिवार के बजट और भविष्य को पूरी तरह तबाह कर देता है। दोस्तों, इस फाइनेंशियल ट्रैप से बचने के लिए युवा ये आसान तरीके अपना सकते हैं, जैसे सही हेल्थ इंश्योरेंस लें। बीमारी के खर्चे से बचने के लिए खुद का एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें। इससे बहुत कम पैसों में आपका टोटल बीमा बढ़कर 20 लाख तक पहुंच जाता है। खासकर युवा वर्ग, आप जितनी जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, आगे चल के वो उतना ही ज़्यादा मददगार होता है। दूसरा है इमरजेंसी फंड बनाए रखना। अचानक आने वाली मुसीबत या फिर बीमारी के लिए अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा हमेशा अलग बचा कर रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसे तुरंत निकाल कर अस्पताल या फिर दवाओं के खर्च में इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, इसमें अगला है क्रिटिकल इलनेस कवर। कैंसर या फिर दिल की बीमारी जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज बहुत लंबा और महंगा होता है। इसके लिए अपनी पॉलिसी के साथ क्रिटिकल इलनेस कवर ज़रूर लें। बीमारी का पता चलते ही बीमा कंपनी आपको एक बड़ा अमाउंट दे देती है, जिससे आप अस्पताल के साथ बाहर का खर्चा आराम से संभाल सकते हैं। वहीं सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल करें। सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं का सही जानकारी होना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आप हो सके तो सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठाएं। साथ ही आप जन औषधि केंद्र से बेहद कम कीमत में दवाइयां ले सकते हैं। इसके अलावा कई राज्य स्तरीय योजनाओं का भी आप फायदा ले सकते हैं। साथियों, सुनेंगे कार्यक्रम का आखिरी गीत, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर एक बार रोजगार सूचना दे दूं। IBPS द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर एवं मैनेजमेंट ट्रेनी के 6715 पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से ग्रेजुएशन का होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आई वक्त हो चला है कार्यक्रम के आखिरी गीत का, जिसमें स्वर हैं अर्को के, गीतकार भी और संगीतकार भी हैं अर्को। आइए सुनते हैं।

दोस्तों, आपने सुना गीत फिल्म बार बार देखो से, जिसमें स्वर, गीतकार और संगीतकार हैं अर्कू प्रावो मुखर्जी। साथियों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना वन महोत्सव सप्ताह के बारे में, वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में और साथ ही बात की फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी की। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। मुलाकात होगी आपसे अगली बार। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त पूजा पांडे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था जी।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
6: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
7: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
5: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
6: आकाशवाणी है ना,
8: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
6: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
5: शाम सुहानी हो,
6: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
5: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
6: सफर में
5: आपके साथ
6: आकाशवाणी।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 5:33 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला नगमा फिल्म मेट्रो से है। इस गीत को गाया है सोहम ने। गीत सैयद कादरी का और संगीत प्रीतम का।

खेले हम जी जान से, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सोहेल सेन और पामेला जैन की स्वर में, संगीत सोहेल सेन का। और अब सुनिए फिल्म अरमान का गीत शंकर महादेवन और अलका याग्निक के स्वर में, गीत जावेद अख्तर का, संगीत शंकर एहसान लाय का।

दूरदर्शन की डीटीएच सर्विस डीडी फ्री डिश में आपका स्वागत है। आपको बेहतरीन तस्वीर और अधिक चैनल्स देने के लिए 1 फरवरी 2016 से हुए हैं कुछ खास बदलाव, जिसके लिए आपको अपने डीडी फ्री डिश को सेटअप बॉक्स में कुछ चेंजेस करने होंगे। सबसे पहले अपने सेटअप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं, फिर इंस्टॉलेशन मेन्यू पे जाएं, उसके बाद स्क्रीन पे दिख रहे टीपी लिस्ट को सेलेक्ट करें, चैनल्स ऐड करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500 और पोलैरिटी वी दबाकर सेव करके सर्च बटन दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को इसी प्रकार सेट करें। तो लीजिए, आपका डीडी फ्री डिश का सेटअप बॉक्स तैयार है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800110510 या मेल कर सकते हैं ddfreedishdth@gmail.com पर। तो जुड़े रहिए दूरदर्शन के साथ और बिना किसी शुल्क के फायदा उठाइए बेहतरीन तस्वीर और पहले से ज्यादा टीवी चैनल्स का।

ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 5:55 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम में क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल का कार्यक्रम आज कल शाम 6:40 पर। सुर्खियों में रात 8:00, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग शाम 6:00, लोक संगीत में जगदीश प्रसाद दीवान को सुनिए शाम 6:30 पर। कृषि जगत में मौसम पूर्व प्याज का लाभ

आबकारी उत्पादन विषय पर डॉक्टर सचिन प्रकाश नागरे की वार्ता शाम 7:21 पर। शास्त्रीय संगीत में ख्याल गायन सुनिए, कलाकार उस्ताद आमिर खान से रात 10 बजे। मन भावन रात 10:30 पर। तो श्रोताओं, ये थे आज के कार्यक्रम और अब सुनिए कल की सभा के कार्यक्रम। आकाशवाणी दिल्ली से सुबह 10:10 पर सुनिए विश्व दर्पण। आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम में जिले की चिट्ठी सुबह 10 बजे। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम दिन में 11 बजे से। सुर्खियों में रात 8 बजे। वंदना में भक्ति संगीत सुनिए सुबह 6:05 पर। चिंतन प्रातः 6:30 पर। आलेख श्री रमेश कुमार क्षत्री का और वाचक स्वर माधवी येंडे का। श्री रामचरित मानस गान प्रातः 6:35 पर। कृषि सामिकी में फल बागों की स्थापना विषय पर जानकारी प्रातः 6:45 पर। गुड मॉर्निंग जबलपुर सुबह 7:20 पर। लोक रसधार में डॉक्टर सिया राम ज्योतिषी को सुनिए सुबह 9 बजे। तबले पर संगत सुरेश कुमार पाठक की। पूर्व प्रसारित रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में रूपक इस्पात संस्कृति और सपनों के शहर जमशेदपुर की नवरंगी पहचान, आलेख शाहिद अनवर का, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी और संयोजन राजेश कुमार राय का। यह आप कार्यक्रम सुन सकते हैं सुबह 9:30 पर। सांध्यकालीन सभा में एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग शाम 6 बजे। बेड़ीलाल अहिरवार को सुनिए लोक संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर। सुगम संगीत शाम 6:45 पर। कलाकार अविदा सिकरवार। कृषि जगत में फलदार वृक्षों का प्रबंधन विषय पर डॉक्टर ऋचा सिंह की वार्ता शाम 7:21 पर। फोन इन कार्यक्रम रात 9:30 पर। प्रस्तुति सावनी राजू की। शास्त्रीय संगीत रात 10 बजे, जिसमें आप सुनेंगे बांसुरी वादन पंडित कैलाश चंद शर्मा से। तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिवकुमारी और रामदुलारी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
0: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
2: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
2: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
2: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
2: 8800440559। और हमारी ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
3: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
3: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
0: जी,
3: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
0: जी,
3: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं।
0: जी,
3: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है इसका नंबर है 8448440632। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे।
0: जी,
3: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है। इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
3: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है,
0: जी,
3: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
0: जी,
3: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
0: जी।
3: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
0: जी,
3: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
0: जी।
3: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है, उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी। और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
3: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
0: जी।
3: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
0: जी
3: विद्यार्थी को
0: संकोच
3: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए
0: जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
3: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
0: जी,
3: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
3: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है
0: जी।
3: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती है। जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
0: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
3: जी, रिजल्ट से
0: जी।
3: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाए, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है। आज के समय में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं।
0: बिल्कुल,
3: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
0: जी।
3: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है
0: जी।
3: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको

0: बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहिए, क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ जी।
0: तो वो गेम जो भी रहें, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी, जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें, तो क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया, जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है, और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल रहे,
0: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं, अगर आपको जानकारी हो तो, जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी।
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार
1: जी,
0: सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है
1: जी,
0: हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, उससे बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो अब डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
1: हाँ।
0: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
1: जी।
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
1: जी।
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है,
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
1: हाँ, होती है।
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
1: प्रयास
0: वो सफल
1: किया?
0: नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए, गलती से भी कुछ सीखा ना,
1: हाँ, होता
0: तो,
1: है।
0: तो इसका मतलब क्या हुआ
1: जी?
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि हैं उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए, विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है, रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
1: थोप
0: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: हाँ, प्रोत्साहित करें,
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के

0: प्रति भी हमें ध्यान रखें और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
1: जी,
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं उनमें भी समय दें और एक जो चार्ट ये जो हम कहें टाइम टेबल
1: जी
0: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं।
0: देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
1: जी,
0: 8448440632 8448440632 ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है जो टेली मानस की है वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 14416। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं
1: जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लोक संगीत में आज सुनिए जगदीश प्रसाद दीवान के गाए कुछ लोकगीत।

अभी आप लोग संगीत के कार्यक्रम में जगदीश प्रसाद दीवान के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:40 हुए हैं। क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल का कार्यक्रम आजकल बस कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।

प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है ड्रग माफिया पर त्रिस्तरीय वार, पहचान, प्रहार और पूर्ण सफाया। आलेख डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी का है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

0: भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना तभी साकार हो सकता है जब देश की युवा शक्ति सुरक्षित, स्वस्थ और उत्पादक बनी रहे। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने अब नशे के खिलाफ लड़ाई को केवल कानून व्यवस्था का विषय न मानकर राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और भविष्य की पीढ़ियों की रक्षा का अभियान बना दिया है। इसी सोच के साथ जारी मादक पदार्थ नियंत्रण विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 ये संकेत देता है कि अब कार्रवाई का लक्ष्य पूरे नार्को इकोसिस्टम को जड़ से खत्म करना है। पिछले कुछ वर्षों में ये साफ हुआ है कि ड्रग्स कारोबार के तार आतंकवाद, हवाला, संगठित अपराध, सीमा पार तस्करी और डिजिटल अपराधों से जुड़ चुके हैं। ऐसे में यदि कार्रवाई केवल छोटे तस्करों तक सीमित रहे तो समस्या का समाधान संभव नहीं है। सरकार ने इसी कमजोरी को पहचानते हुए अब डिटेक्ट, डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय का नया मंत्र दिया है। मोदी सरकार की यह कार्यप्रणाली बताती है कि पहले पूरे नेटवर्क की पहचान होगी, फिर उसकी सप्लाई चेन और वित्तीय तंत्र को तोड़ा जाएगा और अंततः पूरे कार्टेल का स्थायी खात्मा किया जाएगा। इस नई नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अपराधियों के साथ साथ उनके आर्थिक ढांचे को भी निशाना बनाया गया है। वस्तुतः अब केवल मादक पदार्थ जब्त कर लेना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। हवाला नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाले लेन देन और डार्क नेट पर संचालित कारोबार, बैंक खातों तथा अवैध संपत्तियों तक कार्रवाई का दायरा बढ़ाया गया है। आज ड्रग तस्करी का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। ड्रोन के माध्यम से सीमा पार खेप पहुंचाना, समुद्री मार्गों का इस्तेमाल, कंटेनर तस्करी, ऑनलाइन नेटवर्क और डार्क वेब के जरिए अवैध व्यापार जैसी चुनौतियां पारंपरिक पुलिस व्यवस्था से नहीं सुलझ सकती हैं। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम डेटा शेयरिंग, तकनीकी खुफिया तंत्र, अपराध मानचित्रण और आधुनिक निगरानी प्रणाली को विशेष महत्व दिया गया है। इस अभियान में केवल सख्ती नहीं, संवेदनशीलता भी दिखाई देती है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई पूरी तरह से कठोर होगी, किंतु नशे की लत के शिकार युवाओं को अपराधी न मानकर उन्हें पीड़ित मानकर उनके पुनर्वास पर बराबर ध्यान दिया जाएगा। राज्यों की भूमिका को लेकर भी सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई केवल केंद्र सरकार नहीं जीत सकती। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को अधिक संसाधन, एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, मजबूत चार्जशीट और जवाबदेह व्यवस्था पर जोर बताता है कि अब परिणाम आधारित कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि राज्यों में ये व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है तो ड्रग्स नेटवर्क पर लगातार दबाव बनाए रखना संभव होगा। विशेष NDPS अदालतों के गठन पर दिया गया जोर भी स्वागत योग्य है। अक्सर वर्षों तक मुकदमे लंबित रहने से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। यदि जांच के साथ त्वरित सुनवाई और शीघ्र सजा सुनिश्चित होती है तो इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी व्यापक होगा और ड्रग्स कारोबार में शामिल लोगों के लिए कानून का डर बढ़ेगा। सरकार ने सीमावर्ती गांव, बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और संवेदनशील जिलों में तकनीकी निगरानी तथा कम्युनिटी पुलिसिंग का विस्तार किया है। इसके साथ ही अवैध अफीम और अन्य मादक फसलों की खेती के खिलाफ बढ़ती कार्रवाई ये दर्शाती है कि सरकार उत्पादन के स्रोत पर भी समान सख्ती बरत रही है। ड्रग्स के खिलाफ समाज की भागीदारी को अभियान का आधार बनाना भी दूरदर्शी कदम है। माता पिता, शिक्षक, शिक्षण संस्थान, युवा संगठन और सामाजिक संस्थाएं यदि इस लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो नशे की मांग स्वतः घटेगी। इस संबंध में पिछले वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ा है। रिकॉर्ड मात्रा में मादक पदार्थों की जब्ती, लाखों मामलों का पंजीकरण, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां और अवैध खेती का विनाश तथा हजारों करोड़ रुपए मूल्य के ड्रग्स का नष्ट किया जाना ये संकेत देता है कि सरकार ने इस चुनौती को प्राथमिकता दी है। अब 6,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थों के नष्ट करने का नया अभियान इस प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। निसंदेह नशा मुक्त भारत बनाने के लिए कानून, तकनीकी, न्याय व्यवस्था, सामाजिक जागरूकता और जन सहभागिता से लेकर वे तमाम उपाय एक साथ हर मोर्चे पर करने होंगे जो इसे रोकने के लिए आवश्यक है। डिटेक्ट, डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय की नई रणनीति इसी समग्र सोच का परिचायक है। यदि इस रोडमैप को पूरी प्रतिबद्धता और समन्वय के साथ लागू किया गया तो भारत ड्रग्स माफिया के खिलाफ निर्णायक बढ़त हासिल करेगा। तभी हम सही मायनों में विकसित भारत के संकल्प को भी एक मजबूत सामाजिक आधार प्रदान कर पाएंगे। आजकल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल। विषय था ड्रग्स माफिया पर त्रिस्तरीय वार, पहचान, प्रहार और पूर्ण सफाया। आलेख डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है प्रादेशिक समाचार दर्शन का।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं नवनीत चौबे। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है अनूपपुर जिले से, जहां ग्राम पंचायत बदरा में VBG रामजी मिशन का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेश है अनूपपुर से हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा की यह रिपोर्ट।
1: VBG रामजी मिशन का जिला स्तरीय शुभारंभ अनूपपुर जनपद के बदरा ग्राम में हुआ। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति रमेश सिंह ने कहा कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण एक अत्यंत प्रशासनिक एवं दूरदर्शी पहल है। उन्होंने कहा कि आज का दिन देश, प्रदेश, जिले तथा विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए स्वर्णिम अध्याय के रूप में इतिहास में दर्ज होगा। गाँव की समृद्धि ही राष्ट्र के प्रगति का आधार है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण का शुभारंभ किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति रमेश सिंह ग्राम पंचायत बदरा में आयोजित विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन के जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग ग्रामीण भारत के समग्र विकास से होकर गुजरता है। इसके लिए यह मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा।
0: हमारी दूसरी खबर है उमरिया जिले से, जहां साइबर जागरूकता के तहत 24 जून से 8 जुलाई तक सेफ क्लिक 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आम नागरिकों को सुरक्षित वेबसाइट पर क्लिक करने, मोबाइल OTP, UPI पिन आदि किसी दूसरे व्यक्ति से साझा नहीं करने की सलाह दी जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे उमरिया संवाददाता अरुण कुमार त्रिपाठी।
2: उमरिया जिले में पुलिस अधीक्षक विजय भागवानी के निर्देशन में साइबर जागरूकता के तहत सेफ क्लिक चलाया जा रहा है। अभियान का शुभारंभ 24 जून 2026 से किया गया है, जो 8 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान के तहत आम नागरिकों को सुरक्षित वेबसाइट पर क्लिक करने, मोबाइल OTP, UPI पिन आदि किसी दूसरे व्यक्ति से साझा नहीं करने की सलाह दी जा रही है। अभियान में पुलिस अधीक्षक से लेकर आरक्षक तक हिस्सा ले रहे हैं। नागरिकों को साइबर ठगी से बचाने के लिए जिले भर के स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक जगहों पर पुलिस लोगों को जागरूक करने की सलाह दे रही है। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट या किसी भी तरह के फ्रॉड होने की संभावना पर नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करने की सलाह दी जा रही है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं उमरिया के SDOP BL परस्ती।
3: मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सेफ क्लिक साइबर जागरूकता का कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उमरिया पुलिस के द्वारा भी लोगों को लगातार साइबर जागरूकता के प्रति, साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वाकई में आज के डिजिटल युग में साइबर अपराधी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सतर्क रहे, जागरूक रहे। कभी भी यदि कोई अनजान व्यक्ति आपसे ATM डिटेल, खाता डिटेल, UPI पिन या आपकी निजी जानकारी मांगता है, तो बिल्कुल कभी उसके साथ शेयर न करें, आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं।
2: समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं अरुण कुमार त्रिपाठी।
0: हमारी अगली खबर है सीधी से, जहां एक बगिया माँ के नाम अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सीधी से हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्र।
4: सीधी जिले में मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल पर संचालित एक बगिया माँ के नाम अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन सीधी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। अभियान के तहत जिले की सभी जनपद पंचायतों में स्व सहायता समूहों की महिलाओं की निजी भूमि पर मनरेगा के माध्यम से फलदार पौधों का रोपण कराया जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में महिलाओं की आय बढ़ेगी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। जिला पंचायत सीधी के CEO शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया है कि जिले में 500 परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रत्येक परियोजनाओं में लगभग 100 पौधे लगाने के मान से कुल 50,000 पौधे के रोपण का लक्ष्य तय किया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्य करते हुए 520 परियोजनाओं की स्वीकृति की है, जिनके लिए लगभग 9,48,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इन स्वीकृत परियोजनाओं में अब तक 411 स्थलों पर फेंसिंग और पौधारोपण का कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष परियोजनाओं में फेंसिंग का कार्य तेजी से जारी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से

0: पौधों के बीच में हरी सब्जियां, मूंग इत्यादि की खेती की जा रही है, जिससे उन्हें गर्मियों के इस मौसम में नगद कमाई भी हो रही है। स्व सहायता समूह से जुड़ी दीदियों के खेत में योजना अंतर्गत समस्त कार्य, जो है जमीन का चिन्हांकन, हितग्राही और संबंधित परिवार की जानकारी सीप्री ऐप के माध्यम से कृषि सखियों द्वारा दी जा रही है। माँ की बगिया योजना अंतर्गत लगभग एक एक एकड़ भूमि पर फल उद्यान के पौधे रोपित किए गए हैं, जिसमें अमरूद, आम, नींबू, कटहल के पौधे दीदियों द्वारा लगाए गए तथा ये पौधे अब अच्छे बढ़ने लगे हैं। साथ ही जिन हितग्राहियों द्वारा पौधों की नियमित रूप से देखभाल की जा रही है, योजना के अंतर्गत हितग्राही द्वारा माँ की बगिया में पौध के बीच में खाली जगह पर सब्जी की खेती भी की जा रही है, जिसमें समूह की दीदी द्वारा ककड़ी, भिंडी, लौकी, कद्दू इत्यादि की खेती की जा रही है तथा सब्जी बेचकर लगभग अतिरिक्त आय अर्जित की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए श्योपुर से अश्विनी कुमार बालोटिया।
1: हमारी अगली खबर है शहडोल जिले से, जहां धान उत्पादन क्षमता प्रदेश की औसत उत्पादन क्षमता से अधिक है। जिले में इस खरीफ सीजन में धान का उत्पादन लक्ष्य बढ़ाया गया है। पेश है शहडोल से हमारे संवाददाता अरविंद पांडे की यह रिपोर्ट।
2: शहडोल जिले की धान उत्पादन क्षमता 4058 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। फिलहाल मध्य प्रदेश की औसत उत्पादन क्षमता 3551 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। वहीं राष्ट्रीय औसत 2825 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उन्नत बीज, सिंचाई सुविधा और किसानों के प्रशिक्षण से यह संभव हुआ है। कृषि विभाग ने खरीफ 2026 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। जिले में इस बार 673,729 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान रखा गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 1787 टन अधिक है। मानसून की सामान्य वर्षा और कृषि की आधुनिक तकनीक के सहारे यह लक्ष्य हासिल करने की तैयारी है। खरीफ की मुख्य फसल धान का उत्पादन लक्ष्य 582,323 मीट्रिक टन रखा गया है। बीते साल यह लक्ष्य 578,000 मीट्रिक टन था। इस सीजन जिले में कोदो, कुटकी, अरहर और तिल की पैदावार बढ़ने की संभावना है। सरकार द्वारा मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ पोषण सुरक्षा भी बेहतर होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे।
1: अब हम रुख करते हैं आगरमालवा जिले की तरफ, जहां सोयाबीन फसल की बुवाई शुरू हो गई है। इस बार कृषि विभाग बदलते मौसम के अनुरूप खेती की तकनीक बदलने पर जोर दे रहा है। किसानों को पारंपरिक समतल बुआई छोड़कर रेज्ड बेड, ब्रॉड बेड फरो और रिज एंड फरो जैसी वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाने की सलाह दी जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता महेश शर्मा।
3: खरीफ सीजन 2026 के तहत सोयाबीन फसल की बुआई आगरमालवा जिले में भी शुरू हो गई है। इस बार कृषि विभाग बदलते मौसम के अनुरूप खेती की तकनीक बदलने पर जोर दे रहा है। किसानों को पारंपरिक समतल बुआई छोड़कर रेज्ड बेड, ऊंची क्यारी, ब्रॉड बेड फरो BBF और रिज एंड फरो जैसी वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाने की सलाह दी जा रही है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग की वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी किरण ठाकुर।
4: जब हम बोने की विधि या अन्य तकनीकों के बारे में प्लानिंग करते हैं, तो इस बार बुआई के लिए प्लानिंग जो है, अगर BBF मेथड से करें बुआई, तो ये होता है ब्रॉड बेड एंड फरो, जिसमें क्यारियां चौड़ी होती हैं और क्यारियों के साथ नाली बनी हुई होती है आउट साइड में। तो जब ये मेथड से अगर अपन बुआई करते हैं, तो इसके तीन मुख्यतः फायदे हो जाएंगे। पहला है, अतिवृष्टि से बचाव हो जाएगा। जब पानी अधिक होता है, खेत से पानी बाहर निकालना होता है, तो जो आउट साइड की नालियां होती हैं वो बहुत मददगार होती हैं, पौधे गलने से बच जाते हैं। और जैसे कि सूखा पड़ता है, अगर कभी तो सूखा पड़ेगा, तो नालियों से सिंचाई देने के लिए भी यह मेथड उपयुक्त रहेगी।
3: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है शिवपुरी जिले से, जहां 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक और विभाग के अधिकारी गांव-गांव पहुंचे और किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं शिवपुरी से हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता।
5: केंद्र सरकार की पहल पर शिवपुरी जिले में कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक और विभाग के अधिकारी गांव-गांव पहुंचे और किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी। अभियान के दौरान आयोजित जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किसानों को खरीफ सीजन से पहले भूमि की तैयारी, उन्नत बीज का चयन, संतुलित उर्वरक प्रबंधन और जल संरक्षण की तकनीकें बताई गईं। वैज्ञानिकों ने कीटनाशकों के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग पर विशेष जोर दिया। किसानों को समझाया गया कि रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी की सेहत खराब होती है और मानव स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर MK भार्गव ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य उत्पादन लागत घटाकर किसानों की आय बढ़ाना और पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देना रहा। किसानों को जैविक खाद, बर्मी कंपोस्ट और फसल चक्र अपनाने

0: के लिए प्रेरित किया गया। अभियान में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता।
1: हमारी अगली खबर है शाजापुर से, जहां साइबर अपराधों की रोकथाम और डिजिटल सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सेफ क्लिक 2.0 अभियान संचालित किया जा रहा है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं शाजापुर से हमारे संवाददाता अजीत पाराशर।
2: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर शाजापुर जिले में भी साइबर अपराधों और डिजिटल सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सेल्फ क्लिक 2.0 अभियान 1 जुलाई से प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जो 15 जुलाई तक लगातार चलेगा। 15 दिवसीय इस विशेष जन जागरूकता अभियान की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत ने बताया कि
3: मार्केट में जो भी जो स्थान है जहां पे पब्लिक को हमको बार बार हम कह रहे हैं कि साइबर के संबंध में कोई भी आपके साथ में कोई भी घटना होती है तो उसमें 1930 नंबर पर डायल करके अपने रजिस्टर करें। कई प्रकार के जो साइबर ठगी होती है, ओटीपी से भी होती है, कोई अनजानी लिंक आती है, या कई बार फेसबुक वीडियो कॉल्स आते हैं, या कई बार फर्जी लोन ले लिए जाते हैं, कई प्रकार की तरह तरह के प्रकार की, कई बार पेंशन से संबंधित भी आती है, और जो सरकारी कई बार योजनाएं आती हैं तो फर्जी लिंक उस पर बन जाती हैं, इसी प्रकार की भी ठगी होती है, तो उस पर आप तत्काल आप 1930 पे लगाएं और इन सब चीजों से आप लोग बचें।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजीत पाराशर।
1: अब हम चलते हैं सिंगरौली जिले की तरफ, जहां अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर सिंगरौली जिले ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सिंगरौली से हमारे संवाददाता अमित द्विवेदी।
4: अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026 के अवसर पर नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली ने मध्य प्रदेश शासन के एसएमई विभाग एवं फिक्की द्वारा भोपाल में आयोजित उद्यमी मध्य प्रदेश 2026 कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित वेंडर डेवलपमेंट मीट में एनसीएल सिंगरौली की ओर से विपुल कुमार राय सहायक प्रबंधक सामग्री प्रबंधक ने भाग लिया। उन्होंने एसएमई विक्रेताओं एवं उद्यमियों को एनसीएल की निविदाओं में अधिकाधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया है। इस दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वामित्व वाले उद्योगों तथा महिला उद्यमियों को सहभागिता निभाने का विशेष बल दिया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सिंगरौली से अमित द्विवेदी।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी अंतिम खबर है विदिशा जिले से, जहां विदिशा जिले में जिला प्रशासन ने वर्षा काल के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे विदिशा संवाददाता वेद प्रकाश शर्मा।
5: विदिशा जिले में जिला प्रशासन ने वर्षा काल के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु व्यापक इंतजाम किए हैं। निचली बस्तियों सहित जल भराव क्षेत्रों में सतत निगरानी के प्रबंध और बाढ़ राहत शिविरों के लिए सुरक्षित स्थानों का चयन कर लिया है। उधर स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपस्थिति के साथ आवश्यक औषधियों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया है। जिला होमगार्ड विभाग द्वारा पूर्व से चयनित नदियों के घाटों पर मोटर बोट और गोताखोरों की रिहर्सल करते हुए किसी भी प्रकार की जनहानि रोकने की मॉक ड्रिल पूरी कर ली है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम की 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस के साथ तीसरे भारतीय ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहु माध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली में भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषीय व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषीय व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंधन संस्थाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। सरकार ने कहा कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ सकता है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said, "The thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India." He said the government is celebrating the 125th birth anniversary of Dr. Shyama Prasad Mukherjee with a two-year national celebration. The Prime Minister said this celebration began on July 6th of last year and will continue until July 6th of next year.
4: Aaj desh ki dharti Pashchim Bengal ki

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस की यात्री
3: तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
4: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
4: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
3: फ्री वाईफाई है ना?
4: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भव्य स्वागत। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चा और आपसी साझेदारी में हुई प्रगति की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के सतगड़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी। कहा बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी मध्य प्रदेश में कर रहे निवेश। ज्ञान भारतम ऐप पर दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों को सहेजने और संरक्षित करने में देश में प्रथम मध्य प्रदेश। और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय, आज 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने 3 देशों के हिंद प्रशांत दौरे की शुरुआत की। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और भारतीय प्रवासी समुदाय ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया, जिसमें पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थीं। यह प्रधानमंत्री श्री मोदी की इंडोनेशिया की चौथी यात्रा है और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किए जाने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पेश है एक रिपोर्ट।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
7: अपनी यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे। वहीं तीसरे और अंतिम चरण में श्री मोदी 10 जुलाई को न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगड़ी में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। राष्ट्रवादी चिंतक और भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात दी। लगभग 173 एकड़ में विकसित होने वाला यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का नया आधार माना जा रहा है। इसमें आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, IT एवं AI आधारित सुविधाएं और लॉजिस्टिक तथा वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। ये परियोजना वर्क लिव ग्रो मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें उच्च मूल्य विनिर्माण, गारमेंट, टॉयज, IT और AI से जुड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश कर रहे हैं।
9: विश्व के बड़े बड़े देश अब हमारे साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जापान, कोरिया, ऐसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे अपने राज्य में लगा रहे थे। ये है हमारे काम करने का तरीका। छोटे मझोले उद्योग जो काम करने आ रहे हैं, उनका अगर कोई देनदारी है तो ये हमने गए महीने तक की देनदारी पूरी कर दी।
7: मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मौजूदगी में आज भोपाल में कुवैत की अग्रणी मत्स्य कंपनी और कामदार्स केयर इंदौर के बीच 7,430 करोड़ रुपए के निवेश और बायबैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। ये एग्रीमेंट मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 के अंतर्गत हुआ है। इस करार के तहत कुवैत की कंपनी इंदिरा सागर, बर्गी, बाणसागर और बारना जलाशय में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी, जिससे 35,000 रोजगार सृजित होंगे। इस करार से प्रदेश के लगभग 6,000 करोड़ रुपए के मत्स्य निर्यात का अनुमान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर में संभाग स्तरीय उन्नत कृषक संवाद सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने किसानों से संवाद कर उनके प्राकृतिक खेती से संबंधित अनुभव भी सुने। मुख्यमंत्री ने यहां से हाईटेक नर्सरी और फ्लोरिकल्चर गार्डन का भूमि पूजन भी किया। इस नर्सरी और फ्लोरिकल्चर गार्डन के प्रथम चरण के कार्य के लिए सरकार द्वारा 13 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
7: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भारत सरकार की डिजिटल पहल ज्ञान भारतम ऐप के अनुसार दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों की सूचना दर्ज करने और उनके संरक्षण के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। ज्ञान भारतम ऐप के माध्यम से 3 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश ने अब तक कुल 34,45,439 पांडुलिपियों के पन्नों का पंजीकरण किया है। 12,13,127 पांडुलिपियों का ज्ञान भारतम द्वारा सफलतापूर्वक सत्यापन हुआ है। शेष सत्यापन की प्रक्रिया में है, जिनका चरणबद्ध तरीके से परीक्षण एवं प्रमाणीकरण किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव संस्कृति धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग शिव शेखर शुक्ला ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि आज भी विश्वभर के मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों और संग्रहालयों में संरक्षित भारतीय पांडुलिपियां हमारी समृद्ध ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर हैं। अब रुख करते हैं मानसून का। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। आज प्रदेश के 23 जिलों में अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रतलाम, उज्जैन, धार, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, गुना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और पन्ना में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुरी सहित प्रदेश के बाकी जिलों में भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मंडला शहर में आज शाम 4 बजे से शुरू हुई बारिश लगभग 2 घंटे तक लगातार होती रही। वहीं छिंदवाड़ा में बीते 24 घंटों के दौरान 24.2 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। इंदौर जिले में इस सत्र में अब तक 314.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा UG 2026 प्रवेश परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा 7 जुलाई यानी कल तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाते विवरण की पुष्टि की है उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत कल नीमच जिले के हरकिया खाल स्थित श्री बालाजी मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। छतरपुर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के स्थापना दिवस पर वन स्टॉप सेंटर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। शहडोल के सरहट की आजीविका हल्दी प्रसंस्करण इकाई से जुड़े 135 किसानों ने रिकॉर्ड 130 मीट्रिक टन हल्दी का उत्पादन किया है। बैतूल विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 8 जुलाई को टैगोर वार्ड के आंगनवाड़ी केंद्र में विशेष शिविर में बिजली संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। सीहोर जिले के आष्टा पचोर शुजालपुर मार्ग पर एक कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 यात्री घायल हो गए हैं। खंडवा में 7 दिवसीय सिविल डिफेंस स्वयंसेवक प्रशिक्षण का आज शुभारंभ किया गया। कटनी पुलिस द्वारा सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। अशोकनगर पुलिस ने 88,000 रुपए के नकली नोटों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शौर्य स्मारक भोपाल में कल आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भव्य स्वागत। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चा और आपसी साझेदारी में हुई प्रगति की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के सतगढ़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी। कहा, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी मध्य प्रदेश में कर रहे निवेश। ज्ञान भारतम ऐप पर दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों को सहेजने और संरक्षित करने में देश में प्रथम मध्य प्रदेश। और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय, आज 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है
8: मीडियम वेव पर। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि जगत।

कार्यक्रम सुनन बारे सबै किसान भैया भोजी हरन ख तोलसा भिन्नाखी राम राम। हाँ तो भैया बदरा बरस गए, ओ भुंटा खावे के लाने आज दिन उन्हें ऐसी जिद करी कि का बतइए, कहे खेत चलो उते भून के खा है। सो हमने कही आज नहीं कोनो दिन और चल हैं, आज हमें अपनी सीता खो टीका लगवावे जाने हैं। सो दिनू ने कही पिछली दफा तो लगवाओ, तो हर टाइम थोड़ी लगवाओ। अरे हमने कही काय नहीं लगवाने पड़त याय, हम और एक गलती तो करत हैं, हम आए थे मुतके पशु रहे थे, बस हम उनकी सेवाएं ले थे पे उनको उत्तो ध्यान नहीं धर रखा त्याय। अब आप के हो जे सीता को आए, भैया हम बता रहे हैं हमाए थे गैया है एक ठंजा, उको नाम सीता। अब सीता के हम टेम टेम पे जरूर टीका लगवाते हैं। सो दिन्नू कहन लगो हमाए थे भी तो हैं मवेशी, अब कछु ठीक से खात पियत नहीं है एक ठंजा है। सो हमने कही कि दद्दा ध्यान नहीं देती आए क्या, कहीं हाँ हम भी नहीं दे पाते हैं, दद्दा भी नहीं दे पाते हैं। अरे हमने कही जे बात तो अच्छी नहीं है, चलो हम सब मिल के दे हैं। सो हम निकल गए, हमने कही तुम्हारे मवेशी आए चाहे हमारे मवेशी आए, ध्यान तो हम और रख सकत हैं। सो हम और निकल गए। सो सुन्नो ने टेर लगाई, काय बिन्ना कितने जा रही हो, हमें सोई लेत चलो। सो दिन्नू ने कही हमारे ते चल रही हैं चलो। सुबह दौड़ी दौड़ी आई, अब आई तो संगे उको कुत्ता पछे आ गओ। अरे हमने कही सुनो अपने कुत्ता को दूर धारो। सो उन्हें कही काय, हमने कही जाई तो तुम और समझती नहीं आओ कि अगर कोनो भी संक्रमण उहे लग गओ और उसे तुम्हें लग गओ तो। सो कही हाँ जे तो ऐसे ही हमारे संगे रहते हैं फिरत रहते हैं, हमारी बिलैया सोई ऐसी रहत है, हमने कही जे ही तो गलती करत है अपन और। सो उन्हें तो उहे घर जाके छाड़े आओ, अब बातों चली आई हमारे संगे संगे। अब हम और निकल गए, अब हम और गए। सो हमने कही कि देखो तुम्हारे मवेशी हैं कछु तो खुले में बंधे हैं, अब उनके लगा पानी नहीं है ढंग को। सो उन्हें कही हाँ अजय देखो जे मक्खी भिन भिन आ रही हैं, जे काय की भिन भिन आ रही हैं। सो उन्हें कही हाँ अब भाई हम ठीक करे थे, हमने कही अब भाई की बात नहीं है, देखो हमारे थे जितने भी हैं मवेशी हमें उनको ख्याल रखना रखने हैं और ऐसो ख्याल रखने हैं कि उनसे कोनो भी संक्रमण हम तक ना पहुँचे। सो दद्दा कहन लगे बिन्ना आजकल हमारी जब बचिया है कछु खात पियत नहीं आ, हमने भी कक्का के कही कक्का दूध दे टेम, सो उत्तो ध्यान अपन और नहीं रखत आए, अब बीमार हो गई है सो हमें उखो इलाज तो करवाने हैं। सो जे देखो जब बीमार है वह अलग बांधो, नहीं तो संक्रमण आपके आजे हैं और कोनो और अपने इतने मवेशी हैं उनके इतने सोई आजे हैं। और देखो जे जे इनकी नाद नहीं बदली आपने, कितनी पुरानी हो गई है, जे का पानी कितो दिनन को धरो है, जे का है ताजो पानी धरो स्वच्छ पानी रखो। अब उत्ते में दिन्नू ने झट्टी से साफ सफाई पशुशाला में कर दई, सुन्नो ने सोई झट्टी से नीम को धुआं कर दो मक्खियन के काजे। अब दद्दा झट्टी से बीमार हती उनकी श्यामा, सुबह ले गए उते दिखावे के लाने। सो दद्दा ने उम्दा बात कही कि आज बिन्ना हरे आई हती सो हम आ गए, सो हमें भी जानू हतो, सो हम अपनी सीता के लेके गए, अब इलाज करावे के लाने तो दद्दा ले गए, हमें तो टीकाकरण करवाने हतो। सो उते पशु चिकित्सक भैया मिले, सो उनने कही कक्का श्यामा गाय घे वैसे ही धर राखो जैसे अपन ओरे

अपनों ध्यान धर राखत हैं, और जे नहीं हमें उनसे बचाव करने हैं, बचा के ही अपन कोनो काम कर सकत हैं। सो दद्दा के तो बिल्कुल दिमाग आ गओ, उन्हें ख्याल आ गई और डॉक्टर भैया ने बड़ी उम्दा बात बताई कि जूनोसिस बेसंक्रमण बीमारियां आए जोन जानवरों से बैक्टीरिया वायरस परजीवी इंसानों में या इंसानों से जानवर में फैलता है। सो कक्का के तो समझ में आ गई, हमें भी समझ में आ गई। हमने कही हो कि हम और कोनो भी काम करें, हमारे ते कोनो भी जानवर हैं, पशु हैं, अपने ते अपन और कुत्ता तो पालते ही हैं, बिलैया भी पाल लेते हैं, सो अपन के उन्हें दूर रखने हैं, कोनो भी काम करने हैं सो दूरी बना के अपन के काम करने हैं। और डॉक्टर भैया ने जो उपचार बताओ है वो उपचार को भी हमें ध्यान धर रखने हैं। उनने बड़ी उम्दा बात बताई कि हमें अपने पशुओं के स्वास्थ्य के लाने अपन के जागरूक रहने हैं, टेम टेम पे उनको टीकाकरण कराने हैं, स्वच्छता बनाए रखने हैं, बीमार अगर कोनो भी पशु हो रहे हैं सो उनको इलाज कराओ, तुरंत ही कराओ, उनमें देर ना करो। कैसे कि वे कोनो भी संक्रमण अगर अपने ते ढोर हैं पशु हैं सो उसे अपन खे भी पहुंच सकत है। सो किसान भैया हरे सब तो समझ गए, और हम भी समझ गए, और हमारे दद्दा भी समझ गए, सब समझ गए, और हमारे जोन भी पशु हैं, जोन भी अपने कुत्ता बिलैया अपन ने पाल रखे हैं सो अपन उनको उम्दा से ध्यान धर रखें, जे हमारी जिम्मेवारी आए। और भैया डॉक्टर भैया ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपने पशुओं के प्रति दया को भाव जरूर रखने हैं, और स्वस्थ रहें वे और स्वच्छता की जिम्मेदारी हमें लेने हैं, और स्वास्थ्य की रक्षा भी करने हैं, पशु रोगों को रोकथाम से उनको जीवन अपन बचा सकें, और बरसात में मुझ को अपन के ध्यान धर रखने हैं। और भुनसरा से तो हम गए हते आज मंदिर, बरसात होने लगी सो हम तो चले आए, और हम जिज्जी भोजी हरण से कह रहे हैं कि बिन्ना हरो जाओ, आज तो सोमवार या शंकर जी को दिन आया है, दिया तो ले सियाओ। और मलखानपुरी भैया से हम आपको सुनवा रहे हैं जो लोकगीत।

हाँ तो भैया अपन ने बड़ो उम्दा मलखानपुरी भैया से जो लोकगीत तो सुन लो और सुन लो। और बड़े शंकर जी की जिज्जी भौजी हरे बड़ी पुजारी हैं, भुनसरा से ले के अपनों काम धाम निपटा के मंदिर भी हो आती हैं, दिया भी लेस लेती हैं और काम धाम भी निपटा लेती हैं। अब काम धाम की बात तो ऐसी कि देखो

0: अपनी चिंकी दिनू जे दोई अपने मवेशियन को ध्यान तो धरत हैं और उम्दा से आज गौशाला की साफ सफाई भी कर लई। और चिंकी ने जे भी कही कि अपने कुत्ता बिलैया हैं, हम उनसे दूरी बना के धर रखे हैं। सो हमने कही हाँ बिन्ना, जे तो बहुत अच्छी बात है। फिर सबने दद्दा के पास बैठ के भुंटा भूंजे और मज़े से खाए। अब भूंज के चिंकी ने हमें तो दे दें। हमने कही हम तो कछु धर लेते, कछु खा लेते हैं, कैसे कि अब स्कूल जाने हैं चिंकी के। सो बिन्ना कहने लगी कि अब बस कारे हो जे है, जल्दी जल्दी खा लो। हमने कही हाओ खा लेते हैं, भुंटा हमने खाए। सो दिन्नू ने हमें खूब सारी प्याज दे दई, कही ई की भजिया कल बना के लइयो, सो अपन और मज़े से खाएँ। सो हमने भी धर लई। हमने कही हाओ पिछली दफ़ा हमारी प्याज हती बस सड़ गल गई हती, और उम्दा जे प्याज है अब ई बेरा हमने नई प्याज लगा दई है पहले से, कैसे कि ई बेरा हमें कछु दिक्कत ना हो है। सो हमने तो मज़े से धर लई, थैला हमने मंगाओ, हमने कही लाओ हम वही में डाल लेते। हमने डाले और मज़े से चले आए। अब भैया आन लगे, सो अब गए तो स्कूले हते पे। अब हम बताइए कि अपने ते किसान भैया हरन से हम और बतकाव कर रहे हैं कि भैया एक काम की बात हम बता रहे हैं कि अपने ते प्याज अगर नैया सड़ गई है, सो कोनो बात नैया, हमारी भी सड़ गई हती और अब हमने उम्दा लगा ली है। अब आप केहो बिन्ना कैसे लगा ली है? हम भैया कह रहे हैं कि आप पूरे भी लगा सकत हो, मौसम पूर्व प्याज की खेती आप पूरे भी कर सकत हो और इमें मुद के लाभ भी हैं और उम्दा आए हुए और दोगुनी चौगुनी अपनी जो तरक्की हुए उनकी बातें ही कछु और है और रोजगार भी अपनों उम्दा हुई है। सो चलो जानिया थे मौसम पूर्व प्याज का लाभकारी उत्पादन जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सचिन प्रकाश नागरे भैया और इनसे बतकाव कर रहे हैं अपने विपिन यादव भैया।
1: किसान भाई बहनों राम राम। अगर हमारी खेती में लाभ पे लाभ मिल जाए तो क्या कहना है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो प्याज है यदि आप उसको समय से पहले उगा लें और बाजार में ले आएं तो आपको अतिरिक्त लाभ मिलता है। इसी विषय पर आज हम मार्गदर्शन लेंगे डॉक्टर सचिन प्रकाश नागरे जी से जो कि कृषि महाविद्यालय जबलपुर से हमारे बीच में आए हुए हैं। सचिन जी इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: राम राम सर और किसान भाइयों को भी राम राम।
1: सचिन जी ये बताएं जो आज हम बात करने वाले हैं कि समय के पहले ही यदि प्याज उगा ली जाए, यानी हमारे किसान बहनों भाइयों की भाषा में इसको आप कैसे समझाओगे?
2: बिल्कुल सर, खरीफ में अगर अपन प्याज को बुवाई करें तो वो बुवाई अगर अक्टूबर और दिसंबर नवंबर के पहले आती है उस दौरान क्या होता है, जो रबी में निकली हुई प्याज होती है उसकी जो स्टोरेबिलिटी है वो खत्म होती है और वो खराब होने लगती है और मार्केट में उसकी कमी महसूस होती है। तो उस टाइम में जब अपनी खरीफ की फसल आती है 2 से 3 गुना आय के रूप में बढ़ा सकते हैं। इसको केवल 100 दिन की फसल खरीफ में होती है।
1: तो इस समय लेकिन आप खरीफ की बात कर रहे हैं तो मानसून के कारण क्या प्याज खराब नहीं हो सकता?
2: बिल्कुल हो सकती है सर
1: जी,
2: क्योंकि मानसून के दौरान में बारिश ज़्यादा होने से प्याज में बहुत सारी दिक्कतें आती है। अपने सड़न का जिसको अपन नर्सरी के टाइम में डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं, रेड रॉड बोलते हैं, इन जैसे चीज़ों की दिक्कतें आती है
1: जी जी,
2: लेकिन उसका भी अपन निवारण कर सकते हैं अगर अच्छे तकनीक से उसको उगाया जाए तो।
1: खरीफ प्याज और रवि प्याज दोनों में अंतर क्या है?
2: जैसे कि सर खरीफ प्याज जो होती है
1: जी,
2: ये आप ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हो, और रबी प्याज जो होती है ये 5-6 महीने के लिए या फिर अपन साल भर के लिए उपयोग करने के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन खरीफ प्याज आपको जल्दी से बिकनी पड़ती है। खरीफ प्याज जो होती है उसका जो छिलका होता है वो थोड़ा सा पतला होता है रबी की तुलना में, रबी की प्याज का छिलका जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है।
1: खरीफ प्याज की उन्नत किस्में कौन कौन सी है जो हमारे क्षेत्र में उगाई जा सकती है?
2: एग्रीफॉन डार्क रेड करके एक किस्म आती है
1: जी,
2: ये सबसे लोकप्रिय किस्म है जो कि गहरे लाल कलर में होती है और मध्यम आकार के उसके बल्ब यानी उसके प्याज होते हैं। और एक दूसरी एक वेराइटी है जिसको नासिक रेड से अपन कहते हैं, वो N53 है, ये बहुत तेजी से बढ़ती है और खरीफ के प्रतिकूल मौसम के लिए सहनशील है, जैसे कि एकदम से ड्राई होना या फिर एकदम से ज्यादा बारिश होना। इसके अलावा भीमा सुपर, भीमा रेड, ये अधिक उपज के लिए और अधिक नमी में ससेप्टिबल मतलब वो उसको नमी ज्यादा रहे तो एकदम से खराब नहीं होती है, उसके लिए यूज करते हैं। अगर किस्म लगाते टाइम में अपन गलत कोई वैरायटी लगाते हैं तो वो आपको

0: लाभ कम देती है।
1: अब बात करते हैं नर्सरी की तैयारी की।
0: नर्सरी में तो सबसे पहले तो अपन जो किस्म लगा रहे हैं वो कहाँ से और सर्टिफाइड सीड से लिए है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। अब नर्सरी के टाइम में अपन अगर एक एकड़ की बात करें तो कम से कम 3 से 4 किलो सीड एक एकड़ के लिए आपको नर्सरी बनानी पड़ती है। इस नर्सरी को थोड़ा सा ऊपर ऊंचाई में चौड़ाई कैरिया बना के उसमें बीज उपचार करके उसमें लगाना चाहिए। बीज उपचार आपका फुफ्फुंदनाशक माइकोराइजा से करना चाहिए
1: जी,
0: और 8 से 10 दिन में इसके बीज उगने लग जाते हैं
1: जी।
0: लेकिन 10 से 15 सेंटीमीटर होने में इसको 45 से 50 दिन लगते खरीफ के टाइम में
1: जी। नर्सरी की तैयारी तो हो गई, खेत की तैयारी करते समय भी कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होगी, वो कौन सी है?
0: इसमें मिट्टी का चयन बहुत जरूरी है। अगर चिपचिपी मिट्टी या फिर बहुत ज्यादा पानी भरने वाली या जल संवर्धन वाली मिट्टी होती है जो कि बहुत ज्यादा पानी को पकड़ के रखती है या जल को पकड़ के रखती है, ऐसे मिट्टी का चयन ना करें। थोड़ी भुरभुरी और जल्दी से पानी का निकस होने वाली मिट्टी होनी चाहिए। इसके साथ कैरिया बनाते हैं और उसके बाजू में नाली बनाते हैं और हर एक प्लांट के बीच में 10 सेंटीमीटर के आसपास का गैप रखते हैं। अगर कहीं पानी भरने या फिर जल्दी से निकस नहीं होता है तो उसके लिए जो बाउंड्री है या फिर जो खेत के साइड है उसमें थोड़ी चौड़ी नाली और गहराई की नाली बना के अपन उसका निकास व्यवस्थित कर सकते हैं।
1: मान लीजिए हमने नर्सरी में पौध उगा ली और उसको खेत में ले जाना है, उस समय आपका क्या मार्गदर्शन होगा?
0: जो रोपाई है, जो अब 45 या 50 55 दिन में आप रोप को निकालते हैं तो उसके ऊपर का पार्ट जो होता है 10 सेंटीमीटर से ज्यादा वाला वो काट के लगाना चाहिए ताकि उसमें जो बल्ब है, जो प्याज है, नीचे का कंद है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन जब रोपाई के पहले आप उसकी जड़े फुफ्फुंदनाशक एजोलोस्पिरिलम या फिर माइकोराइजा इससे भी ट्रीट कर सकते हैं, जो उसके जड़े बस डिप करके उसको लगाना चाहिए।
1: मतलब जड़ों को डुबा दें 10-15 मिनट, उसके बाद लगाएं।
0: हाँ, कतार से कतार का डिस्टेंस जो होता है प्याज को लगाने में वो 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए और जो पौध टू पौध जो डिस्टेंस है या फिर जो अंतर है वो 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर ज्यादा घना प्याज बोया जाता है तो उसमें जो बल्ब है या फिर जो कंद है वो छोटे साइज के होते हैं।
1: जब बीच में अंतराल रहता है तो हम सस्य क्रियाएं जैसे कि खाद देना, उर्वरक देना, निदाई गुड़ाई अच्छे से कर सकते हैं। खाद की बात से याद आया, इसमें पोषण कितना देना होगा?
0: हमेशा रासायनिक उर्वरकों पे ना जाए, उसके साथ आप इंटीग्रेटेड जिसको हम बोलते हैं एकीकृत पोषण तत्व का प्रबंधन करना चाहिए
1: जी।
0: जैसे कि आप एक एकड़ में 10 टन तक गोबर खाद डालिए जो कि अच्छे से सड़ी होनी चाहिए। उसके साथ फिर आप एनपीके मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो कि आपको यूरिया सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटेशियम से मिलता है तो वो मिला के आप एक साथ देना ज्यादा सही रहता है। उससे आपके जमीन की उपज भी बढ़ती है और जमीन की पोष भी खराब नहीं होती है
1: जी। तो कितना कितना देना होगा ये?
0: जैसे कि अगर हेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो 100 किलो आपको नाइट्रोजन देना है, 50 किलो फास्फोरस देना है और 50 किलो आपको पोटैश देना है
1: जी।
0: अगर एक एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों को बता दिया जाए तो आपको आधी बोरी से कम यूरिया देना है और एक बोरी डीएपी देना है जिससे कि आपको इसका लाभ मिले और आपकी फसल अच्छी रहे। इसके अलावा आप जैव उर्वरक पे जाते हैं जो कि जाना चाहिए किसान भाइयों ने, क्योंकि आप बार बार जो एक छोड़ के 2 फसल 3 फसल ले रहे उससे जमीन की पोष कम हो रही है तो जैव उर्वरक का देना जरूरी है। जैसे कि अपन खरीफ प्याज में एजोस्पिरिलियम एक आता है, एक पीएसबी आता है, इनको अगर प्रति हेक्टर 5 किलो के हिसाब से गोबर के खाद में मिलाकर डालते हैं खेत का तैयार करते टाइम में तो ये बहुत फायदेमंद होती है। और माइकोराइजा का ट्रीटमेंट अगर आप रुपाई के टाइम में करते हैं तो वो बहुत जरूरी होती है
1: जी।
0: और अगर जैविक खेती कर रहे हैं तो उसके साथ आप वर्मी कंपोस्ट को भी डाल सकते हैं और नीम केक जो होता है खली होती है, करंज की खली भी होती है, ये अगर आप 5 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से डालते हैं तो उसका भी फायदा होता है
1: जी। जी, क्या प्राकृतिक खेती में भी प्याज में हम ये प्रयोग कर सकते हैं?
0: बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है जीवामृत और एक होता है बीजामृत। जब आप नर्सरी मैनेजमेंट करते हैं उस टाइम में बीजामृत का उपयोग करना चाहिए। अपने यहाँ पे किसान बहुत सारे बीजामृत और जीवामृत खुद बनाते हैं तो उन्होंने जब आप रोपाई के बाद जीवामृत हर 15 दिन में डालना चाहिए और बीजामृत नर्सरी के टाइम में डालना चाहिए
1: जी। जी,
0: इसके साथ आपको रोगों को बचाने के लिए भी जो अपनी खट्टी छाछ होती है उसका छिड़काव हर 10-15 दिन में करना चाहिए जिससे कि फफूंदनाशक लगने से बचता है
1: जी।
0: अगर आप मल्चिंग बेड पे लगा रहे हैं, मतलब उसमें मल्चिंग करते हैं बेड पे लगा के फलवार लगाते हैं, तो उस पे खरपतवार भी नियंत्रित होता है।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि प्याज में खरपतवार और रोगों का जैविक और प्राकृतिक प्रबंधन हम कैसे करें?
0: नीम का तेल 2 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से आप डाल के जो थ्रिप्स लगते हैं तेला जिसको बोलते हैं, उसका नियंत्रण करने के लिए जरूरी है। और ट्रैप आते हैं, एक येलो ट्रैप होती है, ब्लू ट्रैप होती है, इनको अगर आप खेत में लगाते हैं तो उससे ये जो थ्रिप्स है उसको चिपक के कंट्रोल होते हैं। अब प्राकृतिक खेती में आप खट्टी छाछ का छिड़काव करके भी उसको बचाते हैं। आप खरपतवार के लिए तो जो हाथ से निंदाई होती है वही बहुत अच्छी मानी जाती है प्याज के खेती में।
1: जो हमने प्याज लगा ली है, आपने जो बताई है सावधानियां वो भी हमने बरत ली है, तो कितने दिन में इसकी खुदाई हो जाएगी या करनी चाहिए?
0: तो ये 100 से 90 दिनों से 110 दिन के बीच में आप निकाल सकते हैं। अब अलग अलग किस्मों के आधार पे ये अलग अलग हो जाती है, तो 90 से 100 दिन में आ जाती है। और दूसरा, 50% से अधिक पौध की गर्दन जब गिर जाती है, जिसको अपन नेक फॉल कहते हैं, वो जब आती है तो आपको फसल की खुदाई करनी चाहिए।
1: तो इसके कोई तरीका होता है कि जो हम प्याज की खुदाई करें उस समय कुछ सावधानियां ले सकते हैं?
0: अगर खोदने के समय अगर प्याज को आप डैमेज करते हैं या फिर उसको टूट जाता है या फिर उसमें थोड़ा सा भी लग जाता है तो उससे जड़ें खराब हो जाती है, सड़ जाती है, इसलिए आपको उसकी निगरानी रखनी चाहिए। और इसका खुदाई करने के लिए 15 दिन पहले से ही पानी का बंद करना जरूरी है।
1: अच्छा।
0: वैसे खरीफ में अपन पानी बहुत कम देते हैं, लेकिन अगर आप जल दे रहे, आपके यहाँ पे बारिश का मौसम कम है, तो उस टाइम में 15 दिन के पहले ही आपको पानी देना बंद करना, सिंचाई बंद करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको निकालना चाहिए। अगर आपके यहाँ बारिश हुई है तो अगले 15 दिन तक अगर बारिश ना हुई है तभी आप उसको निकालें।
1: सचिन जी, शुरुआत में ही आपने बता दिया था कि खरीफ की प्याज में लाभ तो है, किंतु हमें बहुत सावधानियां बरतनी होगी, विशेषकर उसको संग्रहित करते हैं उसमें बहुत ध्यान देना होगा। तो अब बात आ गई है प्याज की खुदाई के बाद की, तो हमें ये बताएं कि प्राथमिक प्रसंस्करण इसका कैसे करें और क्या क्या सावधानियां रखें?
0: जैसे कि खरीफ की प्याज में पानी की मात्रा अधिक होती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें कि उसका छिलका भी थोड़ा सा पतला होता है। तो इसके बाद जब अपन खुदाई करते हैं, खुदाई के बाद में कम से कम 3-4 दिन आपको उसको छाया में सुखाना चाहिए। उसके बाद में खराब और कटे हुए प्याज को अलग कर देना चाहिए, जिससे कि बाकी जो अच्छे प्याज है वो खराब ना हो पाए। और इससे बहुत अधिक दिनों तक स्टोर नहीं करना चाहिए, खरीफ का प्याज ज्यादा से ज्यादा 2 महीने या 3 महीने के ऊपर स्टोर नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत बाजार में बेच के अपना मुनाफा कमाना चाहिए।
1: जी, तो सचिन जी आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है, हमें आशा है कि आपके इस तकनीकी मार्गदर्शन से हमारे किसान बहन भाई मौसम के पहले ही प्याज से अधिक और अतिरिक्त लाभ कमा सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: हाँ तो भैया, अपने उम्दा से जानो कैसे तकनीक अपन के अपनाने हैं, जलवायु से अपन कैसे खेती कर सकते हैं प्याज की, और मुख्य लाभ तो है ही है अपने भैया हरण को बेहतर मूल्य मिल सके, हमारी जाई कोशिश रहता है। और भैया आपको रोजगार भी बढ़े, हम भी जाई चाहते हैं, और प्याज की उपलब्धता अपनी बनी रहे, अगर आप उम्दा से प्याज की खेती करो और मौसम पूर्व प्याज का लाभकारी उत्पादन अपन ने जानो और जानकारी देते डॉक्टर सचिन प्रकाश नागरी भैया, और इनसे बातचीत करते अपने विपिन यादव भैया। तो भैया हमें अपने चिट्ठिया पतिया के माध्यम से जरूर बताइयो कि अबे इबेरा प्याज कौन कौन लगा रहो है और कैसे आप और लगे हो, और जोन भी जानकारी आप उनके और चहने हैं सो आप जरूर हमें बताइयो, और आज की जानकारी आपके कैसी लगी और आप और कहाँ से सुन रहे हो हमें जरूर बताइयो, हमें आपकी चिट्ठिया पतिया को जरूर इंतजार रहता है। और पिछली दफा भी हमने आपसे पूछी हती तो आपने बड़ी खूब चिट्ठियाँ लिख के भेजी है, सो हम अपने कार्यक्रम में टेम टेम पे आप और उनकी चिट्ठियाँ जरूर शामिल करते हैं, और आप जोन भी जानकारी पूछा तो हमारे ते विशेषज्ञ भैया आते हैं तो भी आपकी जानकारी को जरूर बताते हैं। और देखो भैया प्याज तो हमारे लगा रखी है, दिन उन्हें तो हमें बड़े उम्दा दई है, और भुट्टा भी तो खा के आए हैं और गए हते चिंकी के स्कूल भाषण प्रतियोगिता भाई, तो चिंकी ने उम्दा से सबको बुला हुआ, तो अब चिंकी की बहन है ती रिंकी बेई दोनों संगे संगे जाती हैं, सो रिंकी ने उम्दा भाषण दे दो कैसे कि अपने स्कूल की बा वो कहत नहीं है कि जो अपनी शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं, बड़े अभिवादन से उनको सम्मान से अपनो भाषण शुरू करो और उन्हें आज जे भी सबके बताओ कि हम शिक्षाविद महान प्रखर भारत के राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी दो

करो हतो, सो अपन औरन खे इनके आदर्श को अपने जीवन में उतारने हैं, हमें जो संकल्प लेने हैं। तो भैया रिंकी ने तो उम्दा से सबके बताओ कि हम भी जाई कह रहे आए हैं कि अपने महान देश में जितने भी अपने मार्गदर्शक हैं हम उन्हें याद करें और उनसे अपने जीवन को चरितार्थ जरूर करें।

हाँ तो भैया, मनमोहन शर्मा भैया को अपन ने सुनो। और भैया देखो, अबे बस कार्य को टाइम चल रहा है, सो अपन के सावधानी धर रखने हैं। नेहे में सांप बिच्छी से अपन के बचाव करने हैं कि कहूँ भी अपन जा रहे हैं तो छतरिया अपने पास में भाव चाहिए, अपन के भीगने नहीं है, नहीं तो अपन बीमार पड़े हैं। और बीमार पड़े हैं सो अपने के दिक्कत हो है, सो अपन कहूँ भी जा रहे हैं अपन पानी नहे महे को ना पिए तो ज़्यादा अच्छा है। कैसे कि उमें बस कारों को पानी रहत है सो बे नुकसान कर सकत है। स्वच्छ पानी अपन के पीने हैं, अपन के स्वस्थ रहने हैं। अपने जो मोड़ा मोड़ी हैं संगे उनको भी ध्यान धर रखने हैं। अब हो रही है चलबे की बिरिया, कैसे कि अब हो रही है जिज्जी भोजी हरो आपोरन की खाना आपोरन के का बनाने हैं, जे सोच रही हो सो बनाओ। हम भी जा रहे हैं अपने घर, फिर आपोरन से हुए मुलाकात। तब तक के लाने तुलसा बिन्ना की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: अभी आप कृषि जगत सुन रहे थे, हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। सुर्खियों में यह कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे, बस कुछ ही पलों में।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में
3: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा और इसके रणनीतिक महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
4: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिवसीय यात्रा पर। इस यात्रा का उद्देश्य तीनों देशों के साथ भारत के संबंधों को नई मजबूती देना है। व्यापार हो, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, शिक्षा, नई तकनीक और भारतीय समुदाय जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बातचीत होगी। साथ ही यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाने वाली मानी जा रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपसे करना चाहूंगी वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये यात्रा है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, यह तीनों देशों की यात्रा भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और आप इस दौरे को किस नजरिए से देखते हैं?
5: देखिए, तीनों ही देश और खास तौर से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा का जो पहला चरण है इंडोनेशिया की यात्रा, ये मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके कई वजह हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र का, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के मामले में भी, अपनी आर्थिक शक्ति के मामले में भी, और उसकी जो सामरिक जो महत्व है उसका दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए इंडोनेशिया केंद्रीय स्थान रखता है भारत की एक्ट ईस्ट नीति में। साथ ही साथ भारत और इंडोनेशिया के बीच में, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो के बीच में जो संबंध है, उनकी जो पर्सनल डिप्लोमेसी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2018 में जब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में साइन हुई थी, तब से लेकर के अभी तक खासी प्रगति दोनों देशों के बीच में हुई है। हमें मालूम है कि पिछले ही साल 2025 में राष्ट्रपति प्रबोवो हमारे भारत के गणतंत्र दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर थे और राष्ट्रपति प्रबोवो की प्रधानमंत्री मोदी की लगातार बैठकें होती रही हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों ही देशों के नेता अपने संबंधों को लेकर के सजग हैं और संबंधों को आगे की दिशा में बढ़ाना चाहते हैं। इंडोनेशिया की जहां तक आर्थिक रूप से उसकी जहां तक महत्ता है, वो ये है कि 25 बिलियन का व्यापार दोनों देशों के बीच में है, जिसे इनफॉर्मल अगर हम ट्रेड जोड़ें तो वो उससे भी ज्यादा होता है। दोनों ही देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के अपनी एक जो नीति है उसमें समानताएं बहुत सारी हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के इंडोनेशिया भारत से सीखना चाहता है। भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी में इंडोनेशिया का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होकर के और अपना योगदान देना चाहता है। इसके पहले हमने देखा कि इंडोनेशिया और भारत दोनों ही देशों ने G20 की अध्यक्षता की और किस तरह उन्होंने तमाम जो देश हैं जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के ग्लोबल साउथ के विकासशील जो देश हैं, वो कैसे अपनी विदेश नीति और सामरिक नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है इंडोनेशिया की यात्रा इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा वहां के प्रधानमंत्री अल्बनीजी के निमंत्रण पर है। ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि हमें पता है कि भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है ओशानिया या पैसिफिक आइलैंड के क्षेत्र में, दक्षिण इंडियन ओशन के क्षेत्र में, और वहां पर एक दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ही क्वाड के सदस्य देश हैं और इस लिहाज से क्षेत्रीय संतुलन को लेकर के, क्षेत्रीय सामरिक संतुलन को लेकर के दोनों ही देश का जो नजरिया है वो एक जैसा है। और दोनों ही देश चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना रहे, और इस बात को लेकर के दोनों ही देशों में डिफेंस को लेकर के, सुरक्षा और सामरिक मुद्दों को लेकर के दोनों देशों के बीच में लगातार डायलॉग्स और एक्सचेंजेस भी होते रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, सप्लाई चेन रेजिलियंस को लेकर भारत, ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश कैनेडा के साथ भी और जापान के साथ भी मिलकर के तमाम तरीके के ट्राइलैटरल मैकेनिज्म्स की भी बात कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापार समझौता होने के बारे में भी काफी बातें चल रही हैं, तो उसको नतीजे तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि ये कोशिश होगी। और तीसरा देश है न्यूजीलैंड, जहां पर पिछले साल हमने देखा था कि न्यूजीलैंड की तरफ से भारत की यात्रा हुई थी 2025 मार्च में। न्यूजीलैंड की यात्रा जो है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा, एक नई गति देनी है। वैसे भी भारत के प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये 40 सालों में पहली यात्रा है, तो इस लिहाज से जो कूटनीतिक संबंध दोनों देशों के बीच में है उनको भी आगे बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा महत्वपूर्ण है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन उस अभी तक रेटिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो कौन से वो मुद्दे हैं, लेबर मोबिलिटी या एग्रीकल्चर सेक्टर या फार्मास्यूटिकल्स, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम अपनी शुरुआत पहले करें, और कौन से वो क्षेत्र हैं जिनमें हमें संभल कर और समझबूझ से चलना है, ये सभी मुद्दे भी भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में आएंगे। पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि भारतीयों का न्यूजीलैंड जाना सर्विसेज के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से, वहां पर जाकर छोटे मोटे व्यवसाय या स्टार्टअप्स खोलने के लिहाज से न्यूजीलैंड एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। तो भारतीयों और भारतवर्षियों की भी वहां पर जो मौजूदगी है उस हिसाब से भी न्यूजीलैंड की यात्रा प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम देखें इसके इस पूरी तीनों देशों की यात्रा को, अगर हम पिछली जो यात्राएं हुई हैं प्रधानमंत्री की उनसे अगर हम जोड़ के देखें, और साथ जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकायची की भारत यात्रा से जोड़कर देखें, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तमाम जो उभरती हुई शक्तियां हैं और तमाम जो मिडिल पावर्स हैं, भारत जैसे राइजिंग पावर्स और ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया जैसे जो मिडिल पावर्स हैं, ये सभी साथ मिलकर अपनी ऊर्जाओं को, अपनी जो चिंताएं हैं सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, उनको मिलकर साझा करना चाहते हैं, उनको मिलकर बैठकर उनको साझा करना चाहते हैं, और उनको बात के मद्देनजर कि चीन और अमेरिका के जो दोनों ही देशों की जो विदेश और सामरिक नीतियां हैं वो इंडो पैसिफिक के छोटे और मझोले देशों के हितों में नहीं है, तो कैसे उन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ये देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी विदेश और सामरिक नीति को आगे बढ़ाए, ये मुझे लगता है कि एक बड़ा कनेक्टिंग फैक्टर है प्रधानमंत्री मोदी की पिछली यात्राओं की और साथ में इन तीन देशों की यात्रा के।
4: प्रोफेसर मिश्रा, जैसा आपने अभी बताया कि इंडो पैसिफिक का कितना महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि ये यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत यानी कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
5: देखिए, इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कभी भी भारत ने किसी दूसरे देश को नहीं दी, इंडोनेशिया ने भी किसी दूसरी महाशक्ति को नहीं दी। इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है उसके कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, कई डिफाइनिंग फीचर्स हैं, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है अमेरिका और चीन के बीच में सामरिक जो रस्साकशी है। लेकिन इसके साथ ही दो और महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, भारत की और भारत के साथ जापान की, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन तमाम देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के एक बड़ी ही मुखर और बहुत ही स्पष्ट नीति का होना कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम किन्हीं भी दूसरे देशों को हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा या रूल्स बेस्ड ऑर्डर से खिलवाड़ करने नहीं देंगे। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि भारत की नीतियों में और ऑस्ट्रेलिया, जापान या इंडोनेशिया की जो खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र की जो नीति है उसमें बड़ी समानताएं हैं, और इन्हीं समानताओं के चलते आसियान की भी अपनी एक इंडो पैसिफिक का आउटलुक है, आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, जिसमें बहुत सारी समानताएं भारत के इंडो पैसिफिक विजन से या महासागर विजन से। तो क्योंकि इन तमाम देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के उनकी चिंताएं, उनकी आकांक्षाएं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये देश चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक को लेकर के एक बड़े लेवल पर एक कंसेंसस रहे, और इस कंसेंसस के साथ साथ इन देशों के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, और यही मुझे लगता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित और स्थिर और शांतिपूर्ण बनाने में मदद करेगा, और यही इन देशों की भूमिका है इंडो पैसिफिक को लेकर।
4: इस दौरे में व्यापार, निवेश, शिक्षा या फिर नवाचार और कई सारी नई तकनीकों पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने से भारत को क्या प्रमुख लाभ मिल सकते हैं? इस पर आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा समझाएं।
6: देखिए, भारत के साथ तमाम देशों के, भारत के साथ इंडोनेशिया का जहां तक सवाल है व्यापार और निवेश का, ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी व्यापार को खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और सर्विसेज सेक्टर में भारत की अपनी जो क्वालिटीज हैं उसको इंडोनेशिया तक पहुंचाना और भारत और इंडोनेशिया के व्यापार को आगे आने वाले वर्षों में 50 बिलियन तक पहुंचाने की कोशिश ये दोनों देश कर रहे हैं। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में व्यापार को लेकर के बहुत सारी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज है, लेकिन दोनों देशों के बीच में कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है और यही भारत और इंडोनेशिया दोनों ही देश ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपनी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज को आगे बढ़ाते हुए कंपटीशन को कम से कम रखा जाए, आपसी सामंजस्य से ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं तेजी से आगे बढ़े। जैसे लेबर मोबिलिटी एक बहुत बड़ा उसका पहलू है, जिसमें हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया का ब्लू कॉलर जो लेबर है वो तमाम देशों, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे मलेशिया हो, ब्रुनेई हो, वहां मौजूद होता है। भारत की भी लेबर मोबिलिटी को लेकर के, आउटबाउंड लेबर मोबिलिटी को लेकर के बड़ा दखल रहा है और भारतीय आमतौर पे ब्लू कॉलर जॉब्स में भी और व्हाइट कॉलर सर्विसेज सेक्टर में भी भारत से बाहर जाते रहे हैं और दक्षिण पूर्व एशिया एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। तो इस लिहाज से दोनों देशों के बीच में आर्थिक कॉम्प्लीमेंटैरिटी को कैसे बढ़ाया जाए ये महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया में कोयले को लेकर के और ऑयल और गैस को लेकर के तमाम बातचीत चल रही है। अभी कोई इस संदर्भ में तार्किक परिणति तक कोई एग्रीमेंट पहुंचा नहीं है, लेकिन इस पर मुझे लगता है काफी बातचीत होगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या आरसीईपी जिसे हम कहते हैं उसका एक हिस्सा है, अगले साल आरसीईपी के 10 साल भी पूरे हो रहे हैं, तो ये कोशिश जरूर होगी कि भारत को आरसीईपी में लाया जाए और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो व्यापार समझौता है उसके तहत भी ऑस्ट्रेलिया ये कोशिश जरूर करेगा कि भारत एक क्षेत्रीय आर्थिक इकोसिस्टम का भी हिस्सा बने। ऑस्ट्रेलिया के साथ जहां तक संबंधों का सवाल है, भारत की नीति ये रही है कि ऑस्ट्रेलिया से क्रिटिकल मिनरल्स, यूरेनियम जिस पर एग्रीमेंट हो चुका है, और तमाम ये इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको इंपोर्ट किया जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक बड़ी शक्ति है, तो एग्रीकल्चर

0: सेक्टर को आपसी व्यापार समझौतों से अलग रखा जाए, और सर्विसेज के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, रक्षा और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में कॉपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। न्यूजीलैंड, जैसा मैंने पहले कहा कि न्यूजीलैंड के साथ आर्थिक संबंधों को लेकर के, और न्यूजीलैंड का भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश को लेकर के भारत ने न्यूजीलैंड को एक बड़ा साझेदार माना है, और ये कोशिश की है कि न्यूजीलैंड का भारत में निवेश हो, निवेश भारत में हुआ भी है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। दोनों देशों के बीच में व्यापार अभी $3 बिलियन भी नहीं पहुंचा है, तो मुझे लगता है उस क्षेत्र में कैसे दोनों देशों के व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, ये भारत की कोशिश है, और मुझे लगता है इस पर भी काम इस यात्रा के दौरान होगा।
1: प्रधानमंत्री की जो ये तीनों देशों की यात्रा है, इसमें उन्होंने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करने की बात कही है। विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था, निवेश, संस्कृति और वैश्विक छवि को मजबूत करने में किस तरह से योगदान देते हैं, और आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की जो ये समुदाय से जो उनका ये मुलाकात होगा वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति में भारतीयों का और भारतवंशियों का, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, और PIOs, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों पर बहुत खास ध्यान रहा है। तो भारतीयों और भारतवंशियों से हमेशा अपनी हर यात्रा के दौरान वो उन्होंने उनके साथ बातचीत की है, उनके साथ मुलाकात की है, उनको संबोधित किया है, और उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश की है, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को भी समझने की कोशिश की है। इंडोनेशिया में भी भारतीयों के साथ मुलाकात, भारतवंशियों के साथ मुलाकात होगी। ऑस्ट्रेलिया में बड़े स्तर पर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लाखों की संख्या में भारतीय और भारतवंशी रहते हैं। भारतीयों के तौर पर ज्यादातर भारतीय विद्यार्थी जो वहाँ हायर एजुकेशन में जाते हैं, टर्शरी एजुकेशन में, MA या प्रोफेशनल कोर्सेज या PhD के लिए जाते हैं, और जो वहाँ पे सर्विसेज सेक्टर में भारत के प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वहाँ पे मौजूद हैं, और साथ ही साथ डायस्पोरा के जो तमाम लोग हैं, जिनकी एक अच्छी खासी संख्या ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त है। न्यूजीलैंड में भी अब भारतीयों और भारतवंशियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी सर्विसेज सेक्टर में भारत एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरा है। भारतवंशियों की भी अब संख्या बढ़ रही है, क्योंकि तमाम भारतीयों, खासतौर से पंजाब जैसे देशों से, तमाम भारतीय न्यूजीलैंड में जाकर माइग्रेट हो गए हैं और वहां सेटल हो गए हैं, तो उनको भी समझने और उनके साथ भी बातचीत करने की कोशिश होगी। डायस्पोरा हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति में एक बहुत अहम स्तंभ रहा है, और इस कितनी इसको इम्पोर्टेंस इस भारतीय विदेश नीति में आज दी जा रही है, ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के तमाम इन तीनों देशों में जो संबोधन होंगे उनसे ये ज्यादा स्पष्ट होगा।
1: प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही सरल भाषा में आपने हमारे श्रोताओं को समझाया कि यह प्रधानमंत्री की जो यात्रा है तीनों देशों की, यह कितनी महत्वपूर्ण है और ये विकसित भारत का लक्ष्य पाने में कितनी मदद करेगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में।
4: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला नगमा फिल्म वजूद से। इस गीत को गाया है कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण ने। गीत जावेद अख्तर का और संगीत अनु मलिक।

0: अरिजीत सिंह के स्वर में फिल्म डंकी का गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा स्वानंद किरकिरे ने और संगीत से सजाया प्रीतम ने। अगला गीत इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

सांवरिया फिल्म का गीत शान के स्वर में अभी आप सुन रहे थे। गीत समीर का, संगीत मोंटी शर्मा का। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई से है। इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीत जमीर काजमी का और संगीत अनु मलिक का।

हरिहरन और सुखविंदर सिंह के स्वर में फिल्म ताल का यह गीत अभी आप सुन रहे थे। गीत आनंद बख्शी का, संगीत एआर रहमान का। इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुए हैं। समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज़ एट 9 हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने

0: कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
4: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
5: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है।

0: शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
1: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए, और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
2: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच IMD ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसे ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। पिछले एक दशक में आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन होना, इन सब ने आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है। गांव की एक महिला भी अब मोबाइल फोन से अपना बैंक खाता चला रही है। किसान घर बैठे सब्सिडी ले रहा है और विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हर नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर है? साइबर ठगी, डेटा सुरक्षा और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकेंगे? इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे प्रौद्योगिकी एक आदमी को सशक्त बना रही है और डिजिटल सफर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता, दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर

0: 9289004044 पर भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में नंद कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं जिसने सीधे आम नागरिक को फायदा पहुंचाया है?
1: सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज एक कोई भी गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति जो छोटा व्यवसाय करता है, जो किसान है, वो एक मोबाइल के माध्यम से पैसे ले सकता है, पैसे दे सकता है, बिना किसी कागज और सरकारी दफ्तर गए वो आधार से अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है, किसी भी अपने यार दोस्त साथी से व्हाट्सएप पर बातें कर सकता है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूज़िक या देश के कल्चरल चीज़ों का यूट्यूब पर लाभ उठा सकता है एट ए रेट जो कि बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम रेट पर, और ये सब उसके एक छोटे से हाथ में मोबाइल के माध्यम से। तो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भारत की रही है कुछ सालों की इस दौरान।
0: बिल्कुल गुलशन राय जी, डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप जैसी साइबर ठगी बहुत बढ़ गई हैं। एक आम नागरिक को इनसे बचने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए?
2: इसके लिए तुरंत तो ये करना चाहिए, देखिए किसी कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है वो किसी से फ़ोन पे कोई डेटा नहीं मांगते हैं, किसी का अकाउंट नंबर, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर और कोई डिटेल, इसकी जानकारी कोई भी नहीं मांगता है। और सब बैंक्स में बार बार वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं, SMS भेजते हैं कि कोई भी जानकारी किसी को मत दीजिए, हम किसी से जानकारी फ़ोन पे और SMS से और WhatsApp द्वारा नहीं मांगते
0: जी।
2: लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग, आज की डेट में प्रौद्योगिकी का ऐसा प्रभाव पड़ गया है, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ गए हैं जिससे वो फेक साइट और फेक कॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं वो, और पूरा ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि जैसे ये पुलिस का दफ्तर है जिसमें पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो उस संदर्भ में आप नागरिकों को और हमारे ये याद रखना चाहिए, जैसा कि सब बैंक्स कहते हैं और जैसा मैं भी कह रहा हूँ, कि कोई भी संस्था इस भारत में किसी से कोई इंफॉर्मेशन वैसे नहीं मांगती है
0: जी।
2: और ऐसा है, इसका एक थंब रूल है, थंब रूल ये है कि अगर आपको कोई कॉल करता है और वो कॉल उसकी आप सुन लेते हैं और उसके उठा के कॉल कर लेते हैं और आपसे कुछ, एक तो परिचय मांगता है तो परिचय मत दीजिए, अपना डिटेल मांगते हैं तो डिटेल मत दीजिए, अगर आपसे कोई कुछ करने के लिए कहता है तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं और आपका मैं अभी एक मिनट में तुरंत में आपको फोन करता हूं।
0: ठीक है,
2: ऐसे केसेस में रिटर्न कॉल कभी नहीं होती है
0: जी,
2: रिटर्न कॉल नहीं होती,
0: सबसे बड़ी बात।
2: हाँ
0: जी, बिल्कुल।
2: और आज ये पहला एक वो है कि रिटर्न कॉल करें और रिटर्न कॉल में उससे सब पूछें, क्योंकि रिटर्न कॉल करने में पुलिस जो है उसको ट्रेस करने की कोशिश हो जाती है, रिकॉर्ड मिल जाता है, तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है उसका, तो रिटर्न कॉल उसे कहे मैं रिटर्न कॉल करते हैं, आपको एक मिनट दीजिए, कोई सामान गिर गया है, कुछ थाना है, कुछ भी करके करें और वो रिटर्न कॉल करें, वो बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ा थंब रूल है
0: जी।
2: और किसी को जानकारी मत दीजिए इस बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ। आजकल बहुत बड़े फ्रॉड हो गए हैं, वो जो ऐप आती है एक जिसमें होता है जिसमें आप नंबर डालिए आपको बता देता है कौन सा क्या आता है उसका क्या आता है, और वो आजकल उसमें भी लोग फ्रॉड करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं करते हैं, तो आप उसका जवाब मत दीजिए, कहीं हम आपसे आएंगे। और आज जो है दूर संचार विभाग ने, सरकार ने ये क्या किया कि जब आपको कॉल आती है तो उस पे नाम फ्लैश होता है कि ये कहाँ से किसका नाम आ रहा है, कौन आ रहा है, वो सब सर्विस प्रोवाइडर उसको स्पैम भी लिखते हैं कि ये फेक कॉल है या ऐसी कॉल है, तो आप पहले तो कॉल को देखें कि कॉल पे किसका नाम आ रहा है और कॉल पे क्या मैसेज आ रहा है, कॉल देखें पहले गौर से जब कॉल आती है, तो उसके बाद अगर फोन आपको जान पहचान का नाम नहीं है तो मत उठाइए, अगर आप गलती से उठा लेते हैं तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ी देर में कॉल आपको एक मिनट में कॉल करते हैं। रिटर्न कॉल जब करेंगे तो वो मैच्योर नहीं हो
0: पकड़ जी। और इस समय हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं रवि जवालिया, हरिद्वार से जुड़े हैं। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हमारे विशेषज्ञों से क्या

0: सवाल पूछना चाहते हैं।
1: हाँ धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मेरा नाम रवि जवालिया है।
0: जी रवि।
1: मैं गर्मीपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ।
0: जी
1: जी, सबसे पहले से विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार सर।
2: नमस्कार। नमस्कार रवि जी, नमस्कार।
1: हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक मतलब जो नया युवा है जो मतलब टेक्निक का यूज करना चाहता है, वो डिजिटल साक्षर कैसे हो, क्योंकि आजकल ट्रांजेक्शन वगैरह जैसे कि हम सभी जानते हैं कि AI भी है, फ्रॉड भी है, तो वो डिजिटल साक्षरता कैसे प्राप्त करे, और इसके लिए क्या मतलब स्पेशल कोई नंबर है?
2: देखिए, डिजिटल साक्षर के उस संदर्भ में सरकार ने बहुत काम किया है और सरकार की वेबसाइट पे इस बारे में बहुत ज़्यादा उसमें काम है। इनकी एक नाइलेट है, सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था है, नाइलेट, NILIET नाइलेट है, और उस पर उन्होंने काफ़ी कोर्सेस उस पर डिजिटल साक्षरता पे लिख रखे हैं
0: जी।
2: लेकिन डिजिटल साक्षरता आज की डेट में जरूर काम करने के लिए बहुत सिंपल सा है। आप मोबाइल चला लेते हैं, आप स्मार्टफोन चला लेते हैं, आज की डेट में जितने यंग लोग हैं वो सब संभाल लेते हैं, और जो हम जैसे उम्र वाले हैं लोग, हम उन्हीं बच्चों से सीखते हैं हमारा मोबाइल कन्फिगर कर दीजिए। तो ये तो एक डिजिटल के बारे में बच्चों को, आज यंग जनरेशन को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, पर आपको अगर आपकी इसके एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर आपको देखना है तो नाइलेट की साइट पे जाके आप कोर्स देखिए, और उनमें काफ़ी मटेरियल है, उस पर काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी शॉर्ट मॉड्यूल्स है, आप उसमें देखेंगे आपको उसके बारे में पता लगेगा, और आप उसमें नाइलेट का नंबर भी होगा और जिसपे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो नाइलेट पे जाकर साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं। और नंद कोरम जी, आपसे जानना चाहेंगे, UPI आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को 100% अपनाने के लिए सरकार की अगली क्या प्राथमिकता हो सकती है?
3: UPI दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से तकरीबन आज के देश में अगर अंदाज लगाएं तो 1 in every 2 or even 1.2 in every 2, मतलब 50-70% ट्रांजेक्शन पूरी दुनिया का UPI के माध्यम से होता है।
0: बहुत बड़ी बात।
3: और भारत, न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों में उसको व्यवस्थित कर चुका है
0: जी।
3: और एक समय में जो यूरोपियन या US डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम थे उसको हम लोगों ने वहां तक जाकर के उससे बहुत ही सस्ते रूप में बनाया। अब जो उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि उसके ऊपर इंश्योरेंस, उसके ऊपर लेंडिंग आपस में, जो पीयर टू पीयर मतलब आपस में लेन देन या उधार देना या बैंक का कर्ज देना, या जो हमारे देनदारी की सूची बनकर एक साथ पेमेंट हो जाना, या क्रेडिट स्कीम्स लाना जो कंपनीज लाती हैं कि ये खरीदो तो ये पाओ, या ये वॉलेट में रख लो तो कल वो पाओ, इस तरह के जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं वो उसके ऊपर धीरे धीरे बन रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि देश में, जो हमारे देश में ये भी एक सच है कि कैपिटल का अभाव है, खास करके जो MSME और छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनका क्रेडिट हमेशा कमी रहता है, तो उस कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए UPI एक बड़ा ही सिबिल और बाकी सारे स्कोर के माध्यम से इजी लेंडिंग कर पाता है। तो धीरे धीरे NBFC का काफ़ी पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, बैंक्स उस कस्टमर तक पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक कि वो पहले नहीं पहुँच पा रहे थे। तो आने वाला जो समय है अगले 5 सालों में, कैपिटल फॉर बिजनेस या इंडिविजुअल्स UPI के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश।
0: बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार के सासाराम से अमित उपाध्याय। अमित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी नमस्कार सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं। मेरा ये सवाल था
0: जी
4: कि जैसे कि एक OTP का जो फ्रॉड बढ़ते जा रहा है बहुत सारे केस में, उसके लिए हमें कैसे इसको व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इसको जागरूक अभियान चला सकते हैं, क्या कि इसको क्या हो सकता है? और दूसरी चीज, ये में एक सुझाव भी था, जितना भी सरकारी विद्यालय है या विश्वविद्यालय है, इसमें हम लोग समय समय पर सरकार और उसके के माध्यम से समय समय पर इसको कैसे हम लोग उस पर चर्चा करके ताकि लोगों को जागरूक कर सकते हैं जी।
2: आपका सवाल बहुत ही अहम सवाल है। OTP का फ्रॉड काफ़ी पहले से काफ़ी बढ़ गया है, पर आप ये देखिए कि थोड़ा सा सोचिए कि OTP क्यों आता है और कैसे आता है। OTP जब भी आता है जब आप किसी सर्विस को देख लेने की कोशिश करते हैं, आप किसी को लॉगिन करते हैं मोबाइल पे, किसी के वेबसाइट पे करते हैं, कोई वेबसाइट करते हैं, आप कुछ पैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, और वो आपको ये देखने के लिए कि ये सही ट्रांजेक्शन है आपको OTP भेजते हैं, आपके फोन पे OTP।

0: आता है जो रजिस्टर्ड फोन होता है उनके पास, उसी पे ओटीपी आता है। कोई भी ओटीपी तभी आप देखिए जब आपने मांगा हो, कोई सर्विस करने के लिए मांगा हो, आपने कुछ कोशिश की हो। अगर आपने कोई सर्विस नहीं की, आपने सर्विस करने की कोशिश नहीं की, आपकी डिजायर नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आप किसी भी ओटीपी को मत रिकॉग्नाइज करिए, मत देखिएगा, आप ओटीपी को लीजिएगा ही नहीं। ऐसे को ओटीपी आता रहता है, अपने आप ही ओटीपी भेजते रहेंगे उनको, आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उसी ओटीपी को देखिए, जब आप किसी सर्विस को कुछ लेने की कोशिश करते हैं और वो आपको जी जानने के लिए कोशिश करता है कि आप सही आदमी हैं जो कि सर्विस ले रहे हैं, तभी आपको ओटीपी भेजता है। ओटीपी एक एक माध्यम है आपको आइडेंटिफाई करने का। तो ऐसे कोई बगैर आपके कहे को ओटीपी भेजता है, उसको मत लीजिएगा, उस पे मत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए।
1: सिंपल सा है, जो आपने मांगा तभी ओटीपी आया, अदरवाइज ओटीपी नहीं आएगा। चलिए एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के सागर से विपिन। विपिन आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है।
2: सभी को नमस्कार
1: जी,
2: मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर से। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सर मैं ये जानना चाह रहा था, आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह कि बहुत सारे ऐप हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसे डाउनलोड करें, आपका इससे एक्सपर्ट जो आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर ग्रो करेगा। तो ये कैसे हम जाने कि सही या गलत है ऐप हम जो डाउनलोड करें या नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल ये था सर कि जो हेल्पलाइन है 1930 सर, इस पर कॉल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कॉल ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर, इमरजेंसी कॉल में ट्रांसफर हो जाता है, यानी 112 पर। तो ये नॉर्मल है, ऐसे ही लगता है कॉल कि 1930 पे करते हैं और इमरजेंसी में ट्रांसफर होता है, या फिर ये हेल्पलाइन अलग होती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी?
3: मैं पहला सवाल का जवाब देता हूँ। पहले जो आपने कहा कि हम अगर कोई भी प्रश्न मतलब इस तरह से पूछते हैं कि हमारा एक बार आप इनका पहला सवाल जो था
1: एक बार फिर से सवाल करें,
3: फिर से सवाल करेंगे आप?
1: ठीक है, शायद उन्होंने उनका
3: डिस्कनेक्ट
1: हो गया है। लेकिन 1930 के बारे में कुछ
3: अच्छा, 1930 के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा बाकी श्रोताओं के लिए जो जुड़े हुए हैं कि 1930 और 112 इस तरह से कनेक्टेड है कि कुछ 1930 के कॉल इमरजेंसी कॉल होते हैं, जैसे कि साइबर में इमीडिएट रिलीफ, तो आप 112 से कई बार कोई इमीडिएट कहीं पुलिस की गाड़ी पहुंचानी है, कहीं स्वास्थ्य की गाड़ी पहुंचानी है, तो इमरजेंसी रिलीफ में भी लोग 1930 में लगा देते हैं, या इमरजेंसी कोई एक्शन लेना है, ब्लॉकिंग ऑफ एन अकाउंट, 1930 में ये भी सुविधाएं हैं कि उससे रिलेटेड बैंक का भी एक प्रोसेस है, तो कई बार आपको डायवर्जन ऐसा मिल जाता होगा। ऐसे एज ए पॉलिसी 1930 स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड है, जो साइबर फ्रॉड या अकाउंट फ्रॉड या उस तरह की चीज़ों के लिए रहता है, न कि दूसरे चीज़ों के लिए। और जो आपका डिजिटल ऐप वाला क्रेडिट स्कोर का विषय था, क्रेडिट स्कोर सिबिल का या अलग बैंकिंग ब्यूरो के डेटा के आधार पर बनता है कि आपने पहले क्या लोन लिया है, आपका लोन में पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था, आप कितने डिसिप्लिन वे में पे करते चले गए, तो आपके बैंक का ट्रांजैक्शन के आधार पर बनता है। आपके किसी ऐप में कोई एक्टिविटी का स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, बार बार देखने से या बार बार किसी ऐप में चार बार गेम खेलने से, क्योंकि आपका जो आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने मान लीजिए कोई पेमेंट टाइम पर पेमेंट कर दिया, ये फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर सिबिल स्कोर बनाता है या अन्य क्रेडिट एजेंसी आपका स्कोर बनाती हैं। ये सब केवल लोगों को समझाने के लिए कि देखिए साहब एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ये बार बार करेंगे तो 5 पॉइंट जुड़ जाएगा, ये सब केवल गुमराह करने का रास्ता है। सिविल का स्कोर एक साइंटिफिक मेथड से पूरे देश में बनाया जाता है, इसके लिए कोई ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, वो ज़्यादातर आपको गुमराह करने के लिए।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोताओं को जानकारी मिली होगी। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, और आज हम डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी, और प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ओडिशा से देश पांडे दीप दास जी जुड़ गए हैं। दास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल पूछना चाहेंगे
4: जी? नमस्कार।
1: नमस्कार जी। नमस्कार
4: जी। कुमारम महोदय और राय महोदय को मेरा सादर नमन।
3: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, आपको भी सादर नमन
4: जी। मैं देशदीप दास केंद्रापरा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। तो मेरा

0: सवाल है, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख डिजिटल सेवाएं कौन सी हैं?
1: शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी
2: जी,
1: स्टूडेंट्स
0: जी, विद्यार्थी जी सर।
1: तो स्टूडेंट्स के लिए अगर शासकीय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताएं तो जैसे दो है, अगर आप किंडल स्कूल से 12वीं तक में हैं तो दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है, इस पर सभी एनसीईआरटी की किताबें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विषयों की बड़े ही डिजिटल और इजी सुगम स्थान तरीके से उपलब्ध होती है। दूसरी, उस पर वीडियो के कोर्सेज बने हुए हैं जो ऑनलाइन उन विषयों से संबंधित, मान लीजिए कोई छठी क्लास का मैथ्स का बच्चा है या कोई सातवीं क्लास का मैथ्स का बच्चा है, तो अगर वो सातवीं पढ़ रहा है और उसे छठी में डाउट है तो बड़ा इंटरकनेक्टेड बड़े ईजी वे में दीक्षा प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से, और कई लाख बच्चे इससे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप बड़े क्लास में बच्चे हैं, मतलब आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के या किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो स्वयं करके एक पोर्टल है या NPTEL नाम से जो पोर्टल पहले चलता था, जिस पर कि बड़े हाई लेवल के जो कोर्सेज राइट फ्रॉम आपको उसमें IIT कानपुर या IIT के बड़े MTech मास्टर्स PhD के कोर्स से लेकर के, और जो आपके 12th के इंजीनियरिंग के, मेडिसिन के, IIMs के, मैनेजमेंट के, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन कमर्शियल चार्टर अकाउंटेंसी वगैरह के। तो ये एक पूरा जूनियर क्लास से लेके सीनियर तक का कोर्सेज है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने, राज्य सरकारों ने अपने अपने भी प्रयास किए हैं। उड़ीसा में आप अगर YouTube पे जाएंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपने कोर्स को पब्लिक किया है, तो वहां पर भी जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज, सेशन वाइज ऐसे कोर्सेज का लाभ देखकर ले सकते हैं।
2: नंद कुमार जी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं अक्सर डिजिटल सेवाओं से घबराती हैं, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए आपके मंत्रालय की क्या विशेष योजना है?
1: दो विषयों पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उनका अकाउंट खोलना सबसे बड़ा काम, और उनके हाथ में स्मार्टफोन होना। तो स्मार्टफोन में आज के डेट में भारत में बहुत ही कम दरों पर स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, तो इसके रेट्स को भी आप अगर कंपेयर करेंगे, जैसे डेटा बहुत कम रेट पे था तो स्मार्टफोन भी भारत में बहुत ही लो कॉस्ट पर बिक रहा है आजकल, और भारत की PLI स्कीम्स ने बड़ा उसमें कारगर रोल प्ले किया है। अब जहां तक रहा उनके सीखने और व्यवहार की बात, तो लोकल भाषा में कंटेंट उपलब्ध करा करके कि वो जिस भाषा में, अगर वो तमिल में बात करते हैं, अगर वो हिंदी में बात करते हैं, जिस भी गुजराती में बात करते हैं, तो उस भाषा में आजकल सभी सरकारी वेबसाइट को उपलब्ध कराया गया है। आप भाषणी के माध्यम से या अन्य AI टूल्स के माध्यम से सभी शासकीय पोर्टल्स को उस लोकल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसके माध्यम से आप इजी से उसे समझ सकें। और हेल्पलाइन भी सिटीजन के लिए अलग लागू हो गया है, जो सीनियर सिटीजन का अलग एक डेस्क है जो उनको फॉलोअप करता है और उनको सपोर्ट देता है, ताकि वो 1930 में तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल हेल्पलाइंस भी हैं।
2: एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ गए हैं, धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल करना चाहेंगे?
3: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर को मेरा नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन है सर
2: जी, बताइए।
3: पहला क्वेश्चन, जैसे कि कीपैड वाला फोन और स्मार्टफोन, अगर कीपैड उसमें भी अगर मैसेज आते हो और वो फोन हमारा बैंक में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसमें अगर गलत बटन दबा देने से कभी इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर फोन दूसरा है तो? और दूसरा सवाल मेरा ये है, वो मेरा मेन मकसद है सवाल का, कि जैसे आज के समय में टर्शरी क्लास के बच्चों से स्टार्ट होकर देखा जाता है स्कूलों में कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कराए जा रहे हैं, क्यों ना बच्चों को नर्सरी टाइम से बच्चों को ये फ्रॉड के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में बताया जाए कि ऐसे गलत नंबर आए तो आपको उसको छूना नहीं है, या जो भी जैसे भी तरीके से समझ बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नर्सरी से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल हर बच्चा शुरू से ही लेके फोन लेके बैठ जाता है, और जो फोन हमें नहीं चलाना आता वो बच्चा वो खोल के बैठ जाता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्कूलों में भी, ये मेरा सुझाव भी समझ लिया जाए, मेरा क्वेश्चन है कि नर्सरी क्लास से भी बच्चों को इस चीज के लिए ट्रेनिंग देनी जरूरी है। धन्यवाद।
4: आपका जो पहला प्रश्न है कि उसमें स्मार्टफोन और फीचर फोन की बात है, देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। स्मार्टफोन फीचर फोन जो होता है बहुत सिंपल फोन होता है और उस पर बहुत फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो भी मैसेज आते हैं बैंक से आता है या OTP आता है, वो सब SMS के द्वारा आते हैं, व्हाट्सएप और किसी उसके द्वारा नहीं आते हैं। तो वो OTP आना या कोई मैसेज आना वो ऐसा ही है जैसे कि एक स्मार्टफोन में आता है। तो अगर आप

पे कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका वही इफेक्ट है जो कि स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो अगर आपने स्मार्टफोन से किया है या की फोन से की फीचर फोन से किया है उसका इफेक्ट सेम है। जहाँ तक ओटीपी और मैसेजेस का सवाल है उसका दोनों का इफेक्ट सेम ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें

0: फोन प्रो होते हैं वो सब, इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, कॉस्ट में भी अंतर है, फीचर्स में भी अंतर है और उसका यूटिलिटी का भी अंतर है। लेकिन एक आम नागरिक के पर्पस के लिए अगर आप बैंक से इंटरेक्ट करते हैं, आपका ओटीपी आता है, आप कोई नंबर एक्सेस करते हैं, वो आप फीचर्स फ़ोन पे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आज की डेट में की फीचर्स फ़ोन भी बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसपे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, अपना ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी की फीचर्स फ़ोन हो गए हैं। लेकिन अगर आप दोनों में अंतर मोटा अंतर से आपको मैंने बता दिया है, और की फीचर्स फ़ोन नॉर्मल पर्पस के लिए काफ़ी सेफ होता है, स्मार्टफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और केयरफुल रहना पड़ता है।
1: गुलशन जी, एक और सवाल हमारा है, गांव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या बातें हो सकती हैं?
0: देखिए, एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस रखना चाहिए
1: जी।
0: एक दूसरी बात यह है कि वो जो भी ऐप डाउनलोड करे वो जो इतनी जो ज़रूरत हो और एक ट्रस्टेड सोर्स से ऐप डाउनलोड करे
1: जी।
0: आज कहते हैं कि आप गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल से प्ले आप ऐप डाउनलोड करिए, और एप्पल का प्ले स्टोर है वहाँ से डाउनलोड करिए, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके आप ऐप मत डाउनलोड करिए, वो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल तो वो है कि आपको ऐसे मैसेज आए जो आपने मांगा नहीं है, आपने पूछा नहीं है, उस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है।
1: बिल्कुल नंद कुमारम जी, सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट स्कैम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी बहुत हो रही है, एक आम गृहिणी इसे कैसे पहचाने?
2: देखिए, ये डिजिटलाइजेशन और इसकी एक अच्छी चीज़ है कि पार्ट टाइम जॉब घर बैठे गृहिणियाँ कर रही हैं और उसका लाभ उठा रही हैं। लेकिन कुछ लोग इस अच्छी चीज़ का दुरुपयोग करने के लिए लालच देकर या कोई काम का गलत चीज़ बताकर उनके अकाउंट्स या कोई फ्रॉड या कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीज़ों में इंगेज होते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है। तो जैसा अभी गुलशन राय साहब ने बताया कि आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपने वर्क को समझें अच्छे से, कि आप कब उनको ओटीपी दे रहे हैं, कब अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बड़ा कॉमन हो रहा है कि आपसे बात करी, सारे कागज़ इकट्ठे किए और फिर वो चले गए, या फिर आपसे बैंक अकाउंट मांगा, बोला हाँ साहब कुछ क्रेडिट कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, और उसमें फिर कुछ पैसे क्रेडिट भी कर देते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसे ज़्यादा पैसा आपसे फिर निकाल ले जाते हैं। तो इस तरह के समय में ध्यान यह देना चाहिए कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूं और कैसे दूं। बड़ी छोटी बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं कॉल बैक करना, अपना वेबसाइट चेक कराना, और लोगों का रेफरेंस देना, चार लोगों से बात करना कि क्या सच में कोई हमारी दूसरी बहन दूसरी साथी वहाँ काम करती हैं कि नहीं, सोशल वेरिफिकेशन प्रोसेस करना, इस तरह से कोई ट्रस्टेड माध्यम से ही जॉब करें, क्योंकि कई बार आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के पीछे क्या काम हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता और आप उसकी जिम्मेवारी या फेस बन जाते हैं। तो काम को ध्यान में रखते हुए इस तरह से काम में जाना चाहिए।
1: बिल्कुल जाना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के पन्ना से, हर्षवर्धन पांडे। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: हाँ, तो मैं ये जानना चाहता कि ये जो साइबर अपराध है जो चल रहा है, इस पर सरकार द्वारा कभी ये नियम कानून बनाकर लोगों के ये लगाई जाएगी कि ऐसे ही चलता तर रहेगा इसका, जो 1930 जो काल है इस पर कभी वो ये जो काल करते हैं तो कार्रवाई कभी होती है कि नहीं होती है? दूसरा प्रश्न ये है, इसका मुझे उत्तर चाहिए
2: जी। हर्षवर्धन जी, आपका प्रश्न मैं सुनकर के प्रयास करता हूँ। जो विषय है वो जो कहना यह रहता है लोगों का कि 1930 में दो तरह के सवाल आते हैं, या तो कुछ जानकारी के लिए या अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए या एक ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने के लिए, और कुछ केसेस में वो कानून अपराध में कन्वर्ट करके उस पर केस भी होता है। तो 1930 के बाद वो चला जाता है आपके जो थाना संबंधित जो थाना है जहाँ पर या तो क्राइम ओरिजिन हो रहा है या जहाँ पर क्राइम टर्मिनेट हो रहा है, दो तीन तरह के जगहों पर केस रजिस्टर हो सकता है। तो इस तरह के केसेस में वो उस संबंधित थाना में या उस जिले के साइबर थाना अगर कोई चिन्हित हो तो वहाँ, अन्यथा राज्य के मुख्यालय में भी प्रकरण दर्ज होते हैं, उसको जीरो एफआईआर करके फिर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई होती है हमारे जो बीएनएसएस और जो न्याय संहिता के क्रम के रेप में, और इसमें बहुत अधिक कार्रवाइयाँ होती हैं। ये बात ज़रूर है कि चूंकि केस भी बहुत दर्ज होते हैं तो शायद थोड़ी देरी हो जाती हो।
1: और अंत में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को एक वाक्य में अगर जवाब देना हो, डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक बनने की सलाह देनी हो, तो क्या कहना चाहेंगे?
0: ये बहुत अहम सवाल है
1: जी।
0: डिजिटल रूप सशक्त बनने के लिए

0: आपको जैसे हमारे एक्सपर्ट श्री नंद कुमार जी ने बोला कि आपको इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो चीज इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो गलत तो नहीं है, ऐप जो आप डाउनलोड कर रहे हैं गलत तो नहीं है, आप ओटीपी सर्विस मांगी नहीं है वो नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर आपको ये जब तक आप चीज़ कोई एक्सेस मांगते नहीं हैं तब तक कोई जानकारी आपके पास आती है उस पर ध्यान गौर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा सशक्त हो जाइए तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत आसान है।
1: भारत डिजिटल में दुनिया भर में अग्रणी है और एकाध दो देशों को छोड़ दें तो शायद गिनती के नंबर 3 पे तो हम लोग हैं ही।
2: बिल्कुल,
1: मैं फ्रॉड के डर से डिजिटल में आगे न बढ़ें ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये एक नया युग का समय है, नया युग बनता जा रहा है हमारी आंखों के सामने। एआई के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने संबंधियों को मजबूत करें और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं आज और आने वाले समय में उसका पूरा लाभ उठाएं और अपना भविष्य संवारने में इसका इस्तेमाल करें।
2: बिल्कुल, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे राग अहिर भैरव में ख्याल विलंबित रचना, कलाकार उस्ताद आमिर खान।

अभी आप उस्ताद आमिर खान का गाया राग अहिर भैरव में ख्याल विलंबित रचना झूमरा ताल में निबद्ध सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है मन भावन। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म तपस्या से है। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और आरती मुखर्जी ने। संगीत रविंद्र जैन का है और सुनने के ख्वाहिशमंद बिलहरी बड़खेरा कटनी से संतोष ठाकुर, शारदा, सपना ठाकुर, सत्यम सिंह, शिवम सिंह, सौरभ सिंह, सृष्टि, मेघा, डॉक्टर शिखा, राखी और समस्त परिवार। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म अब्दुल्ला का यह गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन और सुनने के ख्वाहिशमंद धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू, बरगीनगर जबलपुर से रविंद्र गद्रे, सुभाष दिगंबर, राजेश शिवम, शुभांग और सृष्टि गद्रे। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है प्रणाम सिटी खंडवा से शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष मंदा, राजेश कुमार, अंजलि, संदीप कुमार, माधुरी, पिंटू कुमार और जय श्री खंडाले ने। कुंदानगर खरगोन से ध्रुवा सोनवणे, सुनीता, खुशी, आशीष, प्रियांश, पूनम, कृष्ण और शुभम सोनवणे ने। आप सुनना चाहते हैं फिल्म बुढ़ा मिल गया का गीत, आवाज़ किशोर कुमार की, मजरू सुल्तानपुरी के शब्दों को संगीत का लिबास पहनाया आर डी बर्मन ने।

आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। फिल्म कारवां के

हमें खत लिखा है देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री ने। बेलई जिला सागर से लक्ष्मण रैकवार, श्रीमती विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरथ, लल्लू ऋषि रैकवार ने। छापर जबलपुर से तुषार, पुनीत, रिद्धिश और कीर्ति। आपकी फरमाइश पर सुनवाते हैं फिल्म कारवां का गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार आर डी बर्मन।

0: आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: फिल्म बागी के गीत के लिए हमें अनुरोध किया है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, रविंद्र शुक्ला, वीरेंद्र वर्मा और सावन नायक ने। छत्तीसगढ़ बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, कमलकांत और वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी ने। कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली ने। आपके अनुरोध पर सुनवाते हैं फिल्म बागी का गीत, जिसे गाया है अरमान मलिक ने। गीत संजीव चतुर्वेदी का है और संगीत अमाल मलिक का।

अरमान मलिक और श्रद्धा कपूर के स्वर में फिल्म बागी का यह गीत आपने सुना। इस गीत के साथ ही आज का मन भावन अब संपन्न होता है। कार्यक्रम का यह सफर आपने तय किया अपनी रेडियो साथी स्मिता दुबे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजे हैं। अब हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: V This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
3: आज देश की धरती पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत एक महान देशभक्त भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
2: द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हैज एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशंस ऑफ जनरल सेक्रेटरी चंपत राय एंड ट्रस्ट मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा। Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed interim general secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case in which 8 people have been arrested. Addressing the media, Trust Treasurer Govind Dev Giri said the possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out. 1993 batch IPS officer Alok Kumar Mittal has been appointed as Director General of Bureau of Police Research and Development. Another IPS officer of 1993 batch Amit Garg has been appointed as Director of National Crime Records Bureau. 1994 batch IPS Sujit Pandey has been appointed as Director of Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy. The appointment committee of the cabinet cleared these appointments today. The Nation today paid homage to veteran freedom fighter and former Union Minister Babu Jagjeevan Ram on his 40th death anniversary. The Babu Jagjeevan Ram National Foundation, under the Ministry of Social Justice and Empowerment, organized a homage ceremony at Samta Sthal in New Delhi. Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Minister for Social Justice and Empowerment Virendra Kumar, former Lok Sabha Speaker Meera Kumar, Minister of State B.L. Verma, members of Parliament, senior officials and other dignitaries paid floral tributes. In Jharkhand, continuous rainfall has disrupted normal life across several districts. Met Department has issued a yellow alert for heavy rain, strong winds and lightning over the next 2 days. Widespread heavy rainfall has lashed Gujarat over the past 24 hours, disrupting normal life in the Saurashtra and South Gujarat regions. In FIFA World Cup, Portugal will take on Spain in a round of 16 match at Arlington in US tonight. In another round of 16 match, co-host US will face Belgium in Seattle tomorrow morning. England, Norway, Morocco and France have already entered the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
4: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर अपने विविध कार्यक्रमों के साथ हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।

प्राइमरी स्टूडियो, प्राइमरी स्टूडियो की घड़ी में अभी 5:26, 34:35, 36 सेकेंड हो रहे हैं। कंसोल की घड़ी में 5:26, 7:08, 9:10 सेकेंड हो रहे हैं। कंप्यूटर नंबर 1 सुनिएगा। कंप्यूटर नंबर 2 सुनिएगा।